सुप्रभात। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव के 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 और 20 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा।

0: कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने एआर रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। आईएमएफ द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात

0: वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। खेती किसानी कार्यक्रम में सुनिए पशुओं की देखरेख।
2: पशुओं की बीमारियों का तुरंत इलाज करना चाहिए, क्योंकि आज टीकाकरण के लिए वैक्सीन, एंटीबायोटिक, कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इन दवाओं के प्रयोग से पशु तो स्वस्थ हो जाते हैं, किंतु बीमारी का नाश नहीं हो पाता है। प्रतिकूल वातावरण और शारीरिक प्रतिरोधी क्षमता कम होने पर यह पुनः अपना असर दिखाने लगता है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं को बीमार होने से पहले वैक्सीन, टीकाकरण की आवश्यकता होती है। इसके लिए टीका देना चाहिए। इसके बाद यदि पशु बीमार होता है तो दवा का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई अक्सर अपने पशुओं में प्रायः खुरहा और चपका, थनैल, चेचक, लंगड़ा बुखार, गलघोटू आदि बीमारियों से परेशान रहते हैं। इसके कारण पशु उत्पादन में काफी नुकसान हो जाता है, तो कुछ बातों पर ध्यान देनी है जिससे कि रोग ना हो। किसानों को रोग का रोकथाम के लिए पशु और उसके आवास को साफ सुथरा रखना है। आवास की बनावट और जमीन का ढलान इस तरह से होना चाहिए कि पशुओं के मूत्र बह जाएं और गोबर तुरंत हटा दें। गंदगी ना रखें। गंदगी से बचने के लिए रोज पानी से सफाई करें, अन्यथा मच्छर पैदा होंगे और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी, साथ ही उसके शिकार पशु भी होंगे। थनैल एक बहुत ही भयानक बीमारी है। गाय के थन में यह रोग हो जाता है। गाय और भैंस को दूध दुहने से पहले थन है उसमें लाल पोटास के घोल से आप अच्छी तरह धो लें। इसके बाद आप अच्छी तरह से थन जब सूख जाए उसके बाद दूध दुहें। इससे इस रोग की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। दूध दुहने के बाद पुनः पोटास से थन को साफ कर लें और साफ तौलिए से पोंछ दें। गलघोटू भी एक खतरनाक बीमारी है। जैसे ही इस बीमारी का पता चलता है अपने नजदीक के पशु चिकित्सक से जरूर दिखवाएं। इसमें पशुओं में तेज बुखार, कंठ के पास सूजन होने लगता है। सूजन होने से सांस की नली पर दबाव पड़ने लगता है, जिसके कारण पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, पतला दस्त होता है और इलाज में यदि देर होती है तो पशु की मृत्यु भी हो जाती है। लंगड़ा बीमारी, इसमें भी तेज बुखार, शरीर के मांसल भाग जैसे गर्दन या जांघ पर सूजन हो जाता है। यह दर्द करता है जिसके कारण पशु चल नहीं पाता है, और यदि आप सूजन के स्थान पर दबाते हैं तो कड़ कड़ की आवाज होती है। इसका इलाज नहीं करने से 6 से 7 दिनों के अंदर पशु मर जाता है। मुंह और नाक से झाग आने लगता है। झाग के साथ खून के धब्बे भी दिखने लगते हैं। दस्त के रास्ते से खून बहने लगता है। खुरहा चपका यह भी देखा जाता है अक्सर, और यह दुधारू गाय और भैंस दोनों में होता है। इसके कारण पशु जो है दूध देना कम कर देती है। इसमें पशुओं के खुर फटे होते हैं, बुखार आता है, जीभ और खुर में फफोले पड़ जाते हैं, पशु के मुंह से लार गिरने लग जाता है। इसे निजात पाने के लिए वैक्सीन करना अति आवश्यक हो जाता है। पशुओं में बीमारी से पहले टीकाकरण करना चाहिए ताकि बीमारी कम हो, और बीमारी का इलाज करना एकदम जरूरी है। रोगों के निदान की रणनीति पहले बनानी चाहिए। विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य और रख रखाव को ध्यान देना है।
1: पशुओं की देखरेख, आप सुन रहे थे खेती किसानी कार्यक्रम में, और अब सुनिए आज का चिंतन।

0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे एक ऐसा रसायन बनता है जो प्राण ऊर्जा बनकर संपूर्ण शरीर तंत्र का संचालन करता है। हमारे भोजन से ही प्राण शक्ति पैदा होती है जो शक्ति केंद्र को संचालित करती है। इसलिए भोजन का महत्व है और हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो सात्विक हो, ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हो। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भोजन तीन प्रकार का होता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक भोजन जहां मन को शुद्ध करता है, वहीं तामसिक और राजसिक भोजन मन में एक प्रकार की उत्तेजना पैदा करते हैं जिससे शरीर की ऊर्जा का अपव्यय होता है। इसलिए आहार शास्त्र में सात्विक भोजन की सिफारिश की गई है और तामसिक तथा राजसिक भोजन से बचने का आग्रह किया गया है। एक दिन पवनार आश्रम में विनोबा भावे ने उपवास की उपयोगिता पर कहा कि भगवान महावीर ने जितने दिन खाया उससे अधिक दिन नहीं खाया, तभी वे अपनी साधना में सफल हो सके। भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मनियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा है भोजन। भोजन सुस्ती लाता है। टॉल्स्टॉय ने कहा है कि जो भोजन का संयम नहीं करता वो सुस्ती को कैसे मिटा सकेगा। जो आलस्य, सुस्ती और प्रमाद को नहीं मिटा पाता वो आत्मनियंत्रण कैसे कर पाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारी कुछ मौलिक इच्छाएं होती हैं, यदि हम उन इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते तो इन इच्छाओं के आधार पर चलने वाली दूसरी जटिल इच्छाओं को भी कभी समाप्त नहीं कर सकते। जीने की कामना, भोजन की कामना, ये मौलिक इच्छाएं हैं। यदि उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता तो इनके आधार पर चलने वाली अन्य जटिल इच्छाओं पर कभी नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। इसलिए यह आवश्यक है कि साधक सबसे पहले अपनी मौलिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करे, उन पर नियंत्रण करे। भोजन का संयम ना हो तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। भोजन में कम खाने का महत्व है। कहा गया है कि जितने आदमी भूख से मरते हैं उससे अधिक ज्यादा खाने से मरते हैं। इसलिए संतुलन आवश्यक है।
1: आप सुन रहे थे आज का चिंतन। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम है आराधना और आरंभ में सुनिए देशभक्ति गीत।

आराधना कार्यक्रम में भी आप भक्ति गीत सुन रहे थे। और साथियों, इस वक्त अब आइए हम आप सभी को सुनवाएं श्री रामचरितमानस गान।

लक्ष्मण को वन जाने की सहर्ष अनुमति देते हुए माता सुमित्रा ने कहा, हे पुत्र, वन में तुम्हें सभी सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ पिता माता सरीखे श्री राम और सीता का निवास होगा। तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र वन में किसी प्रकार का क्लेश न पावें, यही मेरा उपदेश है। श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता वहां पहुंचे जहां राजा दशरथ मूर्छित प्राय अवस्था में पड़े थे। श्री राम पधारे हैं इस मधुर वचन के साथ मंत्री सुमंत्र ने राजा को उठाकर बिठाया। दो दो पुत्रों के साथ सीता को वन जाने के लिए तैयार देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो गए। अकुलाहट तथा स्नेहवश वे बार बार पुत्रों को हृदय से लगाते हैं। उनकी वाणी मौन है, क्योंकि मर्मस्थल पर आघात लगने का दुख दारुण है। श्री राम बोले, हे तात, प्रेम के कारण कर्तव्य में चूक जाने से यश जाता रहेगा। मुझे आशीर्वाद और विदा दीजिए। राजा दशरथ ने ये सुनकर बांह पकड़ श्री राम को अपने पास बिठा लिया। बोले, हे तात, मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वेद वाणी है कि कर्मों के अनुसार ईश्वर विचार कर फल देता है, किंतु आज तो ठीक इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना पड़े, भगवान, ये तेरी कैसी लीला है।

साथियों, ये अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, और ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। और अब आइए हम आप सभी को जानकारी दे दें शेष कार्यक्रमों के बारे में।

हम अपने केंद्र रांची से आप सभी को सुनवाएंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आप सुनेंगे तनाव प्रबंधन, बताएंगे डॉक्टर दीपक सिंह, इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल, सुभाष सुरीली। ये प्रोग्राम होगा 7:15 पर। हम आप सभी को सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में पुरानी फिल्मों के कुछ गाने। 7:45 पर कार्यक्रम होगा खुला आकाश, वन संरक्षण कितना आवश्यक, इस पर बातचीत होगी, बताएंगे आनंद विहारी शरण, इनसे बातचीत करेंगे प्रभु शरण।

8 बजे से आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण यानी समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। हम अपने केंद्र रांची से आप सभी को सुनाएंगे प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। लोक रंग कार्यक्रम होगा 8:45 पर और आज आप सुनेंगे खोरठा लोकगीत। रसरंजन कार्यक्रम होगा 9 बजे से और 9:30 पर कार्यक्रम होगा। पहले हम बता दें कि रसरंजन कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गाने 9 बजे से 9:30 तक और 9:30 पर कार्यक्रम होगा शास्त्रीय संगीत। आज हम आप सभी को सुनवाएंगे राग नंद में ख्याल गायन। कलाकार होंगे सविता रॉय। विज्ञान जगत ये कार्यक्रम होगा 10 बजे से और इस पर चर्चा होगी लिफ्ट एलिवेटर के उपयोग में बरतें सावधानी और AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और प्रभाव। जोहार रांची 10:30 से और आपकी पसंद 11:30 पर। 12 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। और साथियों हम आपको बता दें कि अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, बाकी के कार्यक्रम जो हैं हम बाद में आप सभी को बताते रहेंगे।

अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी त्रिराष्ट्र यात्रायाः द्वितीये चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य मेलबोर्न नगरं सम्प्राप्त।

0: प्राप्तवान्। ह्यः तस्य आगमन समये ऑस्ट्रेलिया देशस्य नगरावासन मन्त्री क्लेयर ओ नील इत्येषा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्नेहपूर्वकं स्वागतम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् इयं यात्रा भारताऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागितायाः ऊर्जां वर्धिष्यति इति। सामाजिक संचारपटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् असौ ऑस्ट्रेलिया देशस्य समकक्षेण एन्थनी एल्बनीज इत्यनेन सह संवादम् आचरिष्यति। असौ एतदपि कथितवान् यत् भारताऑस्ट्रेलिया सहभागित्वस्य महत्वपूर्ण स्तम्भेन भारतीय प्रवासिना सह संवादाय अवसरः अपि प्राप्स्यामि इति। यात्रावधौ श्रीमोदी तृतीये भारताऑस्ट्रेलिया वार्षिक सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। असौ भारताऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकार्याधिकारी मञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति, यत्र सः उभय देशयोः प्रमुखानां व्यापार नेतृणां समागममपि सम्बोधयिष्यति। भारत म्यांमार देशौ द्वैपाक्षिक सुरक्षा सहकारिता विषये चर्चां कृतवन्तौ। द्वैपाक्षिक संवाद व्यवस्थायाः अन्तर्गते प्रगतिं च समीक्षितवन्तौ। भारत म्यांमार देशयोः मध्ये त्रयोविंशतितमं द्विदिवसीय राष्ट्रिय स्तरीय सम्मेलनम् अद्य ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् भयोत्पादनं विद्रोहः मादकद्रव्याणां क्रयविक्रयणं शस्त्राणां क्रयविक्रयणं मानवव्यापारं वन्यजीवानां क्रयविक्रयणम् इत्यादीनां संघटितानां अपराध प्रकाराणां निवारणार्थं सहकारिता विषये उभयपक्षौ चर्चां कृतवन्तौ। भारत रूस देशाभ्यां ह्यः संयुक्त राष्ट्र ब्रिक्स यूरेशियन समूह शंघाई सहयोग संघटनानि समेत्य बहुपाक्षिक मञ्चेषु आतंकवादरोधी सहयोगम् इतोऽपि सुदृढीकरणस्य प्रतिबद्धता पुनरुद्घाटिता। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूहस्य चतुर्दशोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। द्वौ देशौ सीमापारे आतंकवादं समेत्य आतंकवादस्य सर्वेषां रूपाणाम् अभिव्यक्तिनाञ्च निन्दां कृतवन्तौ। भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटनम् मध्यप्रदेशस्य श्योपुरनगरस्य एरियल डिलीवरी रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट इत्यस्य ड्रॉप जोन इत्यत्र गगनयान उपक्रमस्य कृते महत्वपूर्णम् एकीकृतम् आईएमएटी इति परीक्षा सफलतया आयोजिता। भारतऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिषु त्रिषु दिनेषु नैऋत्य प्रावृषे उत्तर अरबसागर राजस्थाने गुजरात हरियाणा पंजाब इत्येतेषां शेषभागेषु अग्रे गन्तुं स्थितिः अनुकूलः अस्ति। अद्य अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय बिहार पूर्व राजस्थान मध्यप्रदेश उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल सिक्किम पश्चिमोत्तर प्रदेशानां केषुचित् भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः भविष्यति इति ऋतुविभागेन पूर्वानुमानितम्। जम्मू कश्मीर प्रशासनेन ह्यः श्री अमरनाथजी यात्रामुद्दिश्य एका नवीना निर्देशिका प्रसारिता, यस्यां सर्वहि तीर्थयात्रिभिः पंजीकरण प्रक्रियायाः अथ सुरक्षा मार्गदर्शिकानां निष्ठापूर्वकं दृढतापूर्वकञ्च पालनं कर्तुं समादिष्टम्। आकाशवाण्याः जम्मू वार्ताहरैः विज्ञापितं यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य निर्देशानुसारं निर्धारिता यात्रणां प्रतिदिनस्य संख्या सीमा सम्प्रत्योपि पूर्णतो प्रवृत्ता वर्तते। श्रद्धालवः परामृष्टाः यत् यात्रा प्रारम्भात् एव पूर्वमेव अग्रिम पंजीकरणं करणीयम् अथ अनुमतिपत्रे उल्लिखिते दिनांके एव यात्रा आरम्भणीया। प्रशासनेन स्पष्टीकृतं यत् अनुपदमेव पंजीकरणस्य सुविधा अत्यन्तं सीमितसंख्यासु एव उपलब्धा अस्ति। वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी आधिकारिक मंच को संबोधित किया।

0: अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापारिक साझेदारियों को हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को गर्मजोशी से स्वागत के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। नई दिल्ली में 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे और इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के फिर से किए गए हमलों को दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की समाप्ति के बाद किए गए हैं। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से ही लगातार बारिश हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का 4था मुकाबला आज ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे पहले तीसरे मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा और आप सुनेंगे तनाव प्रबंधन। बता रहे हैं डॉक्टर दीपक सिंह, इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
3: किसी व्यक्ति को पढ़ाई की चिंता हो रही है, किसी को कैरियर की चिंता हो रही है, किसी को ये लग रहा है कि हम जैसा चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं पा रहा है,

0: तो तनाव की प्रकृति अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह की है। जब तनाव से हम घिर जाते हैं तो हम क्या करें, किस तरह से तनाव का प्रबंधन करें ताकि हम एक खुशहाल जीवन जी सकें, तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ CCL हॉस्पिटल गांधीनगर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक सिंह उपस्थित हैं। दीपक साहब स्वागत है
1: जी। धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। यत्र तत्र सर्वत्र तनाव व्याप्त है, क्या मानते हैं आप?
1: जी आपने सही कहा, सभी तरफ तनाव व्याप्त है, लेकिन आजकल जैसा चल रहा है या लोगों का जैसा लाइफस्टाइल बना हुआ है उसमें तनाव नॉर्मल से ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कोई भी जो इमोशन है जैसे फियर है, एंग्जाइटी है, पेन है, ये सब एक तरह का नॉर्मल बेसिक इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं, लेकिन उसी में से एक तनाव भी है। कोई भी चीज़ होने से आदमी को थोड़ा सा तनाव होना स्वाभाविक है जिससे कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस बाहर आ सके, लेकिन जो आजकल तनाव का लेवल है और तनाव के जो प्रकार हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आज का जो आधुनिक जीवन है उसमें चूंकि हम लोग प्रकृति से बहुत ज़्यादा कट गए हैं, मोबाइल में बहुत ज़्यादा समय देते हैं, अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे बहुत कम इंटरेक्शन करते हैं, अपने चारों तरफ एक नया दुनिया बना लिए हैं जो कि एक आभासी दुनिया है, लोगों का जैसे डाटा हमेशा ऑन रहता है, दे ऑलवेज रिमेन बिजी इन देयर मोबाइल, तो इससे जो आजकल तनाव की जो प्रकार हैं और जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है
0: जी। लोगों की इच्छाएं बहुत हो गई हैं
1: जी,
0: और लोग ज़्यादा सपने बुनने लग गए हैं
1: जी,
0: कम समय में अधिक पाने की चाहत
1: जी,
0: ये कहने कहीं तनाव को बढ़ावा दे रहा है डॉक्टर साहब?
1: हाँ एकदम आपने सही कहा, ये ऐसा हो रहा है क्योंकि आजकल ये हम एक तरह का इन्फोडेमिक आया हुआ है, मतलब इन्फॉर्मेशन का एक तरह का एपिडेमिक आया हुआ है, तो उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि डे टू डे लाइफ में हमारा कोई मतलब नहीं होता है, वो भी चूँकि मोबाइल के द्वारा और बाकी सब माध्यमों से हमें पता चल जाती हैं, तो उससे हमारे अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होता है, वही स्ट्रेस अल्टीमेटली हमें डिस्ट्रेस में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वी ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दोज इश्यू, एज वेल एज आजकल लोग अब के सपने बहुत बड़े हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पाना चाहते हैं, कम समय में पाना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ गोल को देखते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग करना चाहिए वो लोग नहीं करते हैं। जैसे अभी आप कोई भी फल लीजिए, फल भी अपना पकने में नेचुरली टाइम लेता है, तो ऐसे ही आदमी को भी या ह्यूमन बीइंग को लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए एक मेहनत करना चाहिए, एक टाइम लगता है उसमें, वो लोग उतना पेशेंस नहीं रखना चाहते, उससे तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
0: जब हम चाहते हैं कि अमुक चीज़ हमें हासिल हो जाए और वो हमें हासिल नहीं हो पाती है तो फिर हम तनाव में घिर जाते हैं
1: जी,
0: और यही तनाव हमें स्ट्रेस पैदा करता है
1: जी,
0: और फिर हम डिस्ट्रेस में चले जाते
1: जी
0: हैं। तो कैसे हम अपने आप को पहचान पाएं कि अब हम तनाव के वातावरण में जीने लग गए हैं
1: जी,
0: अब हमें इससे बाहर निकलने की आवश्यकता है?
1: देखिए जब भी इस तरह की सिचुएशन में आपका डे टू डे लाइफ हैम्पर होने लगे, जैसे आपको कितने समय उठना है, कितने समय खाना है, कितने समय अपना तैयार होकर ऑफिस जाना है, या जो भी आप जैसे छात्र हैं तो स्कूल जाना है, ये सब चीज़ें जब अफेक्टेड होने लगें और आपके आसपास के लोग भी इस तरह का आपको बोलने लगें कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन में या आपकी बातों में कुछ चेंज आ गया है, तो देस वही टाइम होता है कि आप अवेयर हो जाएं अपने बारे में, मतलब एक तरह से आप उस समय एक एज पे हैं, एक किनारे पे हैं जो कि जिसके आगे एक बहुत ज़्यादा बीमारी के रूप में तनाव है और उसके पीछे एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है, तो जैसे ही इस तरह का आप रिकॉग्नाइज करते हैं वैसे ही आप समझ जाइए और अपना लाइफ स्टाइल में चेंज करिए, अगर आपको ज़रूरत लगता है तो आप मनोवैज्ञानिक परामर्श भी ले सकते हैं।
0: कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकला जाए, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाया जाए ताकि हम खुश रहें, और जब आप खुश रहते हैं तो बच्चे और परिवार भी खुश रहेंगे
1: जी। जी इस कंडीशन से निकलने के कुछ बहुत बेसिक उपाय हैं, तो लोग उन्हीं को कर लें तो उनका सारा प्रॉब्लम दूर हो सकता है। जैसे आप आज के ज़माने के हिसाब से आप ऑनलाइन कम से कम रहिए, जब आपको ज़रूरत है तभी आप उसको यूज़ करिए और जिस पर्पज़ से वो चीज़ बना हुआ है उसी पर्पज़ से उसको यूज़ करिए। दूसरा है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, फैमिली लोग हैं, फ्रेंड लोग हैं, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करिए, उनसे अपना मन का बात शेयर करिए, आप नेचर के करीब रहने की कोशिश करिए, तो इससे ही आपका जो तनाव प्रबंधन है वो एक हद तक अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा।
0: इस बदलती जीवन शैली में हमने अपना खान पान भी बिगाड़ लिया है
1: जी,
0: सही समय पर हम खाना नहीं खाते हैं
1: जी,
0: और जो भोजन करते हैं वो भी पौष्टिक नहीं होता
1: जी,
0: है, फास्ट फूड का हम सेवन करने लग गए हैं, और हमारे सोने का, बैठने का, उठने का जो समय है वो भी काफ़ी बदल गया है
1: जी।
0: तो कैसे इन सब चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए और एक अच्छी और

0: हेल्दी लाइफ स्टाइल हम जीने की कोशिश करें।
1: जी, देखिए इसके लिए तो आपको अपना इच्छा शक्ति मजबूत करना होगा। जब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे डे टू डे लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारे फैमिली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं, हमारे पर्सनल लाइफ को, सोशल लाइफ को, सब तरह से इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो वहीं पे आपको संभलने का ज़रूरत है। आप जो पहले से चीज़ें होती आई हैं, आप बस वही करिए, उसी में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप टाइम से उठिए, टाइम से खाना खाइए, घर का बना हुआ खाना खाइए। इवन जो पहले चीज़ें होती थी, जैसे हमारा फैमिली में कुकिंग हो रहा है, सब लोग मिलके कुकिंग कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल है वो हम लोग साथ में मना रहे हैं, हम लोग आसपास कोई बाग है या इस तरह का कोई चीज़ है तो वहाँ पर हम लोग घूमने जा रहे हैं, फैमिली गेट टुगेदर इस तरह का, तो वो चीज़ें आप करिए, उसी में आपका ये जो भी तनाव से रिलेटेड हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन असल में आजकल क्या होता है कि लोग बाहर में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना चाहता है, लोग हर चीज़ को फास्ट फूड स्टाइल में देखना चाहता है। जैसे अगर हमें तनाव हो रहा है तो बस कोई हमें एक कोई सेंटेंस बोल दे या कोई एक मेडिसिन टाइप का दे दे तो उसी से मैं जो कर रहा हूँ वैसा ही करता रहूँ और बस ये दो चीज़ों से मेरा प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। उसके लिए लोगों को सेल्फ अवेयर होके अपना लाइफ स्टाइल में चेंज लाना होगा, तो चीज़ें विल चेंज बाई इट सेल्फ।
0: और मेडिकेशन के लिए आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बहुत लोग जब तनाव से घिर जाते हैं तो फिर गलत राह की ओर चले जाते हैं
1: जी,
0: और फिर वो दवाइयों का सहारा लेना शुरू कर देते हैं।
1: आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो जैसे जो भी हमारा तनाव होता है वो हर एक लोगों में अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट होता है। उसमें कॉमनली होता है कि लोगों को पेन का कंप्लेन होता है, किसी को पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है उसका कंप्लेन होता है, किसी का मुंह बहुत ज़्यादा सूख रहा है उसका कंप्लेन होता है, किसी को सर दर्द होता है, किसी को अननेसरी चक्कर आने लगते हैं। तो उसमें लोग इधर उधर से बस यही एक साइन सिम्टम को लेके अपना सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को जैसे नींद नहीं आने लगता है तो लोग अपने से कोई भी नींद का दवा लेना शुरू कर देते हैं, तो एक बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, अगर उस तरह की चीज़ें आप कर रहे हैं उसके बावजूद अगर आपका जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है आप कोई मनोचिकित्सक से परामर्श लें और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लें। और क्या होता है कि हम लोग का समाज में एक तरह का टैबू है या स्टिग्मा है कि मेंटल के पास जाने से अच्छे वे में उसको नहीं लिया जाता है, लेकिन वो चीज़ों से आपको ऊपर सोचना होगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, बस अब उसको सॉल्यूशन करने के लिए हमें आगे आना होगा और अपने ये सारे जो भी हेजिटेशन है उनसे दूर होना होगा।
0: संवादहीनता आजकल कायम हो गई है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं डॉक्टर साहब? क्या मोबाइल ने हमें संवादहीनता की ओर ज़्यादा ढकेल दिया है?
1: हाँ, मोबाइल भी एक कारण है, लेकिन लोग आजकल सेल्फ एब्जॉर्ब होके ज़्यादा सोचने लगे हैं। एक तरह का नोशन सोसाइटी में है कि मतलब हमें अपने बारे में, सेल्फ के बारे में सोचना चाहिए, एक अपना आपको भी वक्त देना चाहिए, तो वो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन लोगों को देखना चाहिए कि हर चीज़ एक लिमिट में ही ठीक होता है, हर चीज़ का एक लिमिट है। जैसे आप खाना खाने भी बैठेंगे तो कितना भी आपका मनपसंद खाना हो आप एक हद तक ही उसको खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो अपने आप को ऑफकोर्स टाइम देना चाहिए, अपने शौक को टाइम देना चाहिए, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप में ही सिमट के रह जाएं, आप दुनियादारी से, अपने परिवार से कट जाएं, उसका ये मतलब नहीं है। तो वो एक लिमिट हमें आइडेंटिफाई करके सारी चीज़ों को बैलेंस्ड वे में ही लेना है।
0: और परिवार के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम व्यतीत करने की भी कोशिश करनी चाहिए।
1: या
0: एक साथ हम बैठकर टेबल पर खाना खाएं
1: या
0: और अच्छी अच्छी बातें करें।
1: हाँ, साथ में कुकिंग करें, साथ में खाएं, साथ में कोई भी काम करें, इवन साथ में शॉपिंग भी जाएं, तो ये एक फैमिली बॉन्डिंग के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, सभी लोग को करना चाहिए।
0: तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, अपने बच्चों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि हर लोगों के दुख और सुख में आप शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा और खुशहाल जीवन जीने की एक कोशिश कीजिए। धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। बता रहे थे डॉक्टर दीपक सिंह, इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। और अब हमारा कार्यक्रम है सुबह सुरीली। इस प्रोग्राम में हम आप सभी को सुनवाएंगे पुराने फिल्मों के कुछ गाने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: साथियों, आप सुबह सुरीली प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं पुराने फिल्मों के कुछ गाने। थोड़ी सी बेवफाई। अब आइए हम आप सभी को इस फिल्म का गाना सुनवाएं।

थोड़ी सी बेवफाई, ये थी फिल्म जिसका गाना अभी आप सुन रहे थे, कौन अपना कौन पराया। अब आइए हम आप सभी को सुनवाएं इस फिल्म का ये गाना।

जरा सुन हंसी ए नाजनी, मेरा दिल तुझी पे निसार है। साथियों, ये गाना सुन रहे थे, आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म थी कौन अपना कौन पराया। अब आइए हम आप सभी को सुनवाए अंत में ये गाना। फिल्म का नाम है आओ प्यार करें।

वन जीवन का अक्षय स्रोत है। स्रोत की निरंतरता ही इसकी विशेषता है। सृष्टि में जो कुछ भी घटित होता है, वन उनके प्रभावों को ग्रहण कर उन्हें सृजनात्मक परिणामों में परिवर्तित करता है। यही कारण है कि प्राचीन युग से ही वनों को पवित्र स्थली के रूप में स्वीकार किया गया। वन सामाजिक जीवन के लिए संयम, अनुशासन, सात्विकता, कर्तव्य निष्ठा एवं परोपकार के संदेश देते रहे हैं। झूमते लहराते वन आज भी वसुधैव कुटुंबकम, सत्य, अहिंसा तथा सम्यक जीवन के मंत्र उद्घोषित कर रहे हैं, किंतु हम सुनने से कतराते हैं। हमारे प्राचीन साहित्य में उद्देश्य एवं स्वरूप को लेकर वनों को वर्गीकृत किया गया। इन्हें मोटे तौर पर महावन, तपोवन, श्रीवन आदि अन्य नामों से अभिहित किया गया। महावन दैवी शक्तियों की स्थली रहे, जिसमें सामान्य प्रवेश वर्जित था। महावन इतने गहरे घने होते थे कि उनमें सहज प्रवेश की कोई सोचता तक नहीं था। यहाँ मूलवासी एवं वन्य जीव जंतुओं का प्रकृति निर्बाध रूप से संरक्षण संवर्धन करती थी। इसी प्रकार तपोवन, श्रीवन के अपने पृथक गुणधर्म रहे। वस्तुतः सकारात्मक सोच एवं उन्नत विचारों की तपोभूमि रहे वन। आधुनिक युग में इन सारी बातों की उपेक्षा अवहेलना होती रही है। बेतहाशा वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रमाद में आदमी वनों एवं प्रकृति की अनदेखी करता गया। भौतिकवादी उपलब्धियों एवं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कोयला, लोहा एवं दूसरी खनिज संपदाओं का आंख मूंद कर विदोहन किया गया। इनकी उपलब्धि के लिए वनों का व्यापक स्तर पर विनाश हुआ। वन उजाड़ तो दिए गए, किंतु विकल्प के रूप में नए वृक्ष नहीं लगाए गए। इसका भीषण दुष्परिणाम पर्यावरण के नाश के रूप में सामने आया। मानव समाज में जिस प्रकार विनिमय का चलन है, वैसे ही प्रकृति में भी देना पावना का नियम चलता है। यह देना पावना स्वतः स्फूर्त है, निर्बाध है। वैज्ञानिक भाषा में है इसे पारिस्थितिकीय संतुलन कहेंगे। सृष्टि का सारा ताना बाना मात्र पारिस्थितिकीय के सहारे जुड़ा है। पारिस्थितिकीय संतुलन में तनिक भी व्यतिरेक पर्यावरण को प्रभावित करता है, वैसे ही पर्यावरण में बिगाड़ पारिस्थितिकीय संतुलन को उद्वेलित करता है। वृक्षों की इसमें अहम भूमिका है। वृक्ष धरती के भीतर और ऊपर समान रूप से भूमिका निभाते हैं। वृक्ष भूमि का स्खलन रोककर उसे स्थिर कर रखते हैं। गहरे भीतर तक फैली जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। वृक्ष मिट्टी में व्याप्त पोषक तत्वों के साथ ही उन पर पलने वाले कीड़ों मकोड़ों की भी रक्षा करते हैं। अतः वृक्ष सृष्टि के संवर्धन पोषण में महती भूमिका निभाते हैं। वनों के विनाश का परिणाम है मौसम का अनिश्चित व्यवहार। वर्षा की कमी के फलस्वरूप पानी की कमी, भूमिगत जल का अभाव तथा बेतहाशा एवं प्राणलेवा गर्मी, यही आज ग्लोबल वार्मिंग के रूप में पूरी धरती को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। वनों का समुचित संरक्षण न होने के फलस्वरूप वन क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम वन्य जीवों को भुगतना पड़ता है। उनकी प्रजनन क्षमता पर दुष्प्रभाव के चलते उनकी संख्या में तेजी से कमी आई है। यह पर्यावरण एवं जंगल की पारिस्थितिकी के लिए खतरनाक है। जंगलों में अप्रत्याशित हस्तक्षेप न सिर्फ वन्य जीवों वरन ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रभावित कर रही है। चारागाहों का घोर अभाव हो रहा है। साथ ही वनों के बेतहाशा विनाश के फलस्वरूप वन्य प्राणियों के एवं मानव के बीच टकराव बढ़ रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है, प्रकृति की पद्धति या सृजन प्रक्रिया में बदलाव नहीं आया। प्रकृति की गोद में पलने वाले जीव जंतु यहाँ कभी अनुशासन नहीं तोड़ते, किंतु आदमी ने प्रकृति के अनुरूप चलना छोड़ दिए। अपने सुविधाजनक जीवन के लिए उसने अपनी अलग प्रकृति गढ़ ली। चिंता नहीं कहाँ कितना और क्या छूट रहा है। सृष्टि सृजन और विनाश की का संतुलित रूप है। सृष्टि के विनाश विध्वंस नहीं, नव सृजन का संकेत है। जीव नश्वर हो सकता है, जीवन नहीं। प्रकृति जीवन की इस निरंतरता को बनाए रखती है। वन जीवन चक्र को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हैं। वन्य जीव जंतु इस धर्म का अक्षरशः पालन करते हैं। वे जंगल से सिर्फ लेते नहीं, उसे देते भी हैं। प्रकृति प्रदत्त भोजन

0: का वे भरपूर आनंद उठाते हैं, किंतु उतना ही जितना आवश्यक है। आसपास और थोड़ी दूरी पर सब चरते हैं, लेकिन भोजन को लेकर आपसी टकराव नहीं। चीतल, बाइसन, हाथी पास पास चरते हैं। सबके भोजन अलग अलग है, अतः कोई टकराव या प्रतिद्वंद्विता नहीं। इसे हम जंगल में साहचर्य के रूप में देख सकते हैं। शाकाहारी जीव एक ही जगह भरपूर नहीं चरता, वरन थोड़ा चर कर आगे बढ़ जाता है। एक अंतराल बाद जब झुंड लौटता है तो नई पौध और घास उग आई होती है। जीव जंतु जहाँ जहाँ जाते हैं उनके खुरों से धरती की खुदाई भी होती जाती है। इस क्रम में बीजों के दब जाने से बरसात के साथ ही नई पौध और घास उग आती है। यही प्रकृति में देना पावना है। लेकिन आदमी प्रकृति से लेता तो बहुत कुछ है, किंतु देता क्या है? यदि मानव समाज प्रकृति के कार्य व्यापार का अनुसरण करे तो वृक्षों आदि का स्वरूप बदल सकता है। आज ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरा भूमंडल चिंतित है। यह संतोष प्रदान करने वाली बात है कि हम सब मिलकर धरती को विनाश से बचाने को तत्पर हैं, किंतु इस संदर्भ में निष्ठा तथा क्रियाशीलता भी दिखानी होगी, अन्यथा हमारी चिंता नारा भर रह जाएगी। नगरों का पेड़ लगाओ देश बचाओ अभियान तभी सार्थक परिणामों तक पहुंच पाएगा जब पेड़ों को बचाने को लेकर भी सक्रियता बनी रहे। इस प्रकार के अभियान कुछ हद तक राहत दे सकते हैं, किंतु यह स्थायी समाधान फिर भी नहीं। परंपरागत वनों की रक्षा और उनका विस्तार ही स्थायी समाधान है, तभी आगे धरती को उजड़ने से बचाया जा सकता है। सारा कुछ वनों की सुरक्षा पर निर्भर है, क्योंकि वन ही जीवन है।
1: अभी आपने आनंद बिहारी शरण की वार्ता सुनी, वन संरक्षण कितना आवश्यक। प्रस्तुति थी प्रभु शरण की, और इसी के साथ खुला आकाश कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

साथियों, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण यानी समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और तब तक आप इस वाद्य वादन का आनंद लीजिए।

0: रेन बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे

0: रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमरीका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमरीकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड

0: उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के 5 उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5-6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंत्र समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीईओज फोरम इन मेलबर्न, सेज इट इज नेचुरल एंड एसेंशियल फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू मूव फॉरवर्ड एज ट्रस्टेड पार्टनर्स इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस एंड एनर्जी क्राइसिस। Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of Khopra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said

0: ceasefire is over. And India's Arnav Papadkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: Prime Minister Modi also noted the complementarities between the Indian and Australian economies, underlining vast opportunities available in India across a number of sectors.
1: हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं।
0: Mr. Modi invited Australian investors to take advantage of opportunities for long-term investments in the country and also welcomed the growing presence of Australian universities in India.
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: Following the CEO's forum, Prime Minister Modi also addressed the Economic Roadmap Business Event, a large gathering of over 200 CEOs and business leaders from both sides. Speaking about natural synergies between India and Australia, he highlighted that shared democratic values, a common vision for the Indo-Pacific, vibrant people-to-people ties and strong political understanding created fertile ground for the business partnership between the two countries to grow and prosper together.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा।
0: Now we go over to our Melbourne correspondent who is sharing more details on the Prime Minister's visit.
2: The India-Australia CEOs Forum marked a decisive shift from parallel diplomatic tracks to an integrated, future-proof economic engine. Prime Minister Modi signalled a new era of decentralized economic diplomacy, calling for direct state-to-state corridors that link Australia's raw resources directly with India's massive clean energy, chip manufacturing and digital infrastructure pipelines. Echoing this vision, Prime Minister Albanese mapped out massive capital commitments, anchored by Australian super's multi-billion dollar investments, unprecedented higher education partnerships and landmark industrial projects like the Perdaman plant. Together, both leaders made it clear that while policy sets the runway, it is a direct synergy of our corporate titans and

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। 8:23 हुए हैं और अब समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्विक कंपनियों के साथ की बैठक, रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों पर चर्चा।

0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में इटकी टीबी सेनेटोरियम का किया निरीक्षण, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने और पुरानी पहचान लौटाने का दिया निर्देश। बोकारो वन भूमि घोटाले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह पटना से गिरफ्तार, रांची की अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में। खूंटी में 5 वर्षों से फरार पीएलएफआई उग्रवादी और सिमडेगा में कोरोना काल के 8 वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। और रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आज छाए रहेंगे बादल, गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में विजन 2050 पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बिजनेस टू गवर्नमेंट यानी B2G बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, IBM और AWS जैसी दुनिया की शीर्ष तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार झारखंड को नवाचार आधारित प्रौद्योगिकी विकास का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: आप सबको मालूम है कि वर्तमान में परिवर्तन का दौर है, कई चीजों पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा, चूंकि हमारे राज्य में मुख्य रूप से माइनिंग आधारित अर्थव्यवस्था में रहे, आज माइनिंग से ऊपर निकलने का, माइनिंग से बाहर निकलकर नॉलेज बेस विकास में कदम रखने का हम लोगों ने निर्णय लिया है।
0: रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची के इटकी स्थित ऐतिहासिक टीबी सेनेटोरियम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचना और मरीजों को मिल रहे उपचार की विस्तृत समीक्षा की। संजय सेठ ने सेनेटोरियम के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और संस्थान की वर्तमान आवश्यकताओं व संसाधनों में सुधार को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। हजारीबाग के चौपारण स्थित बिरहोर टोला में केंद्र सरकार के आदि कर्मयोगी अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस मुख्य उद्देश्य आदिम बिरहोर समुदाय, अनुसूचित जनजाति और वंचित परिवारों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है। शिविर में ऑन स्पॉट आवेदन सहायता देकर अंतिम व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास किया गया।
2: अपना बच्चा का आधार कार्ड बनवाने आए थे और अपना स्वास्थ्य जाँच करवाने, अपना BP, शुगर, हेमोग्लोबिन, उसी का मतलब दवा ली।
3: हम यहाँ पे बच्चा का आधार कार्ड बनवाने के लिए आए हैं, फिर ये जॉब कार्ड में नाम है कि नहीं है उसको जांच करने के लिए आए हैं। जॉब कार्ड से बहुत फायदा है भी।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है।
4: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है, अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: झारखंड सीआईडी ने बोकारो के तेतुलिया मौजा में से 103 एकड़ संरक्षित वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री के मामले में मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह को पटना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रांची लाया गया, जहां अदालत में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 16 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और बहुड़ा यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने को कहा गया है। सुरक्षा के लिए CCTV, ड्रोन निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की जाएगी। आपातकालीन सेवाएं भी मुस्तैद रहेंगी। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार

0: आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी पुलिस ने 5 वर्षों से फरार पीएलएफआई उग्रवादी तोपाल मुंडा को मुरहू से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह अपनी पहचान छिपाकर सामान्य जीवन जी रहा था और ड्राइवर का काम कर रहा था। उसके खिलाफ पुलिस मुठभेड़, फायरिंग और 17 CLA एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। सिमडेगा की पाकड़ टाड़ थाना पुलिस ने कोरोना काल के आपदा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन मामले में पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहे 8 वारंटियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। SDPO धर्मदेव पासवान के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत यह सफलता मिली है। रामगढ़ के भुरकुंडा में पुलिस ने पंचायत भवन के पीछे चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि इस अवैध नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सघन जांच कर रही है।
1: भुरकुंडा उप के अंतर्गत अवैध हथियार के निर्माण और उसकी तस्करी के संदर्भ में प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर विगत रात्रि दिनेश विश्वकर्मा के घर पर छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में अपराधकर्मी दिनेश विश्वकर्मा के घर पर अवैध हथियार निर्माण की इकाई का पर्दाफाश हुआ है और घर की विधिवत तलाशी के क्रम में अवैध हथियार निर्माण में प्रयुक्त होने वाली कई सामग्रियां सबको बरामद किया गया है।
0: गोड्डा के कारगिल चौक स्थित बंगाल ज्वेलर्स में कल शाम 3 नकाबपोश अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग कर करीब 30 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लूट ली। घटना के विरोध में पूर्व विधायक अमित मंडल और स्थानीय स्वर्णकारों ने आज गोड्डा बाजार बंद रखने का आह्वान किया है।
2: 7 बजे शाम में अगर इस तरह की घटना घटेगी तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य गोड्डा के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मैं पुलिस से भी मांग करता हूं, स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी मांग करता हूं कि त्वरित गति से जो भी कल्प्रिट है, दोषी है, उसको गिरफ्तारी हो। और पुलिस प्रशासन क्या काम कर रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं, ये काफ़ी चिंता का विषय दिखने को मिल रहा है।
0: राज्य के पुलिस महानिदेशक आज रांची स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में आयोजित पासपोर्ट सेवा दिवस के विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इस गरिमामयी समारोह में पासपोर्ट सेवाओं को सुगम बनाने और सुरक्षा सत्यापन प्रक्रियाओं में तेजी लाने से जुड़े प्रयासों पर चर्चा होगी। रांची सहित राज्य के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम केंद्र ने गरज चमक के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन मॉनसून थोड़ा कमजोर रहेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने नई दिल्ली में विजन 2050 पर झारखंड की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, माइंड से माइंड्स की ओर बढ़ेगा झारखंड, AI पर फोकस। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची संघ कार्यालय पर हमले में देश भर में NIA छापे। प्रभात खबर लिखता है, वित्त मंत्री दिल्ली में मौजूद लेकिन सरकार के कार्यक्रम से रखी दूरी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जमीन माफिया को लाभ दिलाने के लिए DC की सही रिपोर्ट को पलट दिया था कमिश्नर ने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्विक कंपनियों के साथ की बैठक, रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों पर चर्चा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में इटकी TB सैनिटोरियम का किया निरीक्षण, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने और पुरानी पहचान लौटाने का दिया निर्देश। बोकारो वन भूमि घोटाले में CID की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी शैलेश कुमार सिंह पटना से गिरफ्तार, रांची की अदालत ने भेजा न्यायिक हिरासत में। खूंटी में 5 वर्षों से फरार PLFI उग्रवादी और सिमडेगा में कोरोना काल के 8 वारंटी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। और रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में आज छाए रहेंगे बादल, गरज चमक के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: साथियों, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम है लोकरंग, आप सुनेंगे खोरठा लोकगीत।

साथियों, अभी आप खोरठा लोकगीत सुन रहे थे। कलाकार थे सोहित कुमार महतो और उनके साथी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब कार्यक्रम है रसरंजन और आप सुनेंगे फिल्मी गाने।

साथियों, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में ये गाना सुन रहे थे। फिल्म थी स्वयंवर। इस गीत को लिखा था गुलजार ने और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने। आप फिल्मी गाने सुन रहे हैं, ये आकाशवाणी रांची केंद्र का प्रसारण है और आपके साथ मैं हूँ राजेश।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: और अब आइए हम आप सभी को सुनवाएं ये गाना, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

बेटी बेटे ये थे फिल्म गाना में स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। साथियों कार्यक्रम है रसरंजन, आप सुन रहे हैं फिल्मी गाने।

तेरे घर के सामने आवाज़ थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत हसरत जयपुरी का था और संगीत सचिन देव बर्मन का। मेरे सनम, अब सुनिए इस फिल्म का ये गाना।

साथियों, अभी आप मेरे सनम फिल्म का ये गाना सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। ये फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन रहे थे और हमारी आज की मुलाकात बस यहीं तक।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम में सुनिए राग नंदमय ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है। कलाकार हैं सबिता रॉय, इनका साथ दिया है तबले पर श्यामानंद झा और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती ने।

0: नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे लिफ्ट एलिवेटर के उपयोग में हमें क्यों सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, बात करने वाले हैं AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और इसका क्या प्रभाव है इसके बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राइट ब्रदर्स के बारे में। इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं माचिस के आविष्कार के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करेंगे और क्या जानकारी देंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं लिफ्ट एलिवेटर के उपयोग में हमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए इसके बारे में। आज बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और आवासीय परिसरों में लिफ्ट का उपयोग बहुत आम बात हो चुकी है। ये समय और श्रम दोनों को बचाने का काम करता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए लिफ्ट का उपयोग करते समय हमें कुछ शर्तों का, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि लिफ्ट पूरी तरह हमारे सामने आकर रुकी है या नहीं। लिफ्ट में कभी भी इसकी निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रत्येक लिफ्ट पर इसकी अधिकतम भार क्षमता और यात्रियों की संख्या भी लिखी होती है। यदि क्षमता से अधिक भार डाल दिया जाए तो लिफ्ट के संचालन में समस्या आ सकती है और ये दुर्घटना की शिकार हो सकती है। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते समय इन्हें हाथ, पैर या किसी वस्तु से रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि लोग लिफ्ट में जल्दीबाजी में घुसने के चक्कर में हाथ या पैर से बंद होते समय रोकने की कोशिश करते हैं। ये काफी घातक सिद्ध हो सकता है। अधिकांश आधुनिक लिफ्टों में सेंसर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी जोखिम नहीं लेना चाहिए और खास करके बच्चों को कभी भी लिफ्ट में अकेले इसका इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। यदि बच्चे लिफ्ट का उपयोग करें तो इनके साथ किसी वयस्क का होना बहुत आवश्यक है। बच्चों को लिफ्ट में कूदने, शरारत करने या सभी बटन दबाने जैसी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल नहीं करने देनी चाहिए। और यदि लिफ्ट अचानक बीच में रुक जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए और वहां पे दिए गए अलार्म बटन या इंटरकॉम या मोबाइल फोन से सहायता लेने की कोशिश करनी चाहिए। आग लगने या भूकंप जैसी आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सीढ़ियों के माध्यम से ही नीचे या ऊपर जाने की कोशिश करें, क्योंकि बिजली कभी भी बाधित हो सकती है और लिफ्ट बीच में फंस सकती है या फिर नीचे गिर सकती है। यदि किसी लिफ्ट पर मरम्मत कार्य चल रहा हो या आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा हो तो उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। केवल सुरक्षित और कार्यशील लिफ्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके हाथ गीले हैं या आप भारी सामान लेकर जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक लिफ्ट में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास जो सामान है उसका वजन अगर क्षमता से ज्यादा है तो बिल्कुल भी उस लिफ्ट में उसे लेकर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर लिफ्ट का अगर सही उपयोग करें और नियमों को मानते हुए उपयोग करें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं, नियमों की अनदेखी करके हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है और इसमें हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो लिफ्ट का इस्तेमाल करें लेकिन सावधानी के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ।
1: अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और प्रभाव। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर अभिजीत मुस्तफी, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PIT मिश्रा में कार्यरत हैं और आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर हमारे स्टूडियो।
2: धन्यवाद बसंत जी मुझे यहाँ पे आने के लिए, निमंत्रण देने के लिए।
1: सर आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो कंप्यूटर

0: का युग है और हमारा जो भी काम आज कर रहे हैं वो आधे से ज़्यादा काम जो है वो कंप्यूटर पे बेस्ड है, और अभी का जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो चुका है और इस विषय पर बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, रिसर्च भी हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा आपसे कि एआई और मशीन लर्निंग में क्या अंतर है, और क्या एआई केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित है या आम लोगों के जीवन में भी इसका उपयोग हो रहा है या इससे फायदा हो सकता है?
1: देखिए, जो आपका सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आज के डेट में, क्योंकि कई लोग, हम भारतवर्ष की अगर बात करें, अगर ग्रामीण भारत की बात करें, तो कई लोगों के पास अब भी ये सवाल का जवाब नहीं है कि ये एआई क्या है और एआई क्या कर रहा है। जो एआई को थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए एआई का एक अलग इमेज होता है। हमारे लिए जो समझने की बात है कि एक ज़माना हुआ करता था जब कंप्यूटर को हम कहते थे कि एक प्रॉब्लम को इस तरह से आप सॉल्व कीजिए,
0: जी
1: जिसे हम कहते थे उस ज़माने में एल्गोरिदम देने, एल्गोरिदम यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया, एआई का जो जागरूकता था वो साइंटिस्ट में बढ़ा और एक नया तरीका निकल के आया जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। और इस तरीके में सबसे खास बात ये निकली कि इसको सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिदम या प्लान का ज़रूरत नहीं होता था। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो कंप्यूटर को खुद सिखाया जा सकता था कि इस डेटा को इस्तेमाल करके किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये एक कोइंसिडेंस की बात मान लीजिए, या एक किसी तरह से लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि ह्यूमन ब्रेन भी इसी तरह से काम करता है। जब आप एक बच्चे को बार बार लाल रंग दिखाते हैं और कहते हैं ये लाल रंग है, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में, कहीं उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि जब हम लाल रंग देखते हैं तो इसे लाल कहना है। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी का एसोसिएशन है, इस तरह से एक ह्यूमन बेबी भी सीखता है, ह्यूमन ब्रेन को भी हम ट्यून करते हैं। और ये कंप्यूटर साइंस में जो आज एआई का दौर है इसमें भी इसी पद्धति का यूज़ कर रहे हैं। फायदा इससे कई सारे हैं कि लोगों को काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका लग रहा है जो पहले, आज से हम 20 साल पहले की बात करें तो हम कहते थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती, लेकिन आज के दिन में ये सॉल्व हो रही है। तो
0: एआई के
1: एआई
0: साथ।
1: की वजह से ये सॉल्व हो रही है।
0: और अगर आज के समय में अगर हम बात करें तो किन किन क्षेत्रों में इसका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और क्या उनसे फायदा हो रहा है?
1: आज के दिन अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सोशल लाइफ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में कोई ऐसा डोमेन बचा ही नहीं है जो एआई से अनछुआ है। हर दिशा में आप देखें तो कहीं ना कहीं एआई अपना रोल प्ले कर रहा है। हम एक एग्जाम्पल ही ले लें कि आज दुनिया के कई जगहों पे फार्मिंग होती है, कई जगह में ऐसे ऐसे जगह में फार्मिंग किया जा रहा है कि जहाँ पहले आदमी सोच नहीं सकता था कि फार्मिंग पॉसिबल है, लेकिन आज हमारे पास प्रिसिशन फार्मिंग के नाम से एआई का एक ऐसा उपयोग है जो तुरंत मुझे बता देता है कि इस जगह के लिए कौन सा सही क्रॉप उपयोगी होगा। तो इस तरह से आप अगर देखें, अगर वारफेयर की बात करें, अगर डिफेंस की बात करें, तो जहाँ पहले हमें सोल्जर भेजने पड़ते थे, आज हमें सोल्जर भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज कई देश हैं जो अपने बॉर्डर्स की रक्षा रोबोट्स के थ्रू कर रहे हैं।
0: जी
1: आश्चर्यचकित हो गया, कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा, चाइना में बैठे एक साइंटिस्ट ने अपने टेक्स्ट के द्वारा, खाली मुंह से जबानी बोल के, एक विजुअल डायग्राम बना दिया जिसे देख के जर्मनी में एक डॉक्टर ने एक ऑपरेशन कर डाला। तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये एआई ड्रिवन था। और हम साधारण लोगों के लिए लगता है कि एआई अभी दूर है और सीखने की बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। एआई धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत अंदर तक आ चुकी है, हर चीज में आप देखें। और हमारा जो आज जेंजी की हम बात करते हैं, इनके लिए तो एआई के बिना रहना ही मुश्किल हो जा रहा है। हर चीज में, इस होमवर्क में हो, या फिर कॉलेज एग्जाम में हो, या किसी चीज को समझने में हो, जेई या नेट की प्रिपरेशन में हो, हर जगह एआई आज हमारे सामने आ चुकी है।
0: हम एआई का अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें कि हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो हेल्थ सेक्टर में अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो महंगे महंगे इलाज हैं, क्या उन इलाजों में इसका फायदा होगा और इसके इस्तेमाल से क्या उसके जो खर्चे हैं उसमें कमी आने के चांसेस?
1: दो चीज़ें हम ज़रूर कहना चाहेंगे। एआई इन हेल्थ सेक्टर आज के डेट में बहुत आगे बढ़ चुकी है, और इससे जो आपका सवाल है कि इससे हमें एज अ कॉमन मैन क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो इसमें कई सारे फायदे नज़र आ रहे हैं। एक तो होता है कि जो पहले प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, डिटेक्शन वाला स्टेज चलता है,
0: जी
1: उसमें हमें पता करना होता है कि भाई किसी पेशेंट को हुआ क्या है। तो ये हमेशा से, सदियों से आप देखेंगे डॉक्टर का डोमेन में हुआ करता था। लेकिन आप सोच लीजिए कि गांव में चले गए जहां डॉक्टर मीलों दूर है, तुरंत हम डॉक्टर के पास पहुंच नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो डायग्नोसिस है उसको ठीक से कर पाना ही अपने आप में एक चैलेंज है। आज एआई उस लेवल में पहुंच चुका है जहां पे हम एक एक्सरे इमेज या एमआरआई इमेज या पॉजिट्रॉन एमिशन इमेज, इन सारों को अगर हम एक मॉडल में डाल देते हैं, वो मुझे तुरंत बता देता है कि ये डायग्नोसिस क्या है। और खाली इतना ही नहीं कि इसके डिजीज में क्या है, ये लेवल भी बता देगा, और अगर इमेज है तो उस इमेज में कहाँ पे ये कैंसर है या कुछ और किसी तरह का अगर उसमें पाया गया, तो वो तुरंत बता देता है कि किस पार्ट में ये इफेक्ट हो रहा है। तो ये तो हो गया।

0: कि डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस वाला बात। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आ रही है वो है डिस्कवरी ऑफ ड्रग। तो ड्रग डिस्कवरी में एआई का आज बहुत यूज़ हो रहा है, क्योंकि हर ड्रग हर इंसान को सूट नहीं करता है,
1: जी
0: और हमें समझना होगा कि कौन सा ड्रग किसके बॉडी में किस तरह से रिएक्ट करेगा। पहले कंपनियां ये काम ट्रायल एंड एरर से करती थी, एनिमल टेस्टिंग से करती थी। आजकल धीरे धीरे टेस्टिंग के पहले ही आपको क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि ये ड्रग क्या होने वाला है और इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। तो ये अगर हम चंद चीज़ें देखें तो हेल्थ सेक्टर में एआई आज बहुत आगे बढ़ चुकी है।
1: यानी कि एआई का इस्तेमाल अगर सही तरीके से करें तो आपको फायदा होगा, और अभी इस चीज का फायदा लोग उठा रहे हैं। और हम इस चीज को थोड़ा सा और गहराई से समझना चाहेंगे विज्ञान की भाषा में, कि अगर जैसे नासा या फिर हमारे देश का जो विज्ञान संस्थान है इसरो, अगर हम किसी ग्रह की खोज करने या वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उसको जानने के लिए हम यहाँ से अपने लोगों को भेजते हैं स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, तो क्या एआई की मदद से हम बिना इंसानों को भेजे वहाँ पर क्या है नहीं है ये सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं?
0: ये बड़ा अनोखा सवाल है। अगर आप पर्सनली हमसे पूछे तो मेरे हिसाब से 2040 कट ऑफ है जब कोई रोबोट भारत के तरफ से कोई एक प्लेनेट पे उतर जाएगी और वो बिल्कुल वही काम करेगी जो एक इंसान वहाँ पे पहुँच के करती है। तो उसके आँख में कंप्यूटर विजन लगा होगा, उसके हाथ में टच सेंसर्स लगे होंगे, लेकिन उसे मरने का खतरा नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा,
1: जी
0: और आसानी से वो किसी भी पत्थर को उठा के अपने आँख से देख के उसका टेक्सचर एनालिसिस करके बता पाएगा कि उसमें क्या मेटल है या क्या कंपाउंड है। तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में एआई एंड रोबोटिक्स, ये दोनों का जो मिश्रण है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, और इससे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको खतरा बिना लिए ही आपको पता चल जाता है कि आपका जो एक्सप्लोरेशन है वो आपको कितना फ़ायदा देने वाला है। तो मुझे लगता है कि स्पेस इज द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर एआई, और आज नहीं तो कल सबसे बड़ा एक्सप्लोजन ऑफ एआई एप्लीकेशन इसी स्पेस में ही
1: इस
0: होगा।
1: दिशा में भी कुछ काम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं डेटा सुरक्षा की, क्योंकि एआई हम इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो डर होता है कि हम जो डेटा शेयर कर रहे हैं या हमने जो चीज़ फीड कर रखी है उसका गलत इस्तेमाल होने का, तो अब सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के सामने, जो डेटा है वो सुरक्षित कैसे रहे?
0: इसमें हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंडिया में अगर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करते हैं, जो आजकल चली हुई है, एलएलएम्स की जो बात करते
1: जी
0: हैं, तो इंडिया में आज के डेट में खुद का अपना एलएलएम उस प्रकार का नहीं बन पाया है जो बाकी देशों में बन चुके हैं। तो इससे ये होना ही होता है कि हम कई बार अपना जो डेटा है वो विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स में डाल देते हैं, और ये कंपनी अपने जहाँ एग्रीमेंट्स है, जहाँ पे इनका यूला लिखा हुआ है, वहाँ पे बड़े छोटे अक्षरों में ये लिखती है कि आपका डेटा को यूज़ किया जाएगा मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अगर हम जागरूक रहें और उन चीज़ों को यहाँ अपलोड ना करें जिनका मुझे लगता है मेरा पर्सनल लाइफ से कोई लेन देन है, तो हम सेफ हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को अपलोड करते हैं तो ये जान के करना होगा कि ये चीज़ देश के बाहर जा रही है और हो सकता है कि उसका कोई गलत इस्तेमाल करे। तो इस बारे में मुझे लगता है कि हम भारतीयों को बहुत जानकार होना पड़ेगा, और गवर्नमेंट टाइम टाइम पे कई सारे वार्निंग्स देते हैं, कई सारे हमें ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उन चीज़ों पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
1: जो युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करना, अब तो इसकी विधिवत पढ़ाई भी शुरू हो गई है अलग अलग कॉलेज और स्कूलों में, तो इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? और जो नौकरी को लेकर के एक सवाल हमेशा उठता है कि एआई के आने के बाद हमारी नौकरी चली जाएगी, फ्यूचर में क्या ऐसा हो सकता है? या फिर खुद को सेफ रखने के लिए आप अभी से ही ट्रेनिंग लेते रहें, आगे चलते रहें इस फील्ड में, आप क्या सोचते हैं?
0: मैं अपने क्लास में भी ये कहता हूँ कि किसी भी इंसान का नौकरी एआई के कारण नहीं जाएगा, उसकी नौकरी इससे जा सकती है कि उससे बढ़कर कोई एआई जानने वाला इंसान आ जाए। तो एआई किसी की नौकरी लेगी मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये बात हम कतई नहीं काट सकते हैं कि एआई जानना आज बहुत ज़रूरी हो चुका है, और इस बारे में आप देखेंगे कि भारतीय सरकार भी छोटे छोटे क्लासों में ही एआई का पढ़ाई शुरू करा रहे हैं।
1: जी
0: एआई का पढ़ाई करना अपने आप में बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत टफ है। मैं खुद फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट था तो उस टाइम हमने जो फिजिक्स ऑनर्स में पढ़ा था उसकी जो कठिनाई थी उसके बनिस्बत एआई की कठिनाई उतनी नहीं है, लेकिन दिक्कत जो मुझे लगता है कि बच्चों के सामने आ जाती है कि चॉइस बहुत वाइड हो जाए, और क्या पढ़े क्या ना पढ़े इस चीज़ पे उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसके लिए कई सारे आजकल वेबसाइट्स हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें अगर आप जाएंगे थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन क्या पढ़ना ज़रूरी है और क्या आज है लेकिन कल ना भी रहे। तो मुझे लगता है जो कोर एस्पेक्ट्स है, जो कोर कंपोनेंट्स है एआई का, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और उससे हम बाकी सारी चीज़ों को खुद ब खुद ही सीख लेंगे।
1: जो भी युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या फिर आगे चलकर इसमें काम करना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या तैयारी करनी चाहिए और आगे क्या भविष्य हो सकता है?
0: देखिए एआई का भविष्य जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, एआई का जो आज के दिन रुझान है ये हो सकता है थोड़ा घटे, लेकिन एआई का इस्तेमाल बढ़ना ही बढ़ना।

0: तो जो भी स्टूडेंट हो, जो भी छात्र हो, जो उसे लगता है कि एआई के फील्ड में अपना जीवन वो बनाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपका थोड़ा सा बेसिक साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स में रुझान होना चाहिए, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा और कुछ की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन कर पाते हैं, थोड़ा बहुत डिविजन कर पाते हैं, और आपको इंटरेस्ट है, तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा दौर हमारे लिए चल रहा है कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जहाँ पे आपको अधिक डेप्थ में ना जाके भी एआई मॉडल जनरेट करने का आसान तरीका मिल जाता है। तो अगर कोई छात्र या स्टूडेंट उस तरह से सोच रहा है, तो उसके लिए भी कई संभावनाएं हैं।
1: यानी कि इस फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं, भविष्य में आप इसमें अपना करियर संवारना चाहते हैं, तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी और तभी जाकर इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने ढेर सारी बातें की सर आपसे, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता में एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और प्रभाव। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में थे डॉक्टर अभिजीत मुस्तफी। ये हमने बात कर लिया एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और प्रभाव के बारे में।
2: इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत, और गीत के बाद हम लौटेंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिकों के बारे में, और आज हम जिस महान वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं उन्हें दुनिया राइट ब्रदर्स के नाम से जानती है। जिन्होंने हवाई जहाज के आविष्कार में अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिन्हें दुनिया राइट ब्रदर्स के नाम से जानती है, और जिन्होंने दुनिया में हवाई जहाज की यात्रा को सरल बनाने का काम किया, इन दोनों भाइयों का नाम है ऑर्विल राइट और विल्बर राइट। विल्बर राइट का जन्म 16 अप्रैल सन 1867 को हुआ, जबकि ऑर्विल राइट का जन्म 19 अगस्त सन 1871 को हुआ। इनके पिता एक धर्मगुरु थे और माता यांत्रिक कार्यों में विशेष रुचि रखती थीं। माता पिता ने बचपन से ही दोनों भाइयों में जिज्ञासा, परिश्रम और नई चीजें सीखने की आदत विकसित की। एक दिन इनके पिता बच्चों के लिए रबर से चलने वाला एक छोटा सा खिलौना लेकर आए। उस खिलौने ने दोनों भाइयों के मन में उड़ने की इच्छा जगा दी। अपनी युवावस्था में दोनों भाइयों ने साइकिल बनाने और उसकी मरम्मत का व्यवसाय शुरू किया। इस काम से इन्हें मशीनों की बनावट, संतुलन और गति के सिद्धांत की अच्छी समझ मिल गई। इसी अनुभव का उपयोग करते हुए उड़ने वाली मशीन बनाने में ये लग गए। राइट ब्रदर्स ने पक्षियों की उड़ान का गहराई से अध्ययन किया। इन्होंने ग्लाइडर बनाए, अनेक प्रयोग किए और कई बार असफल भी हुए, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। और इनका मानना था कि सफलता की सबसे पहली सीढ़ी असफलता ही होती है, इसलिए असफल होने के बावजूद ये कोशिश करते रहे। कई वर्षों के कठिन परिश्रम और लगातार प्रयोगों के बाद 17 दिसंबर सन 1903 को इन्होंने अपने विमान का सफल परीक्षण कर लिया। उस दिन ऑर्विल राइट ने लगभग 12 सेकंड तक उड़ान भरी और लगभग 120 फीट की दूरी तय की। ये इतिहास की पहली सफल नियंत्रित और इंजन संचालित मानव उड़ान थी। इस ऐतिहासिक सफलता ने पूरे विश्व को नई दिशा देने का काम किया। इसके बाद विमान तकनीक का तेजी से विकास हुआ। आज यात्री विमान, मालवाहक विमान, हेलीकॉप्टर और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, इन सब की नींव राइट ब्रदर्स के प्रयासों पर ही आधारित मानी जाती है। राइट ब्रदर्स केवल आविष्कारक ही नहीं थे, बल्कि धैर्य, अनुशासन, वैज्ञानिक सोच और निरंतर प्रयास के प्रतीक भी माने जाते थे। इन दोनों ने सिद्ध करने का काम किया कि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो असंभव भी संभव बन सकता है। आज दुनिया भर में इनके योगदान को सम्मान के साथ याद किया जाता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इनका नाम सदैव प्रेरणा के साथ लिया जाता है। राइट ब्रदर्स का जीवन हमें ये संदेश देता है कि बड़े सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास, परिश्रम, धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने आपको बता दिया कि राइट ब्रदर्स कौन थे और इन्होंने किस चीज की खोज की थी, किस चीज का आविष्कार किया था। अब हम बात करते हैं खोज और आविष्कार में आज माचिस के आविष्कार के बारे में। माचिस, वही माचिस जो हमारे घर में है, जिसका इस्तेमाल हम सभी करते हैं, और इस माचिस को बनाने के पीछे काफी मेहनत लगी है। गैस लाइटर और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन के युग में भी माचिस का जो वैल्यू है, जो महत्व है, वो कम नहीं हुआ। घरों, होटलों, पूजा पाठ, ग्रामीण क्षेत्रों और अनेक छोटे बड़े कार्यों में आज भी माचिस का उपयोग किया जाता है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक समय में आग जलाना बहुत कठिन माना जाता था। लोग दो पत्थरों को टकरा कर चिंगारी पैदा करते थे, फिर लकड़ियों को लंबे समय तक रगड़ कर आग जलाने का काम करते थे। ये प्रक्रिया कठिन, समय लेने वाली और कई बार असफलता को भी प्राप्त होती थी। आधुनिक माचिस के आविष्कार का श्रेय अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन वॉकर को दिया जाता है। इनका जन्म 29 मई 1781 में हुआ था और ये एक रसायन और औषधि विक्रेता के तौर पर जाने जाते थे। सन 1826 में एक दिन ये अपनी प्रयोगशाला में रसायनों का प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग के दौरान इन्होंने देखा कि एक लकड़ी की तीली के सिरे पर लगा रासायनिक मिश्रण सूख गया है। जब उन्होंने उस तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा तो वो तुरंत जल उठी। इस प्रकार संयोग से दुनिया की पहली घर्षण माचिस का आविष्कार हुआ। इसके बाद जॉन वॉकर ने ऐसी माचिस बनाने का काम शुरू किया जो लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जा सके। ये उस समय एक क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में दुनिया के सामने उभर कर सामने आई, और क्योंकि अब आग जलाने के लिए लंबे और कठिन प्रयास की आवश्यकता नहीं रह गई थी। हालांकि शुरुआती माचिस में कुछ कमियां थीं, इससे तेज गंध आती थी और ये कभी कभी असुरक्षित भी साबित हुआ करती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के प्रयास जारी रखे। सन 1844 में स्वीडिश रसायनज्ञ एरिक ने सुरक्षित माचिस का सिद्धांत विकसित कर लिया। जॉन एडवर्ड ने इसमें सुधार किया और ऐसी सेफ्टी माचिस बनाई जो केवल डिब्बी की विशेष रगड़ने वाली सतह पर ही जला करती थी। यही प्रणाली आज भी अधिकांश माचिस की डिब्बियों में उपयोग की जाती है। आज माचिस की तीली लकड़ी या गत्ते से बनाई जाती है। इसके सिरे पर विशेष रासायनिक मिश्रण लगाया जाता है। डिब्बी की

0: किनारे पर अलग रसायन होते हैं जबकि तीली को उस सतह पर रगड़ा जाता है। तो घर्षण करने के बाद उत्पन्न गर्मी रासायनिक अभिक्रिया करती है और तीली जलती है। ये छोटा सा आविष्कार मानव जीवन को सरल, सुविधाजनक और समय की बचत करने वाला सिद्ध कर चुका है। लेकिन माचिस का उपयोग करते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इसे हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों के पास इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उपयोग के बाद तीली को पूरी तरह बुझाकर फेंकना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। माचिस का आविष्कार हमें ये सिखाता है कि विज्ञान के छोटे छोटे आविष्कार भी मानव जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जॉन वॉकर और अन्य वैज्ञानिकों की मेहनत ने आग जलाने की प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का काम किया। तो आज हमने ढेर सारी जानकारी दे दी आपको माचिस के बारे में भी, और हमने ढेर सारी बातें भी कर ली आपसे। लेकिन अब हमारी स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है, और जाने से पहले हम हर बार की तरह आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, और मौसम में परिवर्तन हो चुका है तो जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: विज्ञान जगत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, प्रस्तुति प्रभु शरण की थी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में हम लेकर आएंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आप सबों को विनीता का जोहार, नमस्कार।

श्रोताओं, जानकारियों और मनोरंजन से भरे प्रोग्राम में आगे बढ़े इससे पहले एक खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए। गीत के बाद हम मिलेंगे एक अच्छे से सुविचार के साथ और साथ ही होंगी ढेरों बातें।

तो इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जोहार रांची कार्यक्रम में। और अब वक्त है सुविचार का। तो कहते हैं ना कि समय ना कभी अच्छा होता है ना ही कभी बुरा, वो सबके लिए ना एक समान है। समय को अच्छा या बुरा व्यक्ति के स्वयं के कर्म बनाते हैं। तो बस अच्छे कर्म करते रहिए, समय खुद ब खुद अच्छा होता जाएगा। कर्म अच्छे होंगे तो दुआएं भी तो अच्छी ही मिलेंगी ना।

और अब कुछ बातें मौसम की। तो रांची समेत राज्य में अगले चार दिन मानसून कमजोर रह सकता है। पिछले दिन खाड़ी पर बना निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इस दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। इसलिए इस उम्मीद में घर से ना निकले कि बारिश का सामना नहीं होगा। आप छतरी जरूर लेकर निकले। और कई जिलों में तो हल्की बारिश का भी अनुमान है और पिछले दो दिनों में हम यही देख रहे हैं। और राज्य में पिछले 24 घंटे में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की वृद्धि हुई है। रांची का अधिकतम तापमान 29.1 और न्यूनतम 23.4 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कि राहत भी है और नहीं भी। आप समझ ही रहे हैं ना कि आप बारिश का ये सोचकर घर से ना निकले कि बारिश नहीं होगी। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आप छतरी जरूर लेकर निकले और इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखें। बाहर की चीज़ें जितना कम हो सके खाएं, पानी उबाल कर पिए, नाली में पानी ना जमा होने दें, घर की साफ सफाई रखें, जैसी अनेक छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर ख्याल रखेंगे तो हम इस मौसम में भी अपना और अपने घर को अच्छे से रख सकते हैं, खुश रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।

तो जोहार रांची कार्यक्रम में अब कुछ बातें आज के दिन की। तो आज है 9 जुलाई, तो चलिए आज के दिन क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो आपको बताएं कि भारत के प्रमुख एक्सचेंज समूहों में से एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गठन 9 जुलाई 1875 को हुआ था और ठीक 2 साल बाद दुनिया में टेनिस का पहला महत्वपूर्ण टूर्नामेंट विंबलडन देखा गया, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन 1877 में हुई थी। 1951 में देश में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी और 1969 में आज ही के दिन वन्य जीव बोर्ड ने शेर को देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया था। आज ही के दिन 1807 को फ्रांस रूस पर्सिया द्वारा टिलसिट की दूसरी संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और आज ही के दिन 1969 को वायजर 2 ने बृहस्पति के सबसे करीब से उड़ान भरी और वायजर 2 ने पहले से अज्ञात चंद्रमा की भी खोज की थी, जिसे बाद में एंड्रास्ट्रिया नाम दिया गया था, जो बृहस्पति के छल्लों को के ठीक बाहर परिक्रमा कर रहा था। 2007 में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हिमांशु जैन को ग्लास साइंस के क्षेत्र में ध्यात्वत कार्य हेतु ऑटो स्कॉट रिसर्च की पुरस्कार प्रदान किया गया था। और भी बातें होंगी पर इस खूबसूरत से गाने के बाद।

बातें हो रही आज के दिन की, तो अब उनकी बातें जिनका है आज जन्मदिन। तो आपको बताएं कि गुरुदत्त, जो कि भारतीय सिनेमा के सबसे महान फिल्मकारों में से एक थे, उनका जन्म आज ही के दिन हुआ 1925 में। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में गुरुदत्त ने एक अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और लेखक के रूप में अमिट छाप छोड़ी थी। उन्होंने कुल 8 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें प्यासा, कागज के फूल, साहेब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद जैसी कालजयी रचनाएं शामिल है। प्यासा को टाइम पत्रिका की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में जगह मिली थी। तो चलिए ना, इसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं।

बातें हो रही है जन्मदिन की, तो आपको बताएं कि फिल्म निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक के बालाचंद्र का जन्म भी आज ही के दिन 1930 में हुआ था। संजीव कुमार, जो कि हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1938 को हुआ था। ये एक महान कलाकार थे और इनका नाम फिल्म जगत की आकाशगंगा में एक ऐसे ध्रुव तारे की तरह याद किया जाता है, जिनके बेमिसाल अभिनय से सुसज्जित फिल्मों की रोशनी में बॉलीवुड हमेशा जगमगाता रहेगा। उन्होंने नया दिन नई रात फिल्म में 9 रोल किए थे। इसके अलावा कोशिश, खिलौना, शोले, शतरंज के खिलाड़ी, ना जाने कई ऐसी हिट फिल्में दी हैं हमें। उन्हें श्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भी पुरस्कार मिला था। तो चलिए इनकी हिट फिल्म का एक गाना सुनते हैं।

जोहार रांची कार्यक्रम में आप हैं विनीता के साथ। तो चलिए अब कुछ बातें पर्यटन की करते हैं। घूमने के लिए ज्यादातर लोग पहाड़ों का रुख करते हैं या पहाड़ों पर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको पहाड़ों के साथ शांत झीलों का सुकून भी पसंद है तो ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं जो आपकी छुट्टियों को यादगार बना सकती है। जी हाँ, आज कुछ ऐसी ही खूबसूरत हिल स्टेशनों के बारे में हम आपको बताएंगे जहाँ की झीलें ही सबसे बड़ा आकर्षण है। वहाँ की शांत झीलें, ठंडी हवाएं और वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य आपका मन मोह लेगी। तो इससे पहले कि हम उन जगहों के बारे में आपको बताएं, चलिए एक खूबसूरत सा गीत और सुनते हैं।

तो चलिए अब आपको बताते हैं उन खूबसूरत जगहों के बारे में। तो सबसे पहले जो नाम है वो है उत्तराखंड का नैनीताल। यहाँ की पहचान यहाँ के स्थित नैनी झील से है। नाशपाती के आकार की ये खूबसूरत झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ बोटिंग करने और मॉल रोड पर घूमने और शाम के समय झील में चमकती रोशनी का नजारा देखने का अलग ही मजा है। यहाँ घूमने के लिए मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय बेस्ट माना जाता है। और फिर आता है राजस्थान का माउंट आबू। ये हिल स्टेशन अपनी खूबसूरत नक्की झील के लिए जाना जाता है। पहाड़ियों और अनोखी चट्टानों से घिरी ये झील पर्यटकों को काफी पसंद आता है। यहाँ आप बोटिंग के साथ साथ झील के किनारे घूमने का भी आनंद ले सकते हैं। और अब बातें करेंगे तमिलनाडु के कोडाईकनाल की। पलानी पहाड़ियों में स्थित कोडाईकनाल झील अपनी खास स्टार शेप के लिए जानी जाती है। सुबह के समय झील के ऊपर छाई धुंध इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना देता है।

ये हंसी वाली है। जी हाँ, बातें हो रही हैं खूबसूरत सुकून देने वाली जगहों की, तो अब बारी है मेघालय के शिलोंग की। यहाँ की वॉट्स लेक अपनी शांत सुंदरता और हरे भरे बगीचों के लिए मशहूर है। झील के ऊपर बना छोटा पुल और आसपास का प्राकृतिक वातावरण इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाता है। तो अगर आप खूब सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो ये जगह बेहतरीन है। और अब बताते हैं आपको तमिलनाडु के ऊटी हिल स्टेशन की। ऊटी झील नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे फेमस जगहों में से एक है। झील के आसपास फैले यूकेलिप्टस के पेड़ और ठंडी हवाएं यहाँ के माहौल को खास बना देती है। तो अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं जहाँ पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ झीलों का सुकून भी मिले, तो ये हिल स्टेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो बस लिस्ट काफी लंबी मैंने दे दी है, तो छुट्टियों का आनंद लीजिए, प्रकृति की गोद में सुकून के पल बिताइए।

ढेरों बातें कर ली हमने, अब कुछ एक अच्छी सी खबर भी आपको देते हैं। तो आज की दुनिया में जहां परमाणु युद्ध का साया जलवायु परिवर्तन पर लगातार खतरा बने हुए हैं, ऐसे में फ्रांसीसी कंपनी ने कमाल की तकनीक विकसित की है। स्टार्टअप कंपनी मोमेंटम टेक्नोलॉजी ने लाइफ पॉड नामक सर्वाइवल पॉड डिजाइन की है और कंपनी का दावा है कि प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध के समय जब बिजली और घर सरकारी इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाएंगी, तब भी ये पॉड इंसानी जिंदगी को सुरक्षित रखेंगे। इन बंकरों की सबसे बड़ी खासियत ये है इनका पोर्टेबल होना। इन्हें जरूरत के हिसाब से आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इन्हें आम सामान की तरह जहाजों में भी भेजा जा सकता है, यानी कि सुनामी धमाके से लोगों को बचाएगा ये सर्वाइवल पॉड। तो अच्छी न्यूज है ना ये।

तो ढेरों बातों के साथ ही वक्त हो गया है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो चलते चलते बस इतना ही कहूंगी कि जिंदगी चाहे एक दिन की हो या चार दिन की, उसे ऐसे जिए जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। तो बस इन बातों के साथ विनीता को दे विदा। नमस्कार, जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार रांची। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर और 100.5 मेगा हर्ट्स पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म के गीत के साथ। और इस गीत को सुनने की फरमाइश आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा ततरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की।

और अगली फरमाइश आई है मेहर नगर उमर खेर महाराष्ट्र से अभिजीत गौहानकर राही श्रीमती सरिता गौहानकर प्रिंस एकांश गौहानकर से की, और बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गौहानकर प्रणीता गौहानकर अर्जुन गौहानकर टुक टुक की। इन्होंने सुनना चाहा है भूत बंगला फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज़ में। संगीत प्रीतम का है और इस गीत को लिखा है कुमार ने।

और आइए अब सुनते हैं धुरंधर फिल्म का गीत अरिजीत सिंह अरमान खान की आवाज में। इस गीत को लिखा है शाद कामिल ने और इसे सुनना चाहा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मीका विरक ने।

और आइए अब सुनते हैं सैलाब फिल्म का गीत, अनुपमा देश पांडे की आवाज में। और इस गीत को सुनना चाहे कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय ने। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय ने।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। दिन के 12 बजने वाले हैं और ये वक्त है बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का, जिसे लेकर आज आपके साथ हैं खुशबू और वंदना रॉय।

0: नमस्कार सखियों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी खुशबू और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और साथ में है आपकी
1: रेडियो सखी वंदना। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। और सखियों, देखो ना, मौसम ने करवट ली है और बारिश के मौसम की शुरुआत भी हो चुकी है। जहां ये मौसम काफ़ी सुकून भरा होता है, चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू, मन बिल्कुल खुश हो जाता है।
0: लेकिन वंदना, कहते हैं ना, मौसम काफ़ी खुशनुमा तो होता ही है, लेकिन ये अपने साथ साथ कई बीमारियों को भी लेकर आता है। तो ऐसे में हमें कई तरह की सावधानियाँ बरतनी होती हैं, तभी हम इस मौसम का ना अच्छे से आनंद उठा सकते हैं।
1: एकदम सही कहा खुशबू। इस बदलते मौसम के साथ अपने खान पान और जीवन शैली में हमें बदलाव करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मौसमी बीमारियों से बचना और स्वस्थ रहना ही हमारी सफलता या स्वस्थ रहने की कुंजी है। अपनी डाइट में मौसमी फल, सब्जियों, पर्याप्त पानी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले आहार को हमें जरूर शामिल करना चाहिए।
0: तो चलिए सखियों, आज इसी विषय पर हम लोग जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे भी कि बदलते मौसम में कैसे अपना खान पान और जीवन शैली को हमें बदलना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। सबसे पहले हम जानेंगे कि अपने खान पान में हमें क्या क्या बदलाव करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, हर मौसम जहाँ कुछ अच्छाई लेके आता है, वहीं वहीं कुछ कुछ है ना सावधानियाँ भी लेकर आती है, ताकि हम उस मौसम का आनंद अच्छे से उठा सकें।
1: एकदम सही कहा। हमें अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए मौसमी फलों और विटामिन सी से भरपूर जो चीज़ें होती है उन्हें जरूर खाना चाहिए। ठंडे या बासी खाना खाने से बचना चाहिए और पाचन को ठीक रखने के लिए हमेशा ताज़ा, हल्का और सुपाच्य भोजन हमें खाना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा वरना तुमने। साथ ही शरीर में नमी बनाए रखने के लिए और टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए, यानी जो शरीर में विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में हमें पानी भी पीना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है ना वंदना कि बारिश के मौसम में हम पानी कम पीते हैं या हमें प्यास कम लगती है, लेकिन फिर भी हमें निरंतर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। इसके अलावा नींबू पानी, नारियल पानी या मौसमी फलों का जूस भी हमें पीना चाहिए। और साथ ही वंदना, हम ये भी बता दें अपनी सखियों को कि सखियों, आप इधर उधर कहीं भी किसी भी जगह की पानी नहीं पिए, आप अपने घर का उबला हुआ साफ पानी ही पिए।
1: एकदम सही कहा खुशबू। और साथ ही हम अदरक, हल्दी, दालचीनी और लौंग का काढ़ा या चाय भी पी सकते हैं। इसमें

0: जो एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं वो बदलते हुए मौसम के कारण जो होने वाले संक्रमण है या हमारे गले में जो खराश होती है उससे हमें राहत दिलाते हैं। जीरा युक्त सादा दही या छाछ का सेवन भी हमारी
1: बिल्कुल।
0: आंतों को स्वस्थ रखता है और पाचन क्रिया को बहुत बेहतर बनाता है।
1: और वरना तुमने जैसे कहा कि इस मौसम में चाय का आनंद उठाना चाहिए, तो चाय और बारिश का तो पुराना रिश्ता होता
0: एकदम एकदम
1: है ना।
0: बहुत
1: और चाय और बारिश का साथ हो तो चाय पीने का मजा भी दुगना हो
0: कुछ और
1: जाता
0: हो
1: है।
0: जाता है।
1: लेकिन साथ ही साथ मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में सब्जियां भी बाजार में बदल रही हैं,
0: बदल
1: और
0: रही है।
1: इस हिसाब से हमें सब्जियों में भी बदलाव करना चाहिए। बदलते मौसम में ब्रोकली, पालक और मेथी जैसी हरी सब्जियां शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरी करती है, तो इसलिए इन्हें जरूर से हमें लेना चाहिए। साथ ही हमें बाहर के तले भुने मसालेदार और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, और बहुत ही ठंडे पेय पदार्थ या फ्रिज के सीधे पानी को पीने की जगह मटका या सामान्य तापमान का पानी पीना चाहिए, ताकि हमारे शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित रहे।
0: एकदम सही कहा खुशबू। देखो ना, इस बदलते मौसम में हमें अपने खान पान के साथ अपनी जो दिनचर्या है या हमारी जो जीवन शैली उसे भी बदलने की आवश्यकता है। ये जो शारीरिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें अगर हम उचित संतुलन बनाते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होता है।
1: बिल्कुल।
0: यह बदलाव हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे मजबूत बनाती है और हमें बीमारियों से वो बचाती है।
1: तो सखियों, मौसम बदल रहा है और ऐसे में हमें हमारे है ना बहुत नियमित व्यायाम भी करना होता है, ताकि हम स्वस्थ रहें, क्योंकि यह बदलते तापमान और नमी के कारण शरीर को होने वाले नुकसान से हमें बचाता है। और नियमित व्यायाम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जैसा कि वंदना ने भी बताया। और कई बार हम इस मौसम में सर्दी, खांसी या वायरल इन्फेक्शन या संक्रमण से पीड़ित हो जाते हैं, और फिर हमें आलस, थकान, मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें व्यायाम को अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में जरूर से शामिल करना चाहिए।
0: एकदम सही है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में जो एंडोर्फिन का स्तर है वो बढ़ता है, जिससे कि तनाव कम होता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह भी बढ़ जाता है। और देखो ना, इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों की को ज़्यादा सावधानी के साथ रखने की आवश्यकता है। उन्हें सीधे एसी या कूलर की ठंडी हवा में हमें नहीं सुलाना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: सही।
0: तापमान जब अचानक से बहुत कम हो जाता है तो उसमें तबीयत खराब होने की आशंका रहती है। बच्चों को हल्के सूती और ढीले कपड़े हमें पहनाने चाहिए ताकि उसमें हवा आसानी से पास हो सके। और सुबह शाम जो ठंड अगर लगती हो तो चादर या जैकेट का उपयोग हमें जरूर करना
1: बिल्कुल।
0: चाहिए।
1: और इस मौसम में बच्चे ज्यादातर बीमार पड़ते हैं, इसलिए उन्हें काफी सावधानी से रखनी चाहिए। और बच्चों को बाहर खेलने के बाद या खाना खाने से पहले उन्हें ये आदत डलवानी चाहिए कि वो साबुन से हाथ धोएं, क्योंकि साबुन से हाथ धोना एक अच्छी आदत है। और मौसम बदलने पर अक्सर डेंगू, मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ जाता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो ऐसे में हमें अपने घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करते रहना चाहिए।
0: और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें 7 से 8 घंटे की गहरी नींद होनी बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले हमें मोबाइल या टीवी को बंद कर देना चाहिए ताकि दिमाग हमारा शांत हो जाए और हमें अच्छी नींद भी आए। और रोज 10 से 15 मिनट अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन उससे शांत होता है और ध्यान केंद्रित करने में बहुत मदद भी मिलती है और हम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और कृतज्ञता के साथ करते
1: करते हैं।
0: हैं।
1: बिल्कुल, मौसम बदल चुका है सखियों, और ऐसे में बारिश का मौसम तो है, लेकिन एक प्यारा सा गीत हो जाए तो
0: जरूर
1: और

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ, तो खुशबू,
2: हाँ हाँ,
1: अभी हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना, तो चलो अब हम जानकारी करेंगे कि सामान्य बीमारियां और उनसे बचाव के बारे में, जिसके बारे में हमें बताएंगे सीबी सहाय, और उनसे बातचीत की है हमारी खुशबू बहन ने। तो चलिए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।

0: शरीर ही सुखी और सफल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली, असंतुलित खानपान, प्रदूषण और बदलते मौसम के कारण लोग अनेक सामान्य बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। इनमें से अधिकांश बीमारियों से थोड़ी सी सावधानी, स्वच्छता और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर बचा जा सकता है। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर हमें और अधिक जानकारी दे रहे हैं आज के हमारे खास मेहमान। आप हैं डॉक्टर सीबी सहाय जी, जो कि जाने माने चिकित्सक हैं। सर, आपका हमारे गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी।
0: सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सामान्य बीमारियां कौन कौन सी हैं और इसके होने के मुख्य कारण क्या है।
1: सामान्य बीमारियां जो होती हैं उसमें बुखार, सिर दर्द, पेट खराब होना, कमर का दर्द, कमजोरी, खून की कमी, ये जो है सामान्य बीमारियां हैं जो कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों में सामान्य रूप से हो सकता है। बच्चों में कुछ खास बीमारियां होती हैं जो कि आजकल के जो बरसात का मौसम है उसमें पाया जाता है, उसमें भी सामान्य ज्वर, पेट खराब होना, उल्टी, जिसमें प्रमुख सामान्य बीमारियां होती हैं। इसके मुख्य कारण जो सामान्य बीमारियां हैं, जैसे बरसात के समय में इन्फेक्शन का रेट, संक्रमण का रेट जो है काफी बढ़ जाता है। इसके कारण से जो है जैसे पेट खराब होना, उल्टी होना, म्यादी बुखार या टाइफाइड होना, यह जो है काफी कॉमन है। और इसके लिए जो है हमें कुछ निश्चित उपाय है जो करने चाहिए। तो ये सामान्य बीमारियां में यही सब बीमारियां कॉमन है
0: जी। आपने बहुत ही उपयोगी और सरल जानकारी दी सर हमें। अब हमारे सखियों को ये बताएं कि बरसात और बदलते मौसम में कौन सी बीमारियां सबसे अधिक फैलती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है।
1: श्रोताओं को जैसे कि अभी मैंने बताया कि बरसात में दूषित पानी, मच्छरों का प्रकोप और गंदगी फैलने के काफी चांसेस रहते हैं। उसमें जो ज्वर है, म्यादी बुखार है, जैसे कि मच्छरों से फैलने वाला मलेरिया है, डेंगू है, और प्रदूषित पानी पीने से उल्टी, पेट खराब होना, ये जो है बहुत ही सामान्य बीमारियां हैं। और इनसे बचने के लिए जो इसके कारण है उसे दूर करना, उससे बचना बहुत ही आवश्यक है। जैसे बरसात का मौसम अभी है तो कभी भी इधर उधर का पानी नहीं पिए, हमेशा स्वच्छ पानी पीने की कोशिश करें। अगर प्रदूषित पानी नल के द्वारा आ रहा है तो उसे उबाल करके, या फिर अगर चापाकल या कुएं से पानी लेकर के हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसे उबाल करके और तभी उसका सेवन करें। दूसरा जो है मच्छरों का प्रकोप बरसात के समय में काफी ज्यादा हो जाता है, तो इससे बचने के लिए बरसात के समय में मच्छरदानी लगाकर सोना बहुत ही आवश्यक है। तो इससे जो मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं जैसे मलेरिया है, फलेरिया है, डेंगू है, इन सबसे जो है बचा जा सकता है। और जो बरसात के समय में पानी में भीगने के कारण से तो खांसी, सर्दी, ये सब जो होता है उससे बचने के लिए हमें जो है छाते का प्रयोग करना चाहिए, पानी से भीगने से बचना चाहिए, और भीगे हुए कपड़े हों तो घर में आकर तुरंत उसे बदलकर सूखे हुए कपड़े को पहनना चाहिए। तो यह सामान्य बचाव के जो तरीके हैं, हमारे श्रोतागण को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो आम बीमारियां बरसात में होती हैं उससे आसानी से हम लोग बचाव कर सकते हैं
0: जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। सचमुच छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। बीमारियां जो है वो किसी बुलावे का इंतजार नहीं करती, तो ऐसे में हम रोजमर्रा की कौन सी अच्छी आदतें अपनाकर हम सामान्य बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: परिवार को सुरक्षित रखने के लिए बच्चों को जो है हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी है उसे देना जरूरी है।

0: अच्छी आदतों को उसे बताना जरूरी है कि जब भी तुम बाहर से आओ, स्कूल से आओ, या कोई बच्चा अगर खेत में काम करने जाता है चाहे घूमने जाता है, तो आने के बाद हाथ पांव को अच्छे ढंग से धोना है। खाना खाने से पहले जो है सो हाथ को अच्छे से धो करके तभी खाना है। खाना जो है गर्म अवस्था में जब हो तभी उसका सेवन करना चाहिए। जो काफी देर का बना हुआ खाना है उससे बचाव करना चाहिए। और अपने आप में खुद जो है आगे बढ़ के अच्छी आदतों को अपनाने से जो हमारे परिवार के अन्य सदस्य हैं, बच्चे हैं, वो भी अच्छी बातों को सीखेंगे। जैसे सोने से पहले मच्छरदानी लगाना एक आदत सी बना लेना चाहिए, तो उसके देखा देखी बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य भी मच्छरदानी का इस्तेमाल करेंगे हाथ पांव धो करके, और तभी जो है खाने बचेंगे। खाने का जो बर्तन है उसे भी अच्छे ढंग से धो करके और तभी उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और खाना खाने के बाद बर्तनों को इसी तरह खुले में नहीं डालना चाहिए, वो जो है मक्खियों को आमंत्रित करते हैं और मक्खियों के द्वारा भी जो है बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, पेट खराब होने की जो बातें होती हैं। तो अगर बर्तन ठीक से नहीं धोया हुआ है, खुले में रखा हुआ है, तो उस पर मक्खियां बैठती है और मक्खियों की आदत होती है जहां वो बैठती हैं तुरंत वो उल्टी करती, फिर वहां से जो है से दूसरे खाने के स्थान पर जाती हैं और वहां पर भी इस तरह से जो है मच्छरों द्वारा और मक्खियों द्वारा जो फैलाई हुई बीमारियां हैं उसे बचने के लिए जो है सफाई बहुत ही आवश्यक है। और परिवार को, लोगों को, बच्चों को भी यह बताना जरूरी है कि बरसात में अगर स्वस्थ रहना है तो सफाई बहुत ही जरूरी है।
1: जी, वास्तव में स्वस्थ आदतें ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। हमारी सखियों को ये भी बताएं सर कि किसी बीमारी के शुरुआती लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और किस परिस्थिति में हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
0: शुरुआती लक्षण जो रहते हैं कई बार अज्ञानता बस उसे लोग दबा करके रखे रहते हैं और सोचते हैं कि अच्छे अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जैसे ज्वर के बारे में, बुखार के बारे में मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि कभी भी जब बुखार हो तो 100 से ऊपर उसे नहीं जाने दे। 100 डिग्री फारेनहाइट से अगर ऊपर जाते हैं बुखार तो तुरंत उसमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। बुखार के साथ अगर उल्टी हो तब तो तुरंत ही मिलना चाहिए। बुखार के साथ अगर ठंड लगे तो मलेरिया का लक्षण हो सकता है, डेंगू का भी लक्षण हो सकता है, फलेरिया का भी लक्षण हो सकता है। तो यह शुरुआती लक्षण जो है जैसे ज्वर है, बुखार है, तो इसके साथ अगर ठंड लग के बुखार हो, उल्टी हो, सिर में दर्द हो, तो हमें तुरंत जो है डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। पेट खराब जो है बरसात में काफी ज्यादा होता है, डायरिया, डिसेंट्री, तो एक दो बार अगर पतला पैखाना होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ उल्टी होने लगे तो हमें तुरंत डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। पेट खराब के साथ अगर पेट में दर्द हो तो भी उसमें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। पेट खराब के साथ अगर कमजोरी महसूस होने लगे, जीभ सूखा हुआ लगे, शरीर जो है सो पस्त लगे, तो उसमें भी हमें जो है सो तुरंत डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए। तो ज्वर हो गए, पेट खराब हो गए, या दो जो कॉमन बीमारियां हैं जो कि बरसात में पाया जाता है उसके साथ अगर यह लक्षण हो तो उसमें हमें तुरंत डॉक्टर से जाकर के संपर्क करना चाहिए।
1: जी, कहने का अर्थ ये है सखियों कि सही समय पर सही इलाज से कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। सर, क्या संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं, और यदि करते हैं तो कैसे, ये हमारी सखियों को बताएं।
0: संतुलित आहार जो है बहुत ही आवश्यक है। भोजन में जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि भात में पाया जाता है, प्रोटीन होता है जो कि मीट में, अंडा में, मुर्गा में और दाल में पाया जाता है, वसा, फैट,

0: वह जो है सो हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं चाहे घी इस्तेमाल करते हैं उसमें होता है। यह तीन प्रमुख चीज जो है भोजन में एक निश्चित अनुपात में होना जरूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। इसके अलावा संतुलित आहार में विटामिन की भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है हमें ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए जिसमें कि विटामिन प्रचुर मात्रा में हो। हमारे जो श्रोता महिलाएं हैं, महिलाओं को आयरन की कमी होती है, तो इसमें जो है आयरन युक्त भोजन जो है जरूरी रहता है। तो संतुलित आहार में इस सारे जो आवश्यक अंग होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और आयरन, यह जो है सो बहुत ही आवश्यक है हमें स्वस्थ रहने के लिए। दूसरा कि जैसा कि खुशबू जी आपने पूछा कि नियमित व्यायाम, तो नियमित व्यायाम तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे सारे ज्वाइंट्स, शरीर के जितने भी जोड़ होते हैं वो जो है सो एक्टिव रहते हैं, फ्री रहते हैं, जाम नहीं होते हैं और जोर संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो कम से कम होती है। अत्यधिक मोटापा उसे भी कम करने के लिए नियमित व्यायाम जरूरी है। नियमित व्यायाम से हमारे हृदय की जो धड़कन होती है और हृदय जो है स्वस्थ रहता है वो भी आवश्यक है। श्वास की क्रियाएं जो प्राणायाम होते हैं जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, वो भी एक नियमित व्यायाम के अंदर ही आता है। तीसरा जो आपने पूछा कि पर्याप्त नींद, पर्याप्त नींद बहुत सारे मानसिक बीमारियों को जो है ठीक करता है। अगर हम अच्छे ढंग से सोते हैं, अच्छी अवस्था में सोते हैं, तो उसमें जो है बहुत सारे मानसिक तनाव, चिंता, फिकर, अवसाद माने डिप्रेशन, इन चीजों को कम करता है। तो पर्याप्त नींद भी बहुत ही आवश्यक है मानसिक रोगों से स्पेशली बचने के लिए। नींद में एक चीज मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि सही पोस्चर में, सही जो शारीरिक अवस्था है उसमें सोना आवश्यक है। जैसे कि खाना खाने के बाद हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले से बता चुके हैं कि बाएं करवट लेटना चाहिए। तो खाना खाकर कभी भी जो है सो दाहिने करवट नहीं लेटना चाहिए, बाएं करवट लेटना चाहिए, क्योंकि अमाशय जो हमारे पेट के अंदर रहता है, भोजन जो जाता है, तो अमाशय का कर्वेचर जो रहता है बाएं साइड की तरफ रहता है। तो खाना खा करके बाएं करवट ही सोना चाहिए। नींद में बहुत ऊंचा तकिया नहीं लगाना चाहिए, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में जो दर्द हो जाता है, तो ऊंचा तकिया नहीं लगाना चाहिए। दूसरा जो है सोने के स्थिति में बच्चे कई बार होते हैं कि जैसे पट होकर के सो जाते हैं, तो बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए कि बच्चे जो है चित या बाएं करवट सोया करो, पट होकर नहीं। उससे क्या होता है कि भोजन के पचने में जो है बाधा पहुंचती है और पेट में गैस की, कब्जियत की, ये सब की शिकायत होती है। तो पर्याप्त नींद भी आवश्यक है और सही अवस्था में, सही पोस्चर जिसे बोलते हैं, उस अवस्था में सोना जरूरी है, तभी हमें पर्याप्त नींद आएगी। और पर्याप्त नींद से बहुत सारे मानसिक बीमारी हैं जो कि हमारा कंट्रोल हो जाता है। तो यह बहुत ही आवश्यक है। और जब यह संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अगर हम लेते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से जो सामान्य संक्रमण होता है या सामान्य बीमारियां जो होने का चांसेस रहता है वो बहुत ही कम हो जाता है और हमारे शरीर जो है रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होता है। ये हमारे श्रोताओं को ध्यान देना है।
1: जी, बहुत ही अच्छी और उपयोगी जानकारी दी आपने। स्वस्थ जीवन शैली ही अच्छे स्वास्थ्य का सबसे मजबूत आधार है और उम्मीद करती हूँ कि सखियाँ इससे लाभ जरूर उठाएंगी। चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज में बीमारियों को लेकर कौन सी आम भ्रांतियाँ हैं या मिथक जिसे कहते हैं, वो कौन कौन सी हैं और उसके बारे में सही जानकारी क्या है।
0: समाज में जो भी मिथक या भ्रांति

0: यह है वो जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहने के कारण से है। तो खुशबू जी, आपने यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है कि इसके बहाने जो है हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उन भ्रांतियों और मिथक से दूर रहेंगे और सही समय पर बीमारियों का डायग्नोसिस पता लग जाए कि कौन सी बीमारी है और उसका सही समय पर इलाज भी बहुत ही आवश्यक है। भ्रांतियां तो इससे बहुत सारी है, जैसे पेट खराब है तो लोग सोचते हैं कि पेट खराब है तो चलो पेट का इतना गर्मी है बाहर निकल जाएगा तो अच्छा है, और 5-6 बार से ऊपर भी अगर पतला पैखाना हो गया तो लोग उसके लिए दवा नहीं खाते हैं, औषधि नहीं लेते। ये एक जो है सो सामान्य भ्रांति है। बुखार है, अब बुखार में लोग सोचते हैं कि अरे इसी तरह से हो गया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अपने वार्ता के दौरान मैंने शुरू में ही बताया है कि बुखार के साथ और क्या क्या चीज हो तो तुरंत चिकित्सक से मिलना चाहिए। उन बातों को ध्यान में रखना है और उन भ्रांतियों से दूर रहना है। तो ये सब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें भ्रांतियां तो हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग जो है श्रोताओं को शिक्षित कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, तो यह एक बहुत ही सार्थक पहल है और इसके द्वारा अपने आप जो भ्रांतियां हैं, मिथक है, वो दूर होंगे और जो है सही समय पर सही इलाज हमारे श्रोताओं को मिलेगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरा संदेश यही है।
1: जी, आपने बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की है।
2: तो अब बहनों, हमारे जाने का समय हो गया है, तो फिर आपसे मुलाकात होगी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक खातिर दे हमें विदा। नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: गृह लक्ष्मी।
3: अभी आप सुन रहे थे बहनों का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।
5: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा।

0: ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम. तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं जीनियस फिल्म का गीत आतिफ असलम की आवाज में. संगीत हिमेश रेशमिया का है और इस गीत को लिखा है मनोज मंतसर ने.

और आइए अब सुनते हैं बदलापुर फिल्म का गीत। आतिफ असलम की आवाज में, संगीत सचिन जिगर का है और इस गीत को लिखा है प्रिया सरैया ने।

सूर्यवंशी, आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में। इस गीत को लिखा है रश्मि विराग ने और संगीत अजीम दयानी का है।

और आइए आप सुनते हैं समीर का लिखा गीत राजा हिंदुस्तानी फिल्म से, संगीत नदीम श्रवण का है। अलका याग्निक की आवाज में

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। एक बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचार आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोहराया है कि बदलते जटिल रणनीतिक माहौल में रक्षा और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख आधार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। घोषणा पत्र में दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के माध्यम से समुद्री सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। मेलबर्न में संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा दृष्टिकोण में समुद्री सहयोग को रेखांकित किया।
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया दो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो मल्टी कल्चरल सोसाइटीज हैं और दो महत्वपूर्ण ओशन पावर्स हैं। हमारी ये समानताएं और हमारा कॉमन वर्ल्ड व्यू हमें गहरे आपसी विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज तीसरी एनुअल समिट से हमारे सहयोग में कई नए आयाम जुड़े हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने रक्षा, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में हुए समझौते का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि भारत के लिए यूरेनियम आपूर्ति सुनिश्चित करने पर और सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी एक परिवर्तनकारी उच्च तकनीकी युग में पहुंच गई है। उन्होंने वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति देने के लिए एक दूरदर्शी कार्य योजना प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आज महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होगी। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसमें परिवहन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के तहत आयोजित की जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना परिवारों से आने वाले कक्षा तक के है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने और पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण करते हुए ये संगठन विद्यार्थियों को संगठित कर

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में झारखंड विजन 2050 परामर्श का आज आखिरी दिन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समिट का किया स्वागत, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनेगी रक्तदान निगरानी समिति। धनबाद में खनन ब्लास्टिंग का असर। 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क कई जगह धसी। उपायुक्त ने BCCL से मांगी मरम्मत राशि। गिरडी समेत राज्य के कई जिलों में अल नीनो के प्रभाव से सूखे जैसे हालात। कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी वाले मोटे अनाज और दलहन की खेती करने का दिया सुझाव। और साहिबगंज में खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग का सफल आयोजन। 3 आयु वर्गों की 203 बालिकाओं ने दिखाया दम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आज दूसरा और आखिरी दिन है। विजन 2050 के तहत आयोजित इस परामर्श में झारखंड को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के लिए वैश्विक उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार के 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट का स्वागत करते हुए कहा कि निवेश से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने पर जोर देने की अपील की। संजय सेठ ने कहा कि अपराध नियंत्रण और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए झारखंड के बड़े शहरों में लंबे समय से लंबित पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
1: माननीय मुख्यमंत्री, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अपने मिशन में सफल हो, पूंजी निवेश हो, किंतु उसके पहले बिजली की आपूर्ति 24 घंटे हो, लॉन्डर दुरुस्त हो, हालात माना बियॉन्ड कंट्रोल है। और इसीलिए कई सालों से हम यहाँ आवाज उठाते हैं कि पुलिस कमिश्नर बनना चाहिए, और पुलिस कमिश्नर आज तक बना नहीं।
0: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हर चीज की एक हद होती है।
2: मंत्री प्रिविलेज क्लास होता है, उनको बोलने दे, सबका लिमिट है ना, सब चीज का एक स्काई इज द लिमिट हम लोग कहते हैं। तो यदि स्काई ही लिमिट है तो बाकी का तो लिमिट है ही।
0: इस पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने मंत्री के रुख का बचाव करते हुए कहा है, किसी भी DGP की यह प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है कि वे मंत्री द्वारा लिखे गए पत्र का संज्ञान ले और उचित जवाब दे, ताकि शासन में पारदर्शिता बनी रहे।
3: बार बार पत्र लिखने पर अगर वो संज्ञान न ले तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्न खड़ा होता है, और यही प्रश्न माननीय मंत्री ने खड़ा किया है। और हमें यह लगता है कि ऐसे प्रश्नों का जवाब पुलिस महानिदेशक को देना चाहिए।
0: राज्य सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में रक्तदान जागरूकता एवं निगरानी समिति के गठन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार द्वारा जारी ये निर्देश झारखंड हाईकोर्ट और WHO के मानकों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य थैलीसीमिया और सिकल सेल के मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। धनबाद में 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क निर्माण एक साल के भीतर ही BCCL की हैवी ब्लास्टिंग के कारण कई जगह धस गई है। स्थानीय विधायक रागिनी सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है।

0: वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि पथ निर्माण विभाग ने मरम्मत का प्राक्कलन तैयार कर BCCL को भेज दिया है। राशि मिलते ही काम शुरू होगा।
1: तो रोड का जो डिपॉजिट पैसा है वो BCCL को देना है। हम लोगों ने BCCL को 3 महीने पहले ही पत्र लिखा, जैसे ही पैसा BCCL डिपॉजिट स्लिप्स में देगा हम लोग उसमें काम लगाएंगे। मुद्दा झरिया CEO के द्वारा उठाया गया, थाना प्रभारी द्वारा उठाया गया, हम लोग उसको संज्ञान में लिए हैं और आज निर्देश दिए हैं कि तत्काल जितनी जल्द से जल्द हो सके BCCL हम लोगों को उसमें फंड दे ताकि RCD उसका काम कर सके।
0: पूर्वी सिंहभूम जिले में ब्रेन मलेरिया से 2 और मरीजों की मौत के साथ इस वर्ष मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई 12,518 लोगों की जांच में 128 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 98 ब्रेन मलेरिया से पीड़ित हैं। संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित गांवों में सघन जांच, दवा वितरण, फॉगिंग और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर संगठन के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर दोनों नेताओं ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ यह संगठन दशकों से छात्रों को राष्ट्र सेवा, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रेरित कर रहा है। पलामू के चियांकी में नेशनल हाईवे 39 निर्माण के दौरान बिना मुआवजा मकान तोड़े जाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस में आज सुबह झड़प हो गई। ग्रामीणों की पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई ग्रामीणों और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सदर SDM संजय पांडे ने क्षेत्र में 2 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। भाजपा ने राज्य में मॉनसून के आगमन के बाद किसानों को खाद और बीज न मिलने का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य का अन्नदाता आज संकट में है।
2: किसानों को समुचित खाद बीज नहीं मुहैया करा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार किसानों के प्रति अपनी असंवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। किसानों के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है।
0: राज्य के कई हिस्सों में इस वर्ष कम बारिश के कारण खरीफ फसलों पर अल नीनो का प्रभाव दिख रहा है, जिससे धान की रोपणी प्रभावित हुई है। कृषि विभाग के अनुसार गिरिडीह में मात्र 38% वर्षा होने से धान के बिचड़े तैयार करने में रुकावट आ रही है। जिला कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किसानों को कम पानी वाली फसलों की वैकल्पिक खेती अपनाने का सुझाव दिया है।
3: गिरिडीह जिले में इस वर्ष 62% बारिश कम हुई है। वर्षापात के अभाव में धान के बिचड़े 5,000 हेक्टेयर में ही हुआ है, जबकि 8,000 हेक्टेयर में लग जाना चाहिए था। जिले में 88,000 हेक्टेयर में धान रोपनी का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाइयों से आग्रह होगा कि आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं होगी तो वैसी स्थिति में दलहन, तिलहन, मड़ुआ और दूसरे अनाज की खेती की जा सकती है।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू इक्विटी इंडेक्स लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक चढ़कर 77,065 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 179 अंक बढ़कर 24,061 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। साहिबगंज में आज केंद्र सरकार के निर्देश पर आयोजित खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग में 203 बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सिदो कान्हू स्टेडियम से समाहरणालय परिसर रोड तक हुई इस रेस का आयोजन 3 आयु वर्गों अंडर 14, अंडर 18 और सीनियर महिला ओपन वर्ग में किया गया। सभी

जेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में झारखंड विजन 2050 परामर्श का आज आखिरी दिन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समिट का किया स्वागत, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनेगी रक्तदान निगरानी समिति। धनबाद में खनन ब्लास्टिंग का असर। 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क कई जगह धसी। उपायुक्त ने BCCL से मांगी मरम्मत राशि। गिरिडीह समेत राज्य के कई जिलों में अलनीनो के प्रभाव से सूखे जैसे हालात। कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी वाले मोटे अनाज और दलहन की खेती करने का दिया सुझाव। और साहिबगंज में खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग का सफल आयोजन। 3 आयु वर्गों की 203 बालिकाओं ने दिखाया दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: Ben de şimdi.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। श्रोताओं, ये वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। इसमें आज आप सुनेंगे ठुमरी, कलाकार हैं सिद्धेश्वरी देवी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी, जिसमें आज आपने सुना मिस्र खमाज में ठुमरी, कलाकार थी सिद्धेश्वरी देवी। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे कुछ पॉप सॉन्ग्स फाल्गुनी पाठक से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुन रहे हैं पॉप सॉन्ग्स फाल्गुनी पाठक से।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, जिसमें आज आपने सुना कुछ पॉप सॉन्ग्स फाल्गुनी पाठक से। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार के लिए। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Vice President C.P. Radhakrishnan unveils National Mission for Sustainable Use of High Seas Fishery Resources in Bhubaneswar. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनेज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना। और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनेज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनेज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
2: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
3: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
2: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
3: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
3: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और

0: इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
1: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
0: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
2: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
3: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहें। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार कर रहे हैं।
2: एंड क्रिटिकल मिनरल्स।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच और आर्थिक कार्य योजना कार्यक्रम को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया सुपर के 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश का भारत ने स्वागत किया है। मेलबर्न में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पॉल श्रोडर ने इसकी घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया भारत बिजनेस काउंसिल के प्रमुख सदस्य विश्व विश्वनाथन ने मेक विद इंडिया पहल के बढ़ते असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIRF और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया, जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
5: आई अर्ज आवर इंस्टीट्यूशंस टू कंटिन्यू सपोर्टिंग आवर फिशिंग कम्युनिटी विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
4: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि यह सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में

0: किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले कुछ दिनों की बात करें, सबसे पहले NCR दिल्ली की बात करें, तो NCR दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहां हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे जय भारती कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय भारती आकाशवाणी के रांची केंद्र से। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कर्मा फिल्म के गीत के साथ।

फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं, उदित नारायण की आवाज़ में। संगीत जतिन ललित का है और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी।

0: राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा नागरिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही पारदर्शी, त्वरित जवाबदेह तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करना है, ताकि आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी और सुलभ सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज RIMS-2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगड़ी में RIMS-2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हर धर्मता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर RIMS-2 का निर्माण होना चाहिए।
1: युद्ध पर सरकार अड़ी हुई है, जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है वही लोग आने वाला सरकार को लोग उजाड़ देगी। भाई हम खेती की जमीन आदिवासियों की है और आप हॉस्पिटल के नाम से जबरदस्ती आप उसको छीन रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ दीजिए।
0: राज्य में वर्ष 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को शून्य पर लाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापक कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बनी। इस दौरान सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विश्व रेबीज दिवस पर 28 सितंबर को राज्य कार्य योजना लॉन्च करने की जानकारी दी गई। इसके अलावा रेबीज नियंत्रण अभियान को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। रांची नगर निगम में डेली मार्केट, न्यू मार्केट और खादगढ़ा के प्रमुख बाजारों के पुनर्विकास के लिए आधुनिक व्यवसायिक परिसरों, मल्टी लेवल पार्किंग और बेहतर नागरिक सुविधाओं से जुड़ी विस्तृत योजना प्रस्तुत की है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुराने बाजारों को आधुनिक स्वरूप देने, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रस्ताव के अनुसार खादगढ़ा बस टर्मिनल परिसर और डेली मार्केट क्षेत्र का चरणबद्ध विकास कर व्यापारियों तथा आम नागरिकों के लिए बेहतर और सुव्यवस्थित बाजार व्यवस्था विकसित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की अनुकंपा समिति ने लंबित 160 मामलों पर विचार करते हुए 153 आश्रितों को नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। इनमें 62 बाल आरक्षी, 24 महिला आरक्षी, 66 आरक्षी तथा एक अग्निशमन चालक के पद पर नियुक्ति शामिल है। पुलिस मुख्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि दिव्यांगत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराने और अनुकंपा नियुक्ति प्रक्रिया का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राजधानी रांची के अशोक नगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक व्यवसायी के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जबकि एक अन्य आवास में चोरी करने में असफल रहे। हटिया पुलिस उपाधीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के साथ मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
2: एक घर में चोरी हुई है और एक घर में जो है वो चोरी करने का प्रयास किया गया था। उस दौरान जो है वो जैसा लोग CCTV में देखे हैं किसी और के द्वारा फायरिंग करने का अभी तक नहीं मिला है। बॉडीगार्ड जो है तो हाथ से गोली चलने की संभावना ऐसा लग रहा है कि उसके पैर में अपने ही से गोली चली है। गोली का भी हम लोग के पास कहीं बाहर से और बिलेट एक मिला है।
0: दुमका जिले के सरैयाहाट प्रखंड सह अंचल कार्यालय के प्रधान लिपिक आनंद भारद्वाज को ACB ने 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लिपिक जमीन से संबंधित कार्यों के लिए एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की थी, जिस पर यह कार्रवाई ACB ने की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, गढ़वा, पलामू, रांची, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस

वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में
3: और अजीत का भी जोहार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभयारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओ, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
2: जी जी जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है।

0: जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
1: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
0: जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
1: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
0: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
1: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
0: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
1: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
1: आज का प्रश्न है क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
0: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते थे।

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा

से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है, इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी है। हाँ
1: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
1: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है, जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
2: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
1: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
3: अरे, अरे भाई ये क्या हो रहा है आज, अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
1: जी,
3: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
1: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है, वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियाँ टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ाइयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
3: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
1: जी पिताजी।
3: उसमें रख कर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
1: ठीक है।
3: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
1: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
3: अरे प्रवाहन।
4: जी पिताजी।
3: तुम तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
4: वो पिताजी,
3: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
4: जी वो
3: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
4: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
1: हाँ हाँ पिताजी।
4: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रुमर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
4: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
3: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रुमर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
4: जी
3: ने कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
3: वहाँ महाराजाधिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
1: जी पिताजी,
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
3: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
4: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ, पिताजी, पिताजी, हम ही जीतेंगे।
3: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
3: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
3: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
4: अच्छा पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
2: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
3: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
2: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
4: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने,
1: और क्या
4: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
2: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
4: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे।
1: हाँ।
4: अब तो खुश।
3: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
0: जी पिताजी।
3: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है।
0: जी।
3: अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
4: जी पिताजी।

0: हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पहने तीर भी रख लिए हैं, भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
1: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
0: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
1: हाँ,
0: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
2: हाँ, ये तो है।
3: हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
4: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र, क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो
0: क्या
3: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो रेश शुरू हो गई।
0: अरे क्या बाकी और सजीले सवार है।
3: वाह वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
0: चक्का नहीं जीते।
2: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद।

0: कुलपति का आदेश सुना तुमने?
1: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
0: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
1: अच्छा,
0: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
2: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
3: अरे हाँ, चलो पास से देखते
2: हैं। हाँ
3: हैं।
2: चलो चलो।
3: अरे ये देखो कितना अच्छा
1: अरे
3: घोड़ा है। अरे
1: वाह,
3: हाँ,
1: इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
3: इसे पकड़
1: पकड़ी
3: लेते
1: पकड़ी
3: हैं।
1: कहाँ
3: हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
2: चलो चलो।
3: अरे वाह, अरे अरे चलो इसे पकड़ लेते हैं।
2: ये पकड़ा।
1: ये कोलाहल कैसा है?
4: छोड़ दो, छोड़ दो।
2: ये
4: महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो, छोड़ दो,
2: नहीं नहीं हमने
4: शीघ्र छोड़ दो,
2: अरे हमने
4: नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
3: हम नहीं छोड़ेंगे,
2: हम तो नहीं छोड़ेंगे,
3: हमने पकड़ा है ये।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दे, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो
2: क्या
1: आचार्य तो वहीं पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
2: हाँ, अच्छा हुआ, संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ।
2: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ।
2: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
5: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम रांची मेलोडीज़।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रांची केंद्र और वक्त है प्रोग्राम रांची मेलोडीज का, जिसे लेकर विनीता है आपके साथ। दोस्तों, लाइफ में सब कुछ अपने हिसाब से हो जाए तो फिर क्या ही बात है। कुछ भी लाइफ में खुद के हिसाब से या जो चाहे हम वो नहीं हो सकता। इसलिए ना, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसी में खुश रहना होगा, उसी में खुशियाँ तलाशनी होगी। तो बस खुश रहिए, और भी बातें होंगी, पर उससे पहले एक बेहतरीन सा गाना आपके लिए।

इस खूबसूरत सफर में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार तो वो है जो सिर्फ दिल से निभाया जाए।

किशोर कुमार के गाए इस गीत के बाद आइए एक और बेहतरीन सा गाना किशोर कुमार की ही आवाज में। लिखू तो लफ्ज हो तुम, सोचू तो ख्याल हो तुम, मांगू तो दुआ हो तुम, सच कहूं तो मोहब्बत हो तुम।

दिल में छुपा कर रखा है मैंने उन लम्हों को जो अक्सर तेरे ख्यालों में तेरे साथ जिए हैं मैंने। तुम इतने नादान भी तो नहीं हो कि समझ ही ना सको। मेरी हर बात में सिर्फ तुम्हारा ही तो जिक्र होता है ना।

और आइए अब सुनते हैं आंधी फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। उनकी मोहब्बत को कुछ इस तरह से निभाते हैं हम, वो नहीं तकदीर में, वो नहीं जिंदगी में, फिर भी बेपनाह चाहते हैं हम।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग तथा नागरिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभावी उपयोग, पारदर्शी, त्वरित जवाबदेह तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली विकसित करना है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने

मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हठ धर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए। जामताड़ा जिले के सभी प्रखंडों में निर्धारित तिथियों को चरणबद्ध प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नारायणपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में ड्राइविंग लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवश्यक प्रक्रिया के बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में कथित करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता के आरोपों की न्यायिक जांच की मांग को लेकर आज जमशेदपुर में झामुमो ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने साक्षी से उपायुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, गढ़वा, पलामू, रांची, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे अब तक के प्रादेशिक मुख्य समाचार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। प्रस्तुति प्रभु शरण की है, वाचन स्वर वसंत कुमार का।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे लिफ्ट एलिवेटर के उपयोग में हमें क्यों सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, बात करने वाले हैं AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और इसका क्या प्रभाव है इसके बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राइट ब्रदर्स के बारे में। इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं माचिस के आविष्कार के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करेंगे और क्या जानकारी देंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं लिफ्ट एलिवेटर के उपयोग में हमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए इसके बारे में। आज बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और आवासीय परिसरों में लिफ्ट का उपयोग बहुत आम बात हो चुकी है। ये समय और श्रम दोनों को बचाने का काम करता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए लिफ्ट का उपयोग करते समय हमें कुछ शर्तों का, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि लिफ्ट पूरी तरह हमारे सामने आकर रुकी है या नहीं। लिफ्ट में कभी भी इसकी निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रत्येक लिफ्ट पर इसकी अधिकतम भार क्षमता और यात्रियों की संख्या भी लिखी होती है। यदि क्षमता से अधिक भार डाल दिया जाए तो

0: के संचालन में समस्या आ सकती है और ये दुर्घटना की शिकार हो सकती है। लिफ्ट के दरवाजे बंद होते समय इन्हें हाथ, पैर या किसी वस्तु से रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि लोग लिफ्ट में जल्दीबाजी में घुसने के चक्कर में हाथ या पैर से बंद होते समय रोकने की कोशिश करते हैं। ये काफी घातक सिद्ध हो सकता है। अधिकांश आधुनिक लिफ्टों में सेंसर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी जोखिम नहीं लेना चाहिए और खास करके बच्चों को कभी भी लिफ्ट में अकेले इसका इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। यदि बच्चे लिफ्ट का उपयोग करें तो इनके साथ किसी वयस्क का होना बहुत आवश्यक है। बच्चों को लिफ्ट में कूदने, शरारत करने या सभी बटन दबाने जैसी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल नहीं करने देनी चाहिए। और यदि लिफ्ट अचानक बीच में रुक जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए और वहाँ पे दिए गए अलार्म बटन या इंटरकॉम या मोबाइल फोन से सहायता लेने की कोशिश करनी चाहिए। आग लगने या भूकंप जैसी आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सीढ़ियों के माध्यम से ही नीचे या ऊपर जाने की कोशिश करें, क्योंकि बिजली कभी भी बाधित हो सकती है और लिफ्ट बीच में फंस सकती है या फिर नीचे गिर सकती है। यदि किसी लिफ्ट पर मरम्मत कार्य चल रहा हो या आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा हो तो उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। केवल सुरक्षित और कार्यशील लिफ्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके हाथ गीले हैं या आप भारी सामान लेकर जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक लिफ्ट में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास जो सामान है उसका वजन अगर क्षमता से ज्यादा है तो बिल्कुल भी उस लिफ्ट में उसे लेकर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर लिफ्ट का अगर सही उपयोग करें और नियमों को मानते हुए उपयोग करें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं, नियमों की अनदेखी करके हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है और इसमें में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो लिफ्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन सावधानी के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ।
1: विज्ञान जगत।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज भी हम ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे लिफ्ट एलिवेटर के उपयोग में हमें क्यों सावधानी बरतनी चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं, बात करने वाले हैं एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और इसका क्या प्रभाव है इसके बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राइट ब्रदर्स के बारे में। इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं माचिस के आविष्कार के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करेंगे और क्या जानकारी देंगे इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं लिफ्ट एलिवेटर के उपयोग में हमें सावधानी क्यों बरतनी चाहिए इसके बारे में। आज बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों, कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और आवासीय परिसरों में लिफ्ट का उपयोग बहुत आम बात हो चुकी है। ये समय और श्रम दोनों को बचाने का काम करता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए लिफ्ट का उपयोग करते समय हमें कुछ शर्तों का, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहली बात कि लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि लिफ्ट पूरी तरह हमारे सामने आकर रुकी है या नहीं। लिफ्ट में कभी भी इसकी निर्धारित क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। प्रत्येक लिफ्ट पर इसकी अधिकतम भार क्षमता और यात्रियों की संख्या भी लिखी होती है। यदि क्षमता से अधिक भार डाल दिया जाए तो लिफ्ट के संचालन में समस्या आ सकती है और ये दुर्घटना की शिकार हो सकती है।

0: लिफ्ट के दरवाजे बंद होते समय इन्हें हाथ, पैर या किसी वस्तु से रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि लोग लिफ्ट में जल्दीबाजी में घुसने के चक्कर में हाथ या पैर से बंद होते समय रोकने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। अधिकांश आधुनिक लिफ्टों में सेंसर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी जोखिम नहीं लेना चाहिए और ख़ास करके बच्चों को कभी भी लिफ्ट में अकेले इसका इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। यदि बच्चे लिफ्ट का उपयोग करें तो इनके साथ किसी वयस्क का होना बहुत आवश्यक है। बच्चों को लिफ्ट में कूदने, शरारत करने या सभी बटन दबाने जैसी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल नहीं करने देनी चाहिए। और यदि लिफ्ट अचानक बीच में रुक जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, शांत रहना चाहिए और वहाँ पे दिए गए अलार्म बटन या इंटरकॉम या मोबाइल फोन से सहायता लेने की कोशिश करनी चाहिए। आग लगने या भूकंप जैसी आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सीढ़ियों के माध्यम से ही नीचे या ऊपर जाने की कोशिश करें, क्योंकि बिजली कभी भी बाधित हो सकती है और लिफ्ट बीच में फंस सकती है या फिर नीचे गिर सकती है। यदि किसी लिफ्ट पर मरम्मत कार्य चल रहा हो या आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा हो तो उसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। केवल सुरक्षित और कार्यशील लिफ्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके हाथ गीले हैं या आप भारी सामान लेकर जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक लिफ्ट में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास जो सामान है उसका वजन अगर क्षमता से ज्यादा है तो बिल्कुल भी उस लिफ्ट में उसे लेकर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर लिफ्ट का अगर सही उपयोग करें और नियमों को मानते हुए उपयोग करें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं, नियमों की अनदेखी करके हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है और इसमें में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो लिफ्ट का इस्तेमाल करें, लेकिन सावधानी के साथ और पूरी सुरक्षा के साथ। अब बारी है भेंटवार्ता की, और भेंटवार्ता में आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और प्रभाव। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर अभिजीत मुस्तफी, जो कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PIT मिश्रा में कार्यरत हैं और आज हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर हमारे स्टूडियो।
1: धन्यवाद बसंत जी मुझे यहाँ पे आने के लिए, निमंत्रण देने के लिए।
0: सर आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो कंप्यूटर का युग है और हमारा जो भी काम आज कर रहे हैं वो आधे से ज्यादा काम जो है वो कंप्यूटर पे बेस्ड है, और अभी का जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो चुका है और इस विषय पर बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, रिसर्च भी हो रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा आपसे कि AI और मशीन लर्निंग में क्या अंतर है और क्या AI केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित है या आम लोगों के जीवन में भी इसका उपयोग हो रहा है या इससे फायदा हो सकता है?
1: देखिए, जो आपका सवाल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आज के डेट में, क्योंकि कई लोग, हम भारतवर्ष की अगर बात करेगा, अगर ग्रामीण भारत की बात करें तो कई लोगों के पास अब भी ये सवाल का जवाब नहीं है कि ये AI क्या है और AI क्या कर रहा है। जो AI को थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए AI का एक अलग इमेज होता है। हमारे लिए जो समझने की बात है कि एक जमाना हुआ करता था जब कंप्यूटर को हम कहते थे कि एक प्रॉब्लम को इस तरह से आप सॉल्व कीजिए, जिसे हम कहते थे उस जमाने में एल्गोरिदम देने, एल्गोरिदम यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया, AI का जो जागरूकता था वो साइंटिस्ट में बढ़ा और एक नया तरीका निकल के आया जिससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। और इस तरीके में सबसे खास बात यह निकली कि इसको सॉल्व करने के लिए कोई एल्गोरिदम या प्लान का जरूरत नहीं होता था। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो कंप्यूटर को खुद सिखाया जा सकता था कि इस डेटा को इस्तेमाल करके किस तरह से एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ये एक कोइंसिडेंस की बात मान लीजिए या एक किसी तरह से लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि ह्यूमन ब्रेन भी इसी तरह से काम करता है। जब आप एक बच्चे को बार बार लाल रंग दिखाते हैं और कहते हैं ये लाल रंग है, तो कहीं ना कहीं उसके जहन में, कहीं उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि जब हम लाल रंग देखते हैं तो इसे लाल कहना है। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी का एसोसिएशन है, इस तरह से एक ह्यूमन बेबी भी सीखता है, ह्यूमन ब्रेन को भी हम ट्यून करते हैं। और ये कंप्यूटर साइंस में जो आज AI का दौर है इसमें भी इसी पद्धति का यूज कर रहे हैं। फायदा इससे कई सारे हैं कि लोगों को काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका लग रहा है, जो पहले, आज से हम 20 साल पहले की बात करें तो हम कहते थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती, लेकिन आज के दिन में ये सॉल्व हो रही है AI की वजह से, ये सॉल्व हो रही है।
0: और अगर आज के समय में अगर हम बात करें तो किन किन क्षेत्रों में इसका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और क्या उनसे फायदा हो रहा है?
1: आज के दिन अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सोशल लाइफ में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में कोई ऐसा डोमेन बचा ही नहीं है जो AI से अनछुआ है। हर दिशा में आप देखें तो कहीं ना कहीं AI अपना रोल प्ले कर रहा है। हम एक एग्जाम्पल ही ले लें कि आज दुनिया के कई जगहों पर

0: फार्मिंग होती है, कई जगह में ऐसे ऐसे जगह में फार्मिंग किया जा रहा है कि जहां पहले आदमी सोच नहीं सकता था कि फार्मिंग पॉसिबल है, लेकिन आज हमारे पास प्रिसिशन फार्मिंग के नाम से एआई का एक ऐसा उपयोग है जो तुरंत मुझे बता देता है कि इस जगह के लिए कौन सा सही क्रॉप उपयोगी होगा। तो इस तरह से आप अगर देखें, अगर वारफेयर की बात करें, अगर डिफेंस की बात करें, तो जहां पहले हमें सोल्जर भेजने पड़ते थे, आज हमें सोल्जर भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज कई देश हैं जो अपने बॉर्डर्स की रक्षा रोबोट्स के थ्रू कर रहे हैं। आश्चर्यचकित हो गया, कुछ दिन पहले मैंने पेपर में पढ़ा, चाइना में बैठे एक साइंटिस्ट ने अपने टेक्स्ट के द्वारा, खाली मुंह से जबानी बोल के, एक विजुअल डायग्राम बना दिया जिसे देख के जर्मनी में एक डॉक्टर ने एक ऑपरेशन कर डाला। तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये एआई ड्रिवन था, और हम साधारण लोगों के लिए लगता है कि एआई अभी दूर है और सीखने की बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। एआई धीरे धीरे हमारे जीवन में बहुत अंदर तक आ चुकी है, हर चीज में आप देखें। और हमारा जो आज जेंजी की हम बात करते हैं, इनके लिए तो एआई के बिना रहना ही मुश्किल हो जा रहा है। हर चीज में, होमवर्क में हो, या फिर कॉलेज एग्जाम में हो, या किसी चीज को समझने में हो, जेई या नेट की प्रिपरेशन में हो, हर जगह एआई आज हमारे सामने आ चुकी है।
1: हम एआई का अलग अलग फील्ड में इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें कि हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने की बात करते हैं, तो हेल्थ सेक्टर में अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है, जो महंगे महंगे इलाज हैं, क्या उन इलाजों में इसका फायदा होगा, और इसके इस्तेमाल से क्या उसके जो खर्चे हैं उसमें कमी आने के चांसेस?
0: दो चीजें हम जरूर कहना चाहेंगे। AI इन हेल्थ सेक्टर आज के डेट में बहुत आगे बढ़ चुकी है, और इससे जो आपका सवाल है कि इससे हमें एज अ कॉमन मैन क्या फायदा मिलने वाला है, तो इसमें कई सारे फायदे नजर आ रहे हैं। एक तो होता है कि जो पहले प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, डिटेक्शन वाला स्टेज चलता है, उसमें हमें पता करना होता है कि भाई किसी पेशेंट को हुआ क्या है। तो ये हमेशा से, सदियों से आप देखेंगे, डॉक्टर का डोमेन में हुआ करता था। लेकिन आप सोच लीजिए कि गांव में चले गए जहां डॉक्टर मीलों दूर है, तुरंत हम डॉक्टर के पास पहुंच नहीं सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो डायग्नोसिस है उसको ठीक से कर पाना ही अपने आप में एक चैलेंज है। आज AI उस लेवल में पहुंच चुका है जहां पे हम एक एक्सरे इमेज या MRI इमेज या पॉजिट्रॉन एमिशन इमेज, इन सारों को अगर हम एक मॉडल में डाल देते हैं, वो मुझे तुरंत बता देता है कि ये डायग्नोसिस क्या है, और खाली इतना ही नहीं कि इसके डिजीज में क्या है, ये लेवल भी बता देगा, और अगर इमेज है तो उस इमेज में कहां पे ये कैंसर है या कुछ और किसी तरह का अगर उसमें पाया गया, तो वो तुरंत बता देता है कि किस पार्ट में ये इफेक्ट हो रहा है। तो ये तो हो गया कि डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस वाला बात। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आ रही है, वो है डिस्कवरी ऑफ ड्रग। तो ड्रग डिस्कवरी में AI का आज बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि हर ड्रग हर इंसान को सूट नहीं करता, और हमें समझना होगा कि कौन सा ड्रग किसके बॉडी में किस तरह से रिएक्ट करेगा। पहले कंपनियां ये काम ट्रायल एंड एरर से करती थी, एनिमल टेस्टिंग से करती थी। आजकल धीरे धीरे टेस्टिंग के पहले ही आपको क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि ये ड्रग क्या होने वाला है और इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। तो ये अगर हम चंद चीजें देखें, तो हेल्थ सेक्टर में AI आज बहुत आगे बढ़ चुकी है।
1: यानी कि AI का इस्तेमाल अगर सही तरीके से करें तो आपको फायदा होगा, और अभी इस चीज का फायदा लोग उठा रहे हैं। और हम इस चीज को थोड़ा सा और गहराई से समझना चाहेंगे विज्ञान की भाषा में, कि अगर जैसे नासा या फिर हमारे देश का जो विज्ञान संस्थान है इसरो, अगर हम किसी ग्रह की खोज करने या वहाँ पर जो भी चीजें हैं उसको जानने के लिए हम यहाँ से अपने लोगों को भेजते हैं स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, तो क्या AI की मदद से हम बिना इंसानों को भेजे वहाँ पर क्या है नहीं है ये सारी चीजों की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं?
0: ये बड़ा अनोखा सवाल है। अगर आप पर्सनली हमसे पूछे तो मेरे हिसाब से 2040 कट ऑफ है जब कोई रोबोट भारत के तरफ से कोई एक प्लेनेट पे उतर जाएगी, और वो बिल्कुल वही काम करेगी जो एक इंसान वहां पे पहुंच के करती है। तो उसके आंख में कंप्यूटर विजन लगा होगा, उसके हाथ में टच सेंसर्स लगे होंगे, लेकिन उसे मरने का खतरा नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट का खतरा नहीं होगा, और आसानी से वो किसी भी पत्थर को उठा के अपने आंख से देख के उसका टेक्सचर एनालिसिस करके बता पाएगा कि उसमें क्या मेटल है या क्या कंपाउंड है। तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में AI एंड रोबोटिक्स, ये दोनों का जो मिश्रण है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और इससे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको खतरा बिना लिए ही आपको पता चल जाता है कि आपका जो एक्सप्लोरेशन है वो आपको कितना फायदा देने वाला है। तो मुझे लगता है कि स्पेस इज द नेक्स्ट फ्रंटियर फॉर AI, और आज नहीं तो कल सबसे बड़ा एक्सप्लोजन ऑफ AI एप्लीकेशन इसी स्पेस में ही
1: इस दिशा में भी कुछ काम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं डेटा सुरक्षा की, क्योंकि AI हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो डर होता है कि हम जो डेटा शेयर कर रहे हैं या हमने जो चीज फीड कर रखी है उसका गलत इस्तेमाल होने का। तो अब सबसे बड़ी जो समस्या है लोगों के सामने, जो डेटा है वो सुरक्षित कैसे रहे?
0: इसमें हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंडिया में अगर हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात करते हैं, जो आजकल चली हुई है, एलएलएम्स की जो बात करते
1: जी
0: हैं, तो इंडिया में आज के डेट में खुद का अपना एलएलएम उस प्रकार का नहीं बन पाया है जो बाकी देशों में बन चुके हैं। तो इससे ये होना ही होता है कि हम कई

0: बार अपना जो डेटा है वो विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स में डाल देते हैं, और ये कंपनी अपने जहाँ एग्रीमेंट्स है, जहाँ पे इनका यूला लिखा हुआ है, वहाँ पे बड़े छोटे अक्षरों में ये लिखती है कि आपका डेटा को यूज़ किया जाएगा मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अगर हम जागरूक रहें और उन चीज़ों को यहाँ अपलोड ना करें जिनका मुझे लगता है मेरा पर्सनल लाइफ से कोई लेन देन है, तो हम सेफ हैं। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को अपलोड करते हैं तो ये जान के करना होगा कि ये चीज़ देश के बाहर जा रही है और हो सकता है कि उसका कोई गलत इस्तेमाल करे। तो इस बारे में मुझे लगता है कि हम भारतीयों को बहुत जानकार होना पड़ेगा, और गवर्नमेंट टाइम टाइम पे कई सारे वार्निंग्स देते हैं, कई सारे हमें ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उन चीज़ों पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
1: जो युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काम करना, अब तो इसकी विधिवत पढ़ाई भी शुरू हो गई है अलग अलग कॉलेज और स्कूलों में, तो इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? और जो नौकरी को लेकर के एक सवाल हमेशा उठता है कि AI के आने के बाद हमारी नौकरी चली जाएगी, फ्यूचर में क्या ऐसा हो सकता है? या फिर खुद को सेफ रखने के लिए आप अभी से ही ट्रेनिंग लेते रहें, आगे चलते रहें इस फील्ड में, आप क्या सोचते हैं?
0: मैं अपने क्लास में भी ये कहता हूँ कि किसी भी इंसान का नौकरी AI के कारण नहीं जाएगा। उसकी नौकरी इससे जा सकती है कि उससे बढ़कर कोई AI जानने वाला इंसान आ जाए, तो AI किसी की नौकरी लेगी मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, ये बात हम कतई नहीं काट सकते हैं कि AI जानना आज बहुत ज़रूरी हो चुका है, और इस बारे में आप देखेंगे कि भारतीय सरकार भी छोटे छोटे क्लासों में ही AI का पढ़ाई शुरू करा रहे हैं। AI का पढ़ाई करना अपने आप में बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत टफ है। मैं खुद फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट था, तो उस टाइम हमने जो फिजिक्स ऑनर्स में पढ़ा था उसकी जो कठिनाई थी उसके बनिस्बत AI की कठिनाई उतनी नहीं है। लेकिन दिक्कत जो मुझे लगता है कि बच्चों के सामने आ जाती है कि चॉइस बहुत वाइड हो जाता है, और क्या पढ़े क्या ना पढ़े इस चीज पे उन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए। इसके लिए कई सारे आजकल वेबसाइट्स हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें अगर आप जाएंगे थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन क्या पढ़ना जरूरी है और क्या आज है लेकिन कल ना भी रहे। तो मुझे लगता है जो कोर एस्पेक्ट्स है, जो कोर कंपोनेंट्स है AI का, उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और उससे हम बाकी सारी चीजों को खुद ब खुद ही सीख लेंगे।
1: जो भी युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या फिर आगे चलकर इसमें काम करना चाहते हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या तैयारी करनी चाहिए और आगे क्या भविष्य हो सकता है?
0: देखिए, AI का भविष्य जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, AI का जो आज के दिन रुझान है ये हो सकता है थोड़ा घटे, लेकिन AI का इस्तेमाल बढ़ना ही बढ़ना है। तो जो भी स्टूडेंट हो, जो भी छात्र हो, जो उसे लगता है कि AI के फील्ड में अपना जीवन वो बनाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपका थोड़ा सा बेसिक साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स में रुझान होना चाहिए, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा और कुछ की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा बहुत मल्टीप्लीकेशन कर पाते हैं, थोड़ा बहुत डिविजन कर पाते हैं और आपको इंटरेस्ट है, तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा दौर हमारे लिए चल रहा है कि कई सारे प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं जहाँ पर आपको अधिक डेप्थ में ना जाके भी AI मॉडल जनरेट करने का आसान तरीका मिल जाता है। तो अगर कोई छात्र या स्टूडेंट उस तरह से सोच रहा है तो उसके लिए भी कई संभावनाएं हैं।
1: यानी कि इस फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं, भविष्य में आप इसमें अपना करियर संवारना चाहते हैं, तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी और तभी जाकर इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने ढेर सारी बातें की सर आपसे, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता में AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और प्रभाव। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में थे डॉक्टर अभिजीत मुस्तफी। ये हमने बात कर लिया AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मानव जीवन में योगदान और प्रभाव के बारे में।
2: इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए, तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत, और गीत के बाद हम लौटेंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिकों के बारे में, और आज हम जिस महान वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं उन्हें दुनिया राइट ब्रदर्स के नाम से जानती है। जिन्होंने हवाई जहाज के आविष्कार में अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिन्हें दुनिया राइट ब्रदर्स के नाम से जानती है, और जिन्होंने दुनिया में हवाई जहाज की यात्रा को सरल बनाने का काम किया, इन दोनों भाइयों का नाम है ऑर्विल राइट और विल्बर राइट। विल्बर राइट का जन्म 16 अप्रैल सन 1867 को हुआ, जबकि ऑर्विल राइट का जन्म 19 अगस्त सन 1871 को हुआ। इनके पिता एक धर्म गुरु थे और माता यांत्रिक कार्यों में विशेष रुचि रखती थीं। माता पिता ने बचपन से ही दोनों भाइयों में जिज्ञासा, परिश्रम और नई चीजें सीखने की आदत विकसित की। एक दिन इनके पिता बच्चों के लिए रबर से चलने वाला एक छोटा सा खिलौना लेकर आए। उस खिलौने ने दोनों भाइयों के मन में उड़ने की इच्छा जगा दी। अपनी युवावस्था में दोनों भाइयों ने साइकिल बनाने और उसकी मरम्मत का व्यवसाय शुरू किया। इस काम से इन्हें मशीनों की बनावट, संतुलन और गति के सिद्धांत की अच्छी समझ मिल गई। इसी अनुभव का उपयोग करते हुए उड़ने वाली मशीन बनाने में ये लग गए। राइट ब्रदर्स ने पक्षियों की उड़ान का गहराई से अध्ययन किया। इन्होंने ग्लाइडर बनाए, अनेक प्रयोग किए और कई बार असफल भी हुए, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। और इनका मानना था कि सफलता की सबसे पहली सीढ़ी असफलता ही होती है, इसलिए असफल होने के बावजूद ये कोशिश करते रहे। कई वर्षों के कठिन परिश्रम और लगातार प्रयोगों के बाद 17 दिसंबर सन 1903 को इन्होंने अपने विमान का सफल परीक्षण कर लिया। उस दिन ऑर्विल राइट ने लगभग 12 सेकंड तक उड़ान भरी और लगभग 120 फीट की दूरी तय की। ये इतिहास की पहली सफल नियंत्रित और इंजन संचालित मानव उड़ान थी। इस ऐतिहासिक सफलता ने पूरे विश्व को नई दिशा देने का काम किया। इसके बाद विमान तकनीक का तेजी से विकास हुआ। आज यात्री विमान, मालवाहक विमान, हेलीकॉप्टर और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, इन सबकी नींव राइट ब्रदर्स के प्रयासों पर ही आधारित मानी जाती है। राइट ब्रदर्स केवल आविष्कारक ही नहीं थे, बल्कि धैर्य, अनुशासन, वैज्ञानिक सोच और निरंतर प्रयास के प्रतीक भी माने जाते थे। इन दोनों ने सिद्ध करने का काम किया कि लक्ष्य स्पष्ट हुआ और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो असंभव भी संभव बन सकता है। आज दुनिया भर में इनके योगदान को सम्मान के साथ याद किया जाता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में इनका नाम सदैव प्रेरणा के साथ

0: लिया जाता है।
1: राइट ब्रदर्स का जीवन हमें ये संदेश देता है कि बड़े सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास, परिश्रम, धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने आपको बता दिया कि राइट ब्रदर्स कौन थे और इन्होंने किस चीज की खोज की थी, किस चीज का आविष्कार किया था। अब हम बात करते हैं खोज और आविष्कार में, आज माचिस के आविष्कार के बारे में। माचिस, वही माचिस जो हमारे घर में है, जिसका इस्तेमाल हम सभी करते हैं, और इस माचिस को बनाने के पीछे काफी मेहनत लगी है। गैस लाइटर और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन के युग में भी माचिस का जो वैल्यू है, जो महत्व है, वो कम नहीं हुआ। घरों, होटलों, पूजा पाठ, ग्रामीण क्षेत्रों और अनेक छोटे बड़े कार्यों में आज भी माचिस का उपयोग किया जाता है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक समय में आग जलाना बहुत कठिन माना जाता था। लोग दो पत्थरों को टकरा कर चिंगारी पैदा करते थे, फिर लकड़ियों को लंबे समय तक रगड़ कर आग जलाने का काम करते थे। ये प्रक्रिया कठिन, समय लेने वाली और कई बार असफलता को भी प्राप्त होती थी। आधुनिक माचिस के आविष्कार का श्रेय अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन वॉकर को दिया जाता है। इनका जन्म 29 मई 1781 में हुआ था और ये एक रसायन और औषधि विक्रेता के तौर पर जाने जाते थे। सन 1826 में एक दिन ये अपनी प्रयोगशाला में रसायनों का प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग के दौरान इन्होंने देखा कि एक लकड़ी की तीली के सिरे पर लगा रासायनिक मिश्रण सूख गया है। जब उन्होंने उस तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा तो वो तुरंत जल उठी। इस प्रकार संयोग से दुनिया की पहली घर्षण माचिस का आविष्कार हुआ। इसके बाद जॉन वॉकर ने ऐसी माचिस बनाने का काम शुरू किया जो लोगों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई जा सके। ये उस समय एक क्रांतिकारी आविष्कार के रूप में दुनिया के सामने उभर कर सामने आई, और क्योंकि अब आग जलाने के लिए लंबे और कठिन प्रयास की आवश्यकता नहीं रह गई थी। हालांकि शुरुआती माचिस में कुछ कमियां थी, इससे तेज गंध आती थी और ये कभी कभी असुरक्षित भी साबित हुआ करती थी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे और अधिक सुरक्षित बनाने के प्रयास जारी रखे। सन 1844 में स्वीडिश रसायनज्ञ एरिक ने सुरक्षित माचिस का सिद्धांत विकसित कर लिया। जॉन एडवर्ड ने इसमें सुधार किया और ऐसी सेफ्टी माचिस बनाई जो केवल डिब्बी की विशेष रगड़ने वाली सतह पर ही जला करती थी। यही प्रणाली आज भी अधिकांश माचिस की डिब्बियों में उपयोग की जाती है। आज माचिस की तीली लकड़ी या गत्ते से बनाई जाती है। इसके सिरे पर विशेष रासायनिक मिश्रण लगाया जाता है। डिब्बी की किनारे पर अलग रसायन होते हैं जबकि तीली को उस सतह पर रगड़ा जाता है, तो घर्षण करने के बाद उत्पन्न गर्मी रासायनिक अभिक्रिया करती है और तीली जलती है। ये छोटा सा आविष्कार मानव जीवन को सरल, सुविधाजनक और समय की बचत करने वाला सिद्ध कर चुका है। लेकिन माचिस का उपयोग करते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इसे हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थों के पास इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उपयोग के बाद तीली को पूरी तरह बुझाकर फेंकना चाहिए। थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। माचिस का आविष्कार हमें ये सिखाता है कि विज्ञान के छोटे छोटे आविष्कार भी मानव जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जॉन वॉकर और अन्य वैज्ञानिकों की मेहनत ने आग जलाने की प्रक्रिया को सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने का काम किया। तो आज हमने ढेर सारी जानकारी दे दी आपको माचिस के बारे में भी, और हमने ढेर सारी बातें भी कर ली आपसे। लेकिन अब हमारी स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है, और जाने से पहले हम हर बार की तरह आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें, और मौसम में परिवर्तन हो चुका है तो जब भी आप घर से बाहर निकलें तो पूरी सुरक्षा के साथ निकलें। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: विज्ञान जगत।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार का, प्रस्तुति थी प्रभु सरन की। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:35 हुए हैं। आइए अब आपको बताते हैं शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। तो अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। 5 बजे आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, 5:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक, 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार, 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। छह बजकर 32 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी दुनिया, 7 बजे होगा प्रादेशिक समाचार, 7:11 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले में आजकल, 7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, आज की आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम आप सुनेंगे संथाली भाषा में, 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर भारती, 8 बजे का वक्त होगा रजनीगंधा का, 8:30 से आप सुनेंगे सुर्खियों में, 8:45 से अब सुनेंगे समाचार संध्या। नौ बजकर 15 मिनट पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार, 10 बजे का वक्त होगा कार्यक्रम सुनहरी यादें का, 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, 11 बजे आप क्रमशः सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

कार्यक्रम सांझ सरगम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी पूजा और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फिल्म पठान के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाजें अरिजीत सिंह, सुकृति कक्कड़ और विशाल शेखर की। संगीत से सजाया है विशाल शेखर ने और शब्द रचना कुमार की।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म सिंग इज किंग से, आवाज़ें यो हनी सिंह की और स्वीटाज बरार की, संगीत से सजाया है हनी सिंह ने। शब्द रचना मयूर पुरी की और संगीत प्रीतम का।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो से, आवाज़ें अमन और विनीत सिंह की, सद रचना इशाद कामिल का, संगीत से सजाया है हिमेश रेशमिया ने।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म सूर्यवंशी से आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की, संगीत से सजाया विजू शाह ने और शब्द रचना आनंद बाख्शी और तनिष्क बाख्शी का।

अगला और आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म फाइटर से, आवाजें बेनी दयाल, शिल्पा राव और विशाल शेखर की। संगीत से सजाया है विशाल और शेखर ने, शब्द रचना कुमार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के आखिरी दिन आज राज्य के डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा झारखंड को सार्वजनिक प्रशासन आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य की अमूल्य धरोहर की झलक भी देखने को मिली। इस मौके पर वक्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विजन की सराहना की। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में आज रांची में जगन्नाथपुर रथ मेले के सफल आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। DGP ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मेला क्षेत्र और रथ यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ाने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं

देते हुए याचिका खारिज कर दी। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने आज 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची के मोरहाबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णन ने कहा कि एबीवीपी का इतिहास गौरवशाली रहा है और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों के दौरान चतरा और हजारीबाग जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात होने की भी संभावना है, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 MHz पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हम उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही अपने मनपसंद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आपकी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम इवानी। बिल्कुल दोस्तों, अपने चाय के कप के साथ रेडियो के करीब आ जाइए और कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाइए। हम आपके साथ बहुत सारी जानकारियाँ शेयर करेंगे और कुछ मज़ेदार गीतों का भी एंजॉय करेंगे। और आपके इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी दोस्त शबनम
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति।
0: हम दोनों की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं एग्ज़ाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आज का हमारा जो विषय है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाना है। बिल्कुल दोस्तों, अक्सर छात्र मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही स्ट्रेटजी ना होने के कारण उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए मेहनत के साथ साथ स्मार्ट प्लानिंग की भी ज़रूरी है।
1: बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना या तय करें कि आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसका सिलेबस व परीक्षा पैटर्न अच्छी तरह समझें।
0: बिल्कुल प्रीति, इसके बाद एक यथावादी टाइम टेबल बनाइए। हर विषय के लिए समय निर्धारित करें और रोज़ाना उसका पालन करें। लगातार पढ़ाई करने के बजाय बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी लें।
1: सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, नियमित रूप से मार्क्स मॉक टेस्ट दीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इससे समय प्रबंधन बेहतर होता है, अपनी कमज़ोरियों का भी पता चलता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, कमज़ोर विषयों में घबराए नहीं, उन्हें

0: अधिक समय दें और मजबूत विषय का भी नियमित अभ्यास करते रहें ताकि आपकी तैयारी संतुलित बनी रहे।
1: बिल्कुल, और नोट्स बनाना भी बहुत फायदेमंद होता है। छोटे और आसान नोट्स परीक्षा से पहले दोहराने में काफी मदद करते हैं।
0: बिल्कुल प्रीति, इसके साथ भी बहुत फायदेमंद होते हैं छोटे और आसान नोट्स परीक्षा से पहले दोहराने में काफी मदद करते हैं।
1: इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और रोज थोड़ा बहुत व्यायाम करें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है।
0: जी हाँ दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बातें, दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दे, हर दिन कुछ नया सीखने और सही रणनीति से मिलती है।
1: बिल्कुल, याद रखिए प्रतियोगी परीक्षा में सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि अनुशासन, निरंतर अभ्यास और सही स्ट्रैटेजी से मिलती है। तो दोस्तों, आज से ही एक बेहतर योजना बनाइए और स्ट्रैटेजी के अनुसार ही अपनी परीक्षा को सफलतापूर्वक।
0: बिल्कुल, कई बार स्टूडेंट को सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं लेकिन समय का सही उपयोग ना कर पाने के कारण वो पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाते हैं। इसलिए समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट सफलता की कुंजी है।
1: बिल्कुल, परीक्षा शुरू होते ही सबसे पहले प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें, सभी प्रश्नों को समझें और यह तय करें कि किस प्रश्न में कितना समय देना है।
0: बिल्कुल प्रीति, सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करेंगे जिनका उत्तर आपको अच्छी तरह से आता हो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और समय भी बचेगा। किसी एक कठिन प्रश्न पर बहुत अधिक समय ना लगाइए। यदि कोई प्रश्न कठिन लगे तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए और अंत में वापस आकर उसे हल करिए।
1: बिल्कुल, और घड़ी पर समय का ध्यान रखें। यदि 3 घंटे की परीक्षा है तो प्रत्येक प्रश्न के मार्क्स के अनुसार समय बांट ले, इससे किसी एक प्रश्न पर जरूरत से ज्यादा समय नहीं लगेगा।
0: बिल्कुल प्रीति, और उत्तर साफ सुथरे और व्यवस्थित ढंग से लिखें। जहाँ आवश्यक हो टॉपिक और डायग्राम का प्रयोग करें, इससे उत्तर पढ़ने में आसान होगा।
1: बिल्कुल, परीक्षा समाप्त होने से 10 से 15 मिनट पहले अपने उत्तरों को अच्छे से चेक करने के लिए समय जरूर बचाएं। इससे छोटे-छोटे गलतियां सुधारी जा सकती है।
0: जी बिल्कुल, और सबसे ज़रूरी बात, घबराइए नहीं, शांत मन से प्रश्नों को पढ़े और आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखे। सकारात्मक सोच आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाती है।
1: याद रखिए, सही प्रबंधन न केवल परीक्षा पूरी करने में मदद करता है बल्कि अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना भी बढ़ाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, दोस्तों बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आइए सुनते एक प्यारा सा सॉन्ग।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, इतिहास केवल पुरानी बातें नहीं बल्कि यह हमें प्रेरणा, सीख और अनुभव भी देते हैं। हर दिन अपने साथ कुछ खास घटनाएं लेकर आता है। तो चलिए जानते हैं कि आज यानी 9 जुलाई के दिन भारत और दुनिया में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी।
2: जी हाँ दोस्तों, 9 जुलाई का दिन कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है और भारत के आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: और वहीं अगर खेल जगत की बात करें तो 9 जुलाई 1877 को दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई थी।
2: जी हाँ दोस्तों, विश्व इतिहास में 9 जुलाई 1816 को अर्जेंटीना ने स्पेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी।
1: वहीं 9 जुलाई 2011 को दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे नया स्वतंत्र देश बना।
2: आज के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों में महान मानव वैज्ञानिक फ्रांज बोआस का नाम भी शामिल है। उनका जन्म 9 जुलाई 1858 को हुआ था और उन्हें

0: आधुनिक मानव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रोचक तथ्य से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। जी हाँ, क्या आपको पता है कि डॉल्फिन एक आँख खोलकर भी सो सकती है और चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक भार उठा सकती है और कंगारू पीछे की ओर नहीं चल सकता।
1: बिल्कुल दोस्तों, बास एक दिन में लगभग 90 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, मगरमच्छ अपनी जेब बाहर नहीं निकाल सकता। पेंगुइन उड़ नहीं सकते, लेकिन बेहतरीन तैराक होते हैं।
0: और आँख की कॉर्निया में रक्त नहीं होते हैं। स्टारफिश के पास मस्तिष्क नहीं होता। बर्फ मूल रूप से वास्तव में पारदर्शी होते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, ऊँट की पलकों की धोरी परत उसे रेत से बचाती है। वर्षा की हर बूंद का आकार अलग हो सकता है। जिराफ की जीभ लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। कौवा इंसानी चेहरा को अच्छे से पहचान सकता है।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे परीक्षा के समय अनावश्यक तनाव ना ले। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा हर विद्यार्थी के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन इसे डर या तनाव का कारण नहीं बनाना चाहिए। सही तैयारी और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा आसानी से दी जा सकती है।
1: अक्सर देखा जाता है कि परीक्षा का नाम सुनते ही विद्यार्थियों में घबराहट बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है?
0: देखो प्रीति, इसके कई कारण हैं, जैसे अच्छे अंक लाने का दबाव, परिवार और समाज की अपेक्षा, समय पे तैयारी ना होना, दूसरों से अपनी तुलना करना और असफलता का डर। यही बातें अनावश्यक तनाव पैदा करती है।
1: क्या थोड़ा बहुत तनाव भी नुकसानदायक हो सकता है?
0: नहीं प्रीति, सामान्य तनाव हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब तनाव बहुत अधिक हो जाए तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। यदि की हुई बातें भूलने लगते हैं, आत्मविश्वास कम हो जाता है और स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है।
1: क्या पर्याप्त नींद भी जरूरी है?
0: बिल्कुल प्रीति, अच्छी नींद याददाश्त और एकाग्रता बढ़ाती है। परीक्षा के दिनों में पूरी नींद ले, देर रात तक जागने के बजाय सुबह जल्दी उठकर पढ़ना अधिक लाभदायक होता है। और साथ ही संतुलित और पौष्टिक भोजन बहुत आवश्यक है। फल, हरी सब्जियां, दाल, दूध और पर्याप्त पानी ले। बहुत अधिक जंक फूड या कैफीन लेने से बचे, क्योंकि इससे शरीर और मन दोनों प्रभावित होता है।
1: यदि कोई विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव महसूस करे, तो क्या करना चाहिए शबनम?
0: तो प्रीति, यदि कोई विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव महसूस कर रहा है, तो वह अपने माता पिता, शिक्षक या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से खुलकर बात कर सकता है। अपनी समस्या साझा करने से मन हल्का होता है और सही मार्गदर्शन मिलता है। तनाव को अकेले सहने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: परीक्षा के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: समय पर परीक्षा केंद्र पहुँचे, आवश्यक सामग्री साथ रखे, प्रश्न पत्र को पहले ध्यान से पढ़े, आसान प्रश्नों से शुरुआत करें और समय का सही प्रबंधन करें। घबराहट होने पर कुछ गहरी सांसें ले और स्वयं पर विश्वास रखें।
1: और शबनम, क्या दूसरों से तुलना करना सही है?
0: बिल्कुल नहीं, हर विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है। अपनी तैयारी पर ध्यान दें और स्वयं से बेहतर बनने के प्रयास करें। तुलना केवल तनाव बढ़ाती है।
1: शबनम, अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए?
0: तो प्रीति देखो, माता पिता को बच्चों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित करें, उनकी मेहनत की सराहना करें और यह विश्वास दिलाएं कि अंक महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण उनका स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सीखना है। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं।
2: भारतस्य

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स से जुड़ी कुछ बातें। प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया दौरा। जुलाई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया। वे इंडोनेशियाई सांसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 से 9 जुलाई 2026 तक कुवैत की यात्रा पर रहे, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, सहयोग और राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की।
0: जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का किन्नू को जीआई टेक प्रदान किया गया है, जिसके साथ वह यह टेक प्राप्त करने वाला राज्य का पहला फल बन गया।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ हो चला है समय आपसे विदा लेने का, और आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीति।
0: और मैं शबनम।
1: हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम श्रमिक लोक में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं जया और मेरे साथ है प्रीति।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को प्रीति का भी नमस्कार। तो चलिए दोस्तों सीधे बातें करते हैं क्योंकि बातें करने ही हमारे हाँ, भाई मौसम थोड़ा खराब है लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अब चलिए हम बातें करते हैं भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सिस्टम है और अगर बात करें श्रमिक साथियों की तो यह असंगठित श्रम क्षेत्र को संदर्भित करता है।
0: और यहाँ अब तकनीक आधारित स्टार्टअप ऐसे प्लेटफॉर्म बना रहा है जो नीले कॉलर श्रमिकों को रोजगार और वित्तीय समावेशन से जोड़ते हैं।
1: बिल्कुल, स्टार्टअप कंपनियां तेजी से असंगठित श्रम क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि श्रमिकों को बिचौलियों के

0: बिना आसानी से स्थानीय रोजगार खोजने में मदद मिल जाए।
1: बहुत अच्छी बात है। और स्टार्टअप कंपनियां दैनिक वेतनभोगी और गिग वर्कफोर्स के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया उत्पाद बना रही है प्रीति।
0: बिल्कुल, श्रमिक साथियों की अगर हम बात करें जया, तो मुझे लगता है कि थोड़ा तो उन्हें सहारा चाहिए, क्योंकि नई जगह पे नया काम जब करते हैं ये लोग, तो अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाए तो बहुत आसानी होती है। साथ ही डिजिटल कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण ऐप श्रमिक कार्यबल को आधुनिक उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं को उन्नत करने में सक्रिय रूप से मदद कर रहे हैं। तो आप भी अगर इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें और इसका लाभ
1: लें। बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों, आज हर कोई परेशान है प्रीति, तुम देख रही हो, चाहे हम हो तुम हो, हर लोग परेशान है।
0: हाँ,
1: सबको अपनी अलग अलग परेशानियां, और सभी लोग परेशानियों से जूझ ही रहे हैं। चाहे कोई भी समस्या हो, रोजगार से जुड़ा हो, परिवार से जुड़ा हो, लेकिन हर वक्त अगर आप अपनी परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे तो परेशानी तो घटेगी नहीं, बल्कि आप मानसिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे, और ऐसा अक्सर होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। तो टेंशन मत लीजिए, समाधान ढूंढिए ताकि परेशानी खत्म हो सके। अगर आप बेवजह की चिंता में रहेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इसलिए संतुलित दिनचर्या अपनाएं और शारीरिक और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखें।
1: और रोजाना कम से कम 10 मिनट या 30 मिनट व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, टहलने जाइए, अपने पसंद का गीत सुनिए, अपने पसंद का हर चीज आप कीजिए। तो इससे क्या होता है ना कि आप जो इंडोरफिन का जो स्राव होता है ना, वो तनाव को कम करता है प्रीति, इसलिए आप अपने पसंद का कुछ जरूर काम कीजिए।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ रोज 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लें, है ना, बिल्कुल आराम से सोए, ये नहीं कि जाग रहे हैं सो रहे हैं इस तरह से।
1: आजकल लोग ना बहुत आधी आधी रात तक जागते मोबाइल देखते, तो ये बहुत ही बुरी बात है।
0: बुरी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मिलता तो कुछ नहीं है,
1: नींद आपकी पूरी नहीं होती है,
0: दूसरे दिन आप काम नहीं कर पाते हैं ढंग से, कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हो जाता है,
1: थकावट महसूस
0: होती है। तो बहुत जरूरी है कि हम 7 से 8 घंटे की नींद लें, ताजे फल खाएं और हरी सब्जियां जो है वो खाएं और पर्याप्त पानी पिए, इससे शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी और मन भी ठीक रहेगा, क्योंकि आपके अंदर ताकत होती है ना, तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा।
1: और हर बात में केवल नकारात्मक पक्ष देखने के बजाय आप छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की आदत भी डालें।
0: बिल्कुल, बारिश हो रही है तो बूंदों का आनंद लें, भाई अगर आप गोलगप्पे वाले के पास खड़े हैं तो तुषार खा भी लें।
1: लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी प्रीति, बारिश का मौसम है, बाहर की चीजें बिल्कुल ना ही करना है, घर का बना हुआ ताजा खाना खाना है।
0: बिल्कुल, आप ज्ञान देने से पीछे नहीं रहेंगे, वही अच्छी बात है, तो आप इनकी बात सुने जरूरी है, कभी कभी मन थोड़ा पीछे रख लेना चाहिए।
1: आप खाइए जरूर, एक घर का बना हुआ।
0: बिल्कुल सही कहा। अपने मन की जो बातें हैं दोस्तों, ये परिवार या किसी भरोसेमंद दोस्त के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि अपनी भावनाओं को दबाने से भी मानसिक बोझ बढ़ता है, आप दबते चले जाते हैं और कहते हैं ना कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ये होने लगता है। तो भाई किसी से बातें करें, खूब सारी बातें करें, मन में ना रखे,
1: जो भी बात है आप दूसरे से उस बात को शेयर कर लीजिए। जैसे कि अभी मेरे मन में कुछ है तो मैं चाहूंगी कि मैं प्रीति को बता दूं कि प्रीति मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप जरूर शेयर कर लीजिए और मन को बिल्कुल हल्का रखें। और व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में ना कहना सीखिए, अधिक काम का जो भी प्रेशर है ना, मानसिक शांति को हंग करता है, इसलिए जितना हो सके उतना ही करे और खुश रहे और मस्त रहे। और फिलहाल अभी क्या करना प्रीति?
0: गाना सुनना है, क्योंकि हमारे श्रमिक साथी दिन भर थक कर आए हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि उन्हें थोड़ा सा आराम मिले,
1: गाना सुना दे, मानसिक शांति मिले।
2: दिस इज समथिंग

0: प्रीति, बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने अपने श्रमिक साथियों को सुनाया, और हमें लगता है कि अगर टेंशन में होंगे या बहुत थके हारे होंगे तो इस गीत को सुन के तो पूरा एंजॉय किए होंगे, है ना?
1: बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मन से इंसान को खुश रहना चाहिए, और ये खुशी तभी मिलती है ना जब आपके आसपास का वातावरण अच्छा हो।
0: वातावरण की अगर बात करें तो अभी जो बारिश का मौसम है ना, अगर चारों तरफ ना हमें केवल हरियाली हरियाली दिखाई देती है ना, तो बड़ा मन खुश होता है। और इस मौसम में अगर आप तुम वृक्षारोपण का ही मौसम होता है, यानी कि अगर छोटा हम पौधा लगाए ना, तो इस मौसम में जो भी पौधा लगाए ना तो जरूर लगता
1: है। हाँ, क्योंकि ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती, पौधे बड़े हो जाते हैं और फिर आसानी से बड़े हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इस मौसम में हम पर्यावरण के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें। और अब आइए दोस्तों, आपको सुनवाते हैं वार्ता, पर्यावरण की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी। वार्ताकार हैं वरुण श्रीवास्तव।
2: पर्यावरण ही सृष्टि है, इसे बचाइए। धरती की जान पेड़ है, घर घर लगाइए। इनके कटे तो कुदरत की सौगात जाएगी, रंगीन नजारों

तारों से भरी रात जाएगी कि जब रेत ही रेत नजर आएंगे हिंदुस्तान में, तब देखते ही देखते बरसात जाएगी कि नाश आ रहा है पास चेत जाइए, धरती की जान पेड़ है घर घर लगाइए, कि धरती की जान पेड़ है घर घर लगाइए। हम यदि 20 से 25 वर्षों में अपने इर्द गिर्द हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उनके परिणामों पर नजर डालें तो साहित्यकार श्री निरुमोही द्वारा रचित शब्दों का यह खेल क्या अत्यंत कटु यथार्थ सत्य नहीं होता है? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के चारों तरफ, मानव के चारों तरफ प्राकृतिक आवरण का परिवेश, जो भी प्रकृति प्रदत्त चीजें हमारे चारों ओर मौजूद हैं, जैसे वायु, जल, मृदा, वनस्पतियां, जीव जंतु आदि सभी पर्यावरण के घटक हैं। इनसे मिलकर पर्यावरण की रचना होती है। आज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण और जनसंख्या के बोझ के कारण पर्यावरण संरक्षण विश्व में सभी के लिए चिंता और चुनौती का विषय बन गया है। चाहे वह आम आदमी हो, उद्योगपति हो, गैर सरकारी संगठन हो, या पर्यावरणविद हो, या फिर सरकार। पृथ्वी पर मानव जीवन और जैव विविधता को बचाने और सुरक्षित करने हेतु पर्यावरण को सुधारने एवं उसका संरक्षण करने के लिए पुरजोर शोर से पूरा विश्व स्तर पर प्रयास किया जा रहा है, परंतु अभी तक कोई ठोस परिणाम निकल कर सामने नहीं आया। पिछले वर्ष 2023 अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, जिसने गुजरात में, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों तथा पाकिस्तान के कराची में भीषण तबाही मचाई। चक्रवात बिपरजॉय के बारे में यदि कुछ दुर्लभ तथ्य डालें तो हम इसे समझ पाएंगे। अभी तक अति विनाशक तूफान बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में उठते थे। अरब सागर में इतना विनाशकारी तूफान पहली दफा उठा। अरब सागर में अब तक सबसे लंबे समय तक बने रहने वाला तूफान है। इस दौरान इसकी विनाशक क्षमता निरंतर बढ़ती ही गई। अरब सागरीय क्षेत्र का पानी इतना गर्म पहले कभी नहीं देखा गया जितना इस बार। अब से लाखों वर्ष पूर्व जब हमारे पूर्वज दो पैरों पर खड़ा होना सीख ही रहे थे, तब से लेकर अब तक हम लोग मंगल ग्रह तक पहुंच रहे हैं। पर्यावरण ही हमेशा मनुष्य के अस्तित्व का आधार रहा है। जब मनुष्य इस धरा पर नहीं था, वल जल, वायु जल, वन, पशु पक्षी आदि प्राकृतिक तत्व तब भी फल फूल रहे थे। यह ध्यान रहे कि पर्यावरण से ही हम हैं, हमसे पर्यावरण नहीं। आइए एक नजर झारखंड में बढ़ते प्रदूषण पर नजर डालें। एक समय था यह झारखंड रांची जो शिमला कहा जाता था, परंतु प्रदूषण की मार ने यहाँ की आबो हवा को बदल दी है। WHO के प्रदूषण जांच रिपोर्ट के अनुसार पूरे झारखंड में प्रदूषण की श्रेणी में रांची शहर टॉप 5 शहरों में है। WHO ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। प्रदूषण जांच रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित शहर में धनबाद को बताया गया है, जबकि झारखंड 43 छोटे बड़े शहरों में रांची को 5वें नंबर पर बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण पर बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण है क्या। पर्यावरण के संरक्षण का अर्थ है वनों, भूमि, जल निकायों और खनिजों, ईंधन, प्राकृतिक गैसों आदि का संरक्षण, यह सुनिश्चित करना कि ये सभी प्रचुर मात्रा में भविष्य में उपलब्ध होते रहें। इस प्रकार के सभी प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर जीवन को रहने लायक बनाते हैं। हवा, पानी, सूरज की रोशनी के साथ साथ पृथ्वी पर अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। पर्यावरण और प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करें? कई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उनके उत्पादन की क्षमता या गति की तुलना में तेज गति से किया जा रहा है। मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारें तो शायद हम प्रकृति के संसाधनों को सुरक्षित रख सकते हैं। पानी की खपत कम करना। पृथ्वी पर जल अब भी प्रचुर मात्रा में है। यही एक वजह है कि लोग इसका इस्तेमाल करने से पहले सोच विचार नहीं करते। हालांकि अगर हम इसी गति से उपयोग करते रहेंगे तो भविष्य में हो सकता है हमारे पास इसका हिस्सा ना बचे। इसलिए ब्रश करते समय नल बंद कर देना और बचे हुए पानी को पौधे में पानी देने के लिए दो बार या उपयोग करने

0: ऐसी साधारण चीजें इस दिशा में मदद कर सकती हैं। बिजली का उपयोग कम करें, केवल उतनी ही बिजली का या ऊर्जा का उपयोग करें जितनी आवश्यकता है। इसलिए बिजली के उपयोग को सीमित करने की सलाह दी जाती है। साधारण आदतें जैसे अपने कमरे को खाली करने के पहले स्विच ऑफ अवश्य बंद कर दें, स्विच को ऑफ अवश्य कर दें, ताकि ऊर्जा संरक्षित हम कर सकें। कागज का उपयोग प्रतिबंधित करें। कागज का उपयोग पेड़ों पर ही निर्भर है। कागज का उपयोग बढ़ने का अर्थ है वनों की कटाई को बढ़ावा देना। आज के समय में चिंता का एक प्रमुख कारण है। हमेशा सुनिश्चित करें कि आप केवल उतना ही कागज का उपयोग करें जितना आवश्यक हो। वाहन का उपयोग कम करें, जरूरत पड़े तभी वाहन का उपयोग करें। ज्यादातर शेयर वाली वाहन का उपयोग करना ज्यादा श्रेयस्कर हो। दोस्तों या श्रमिक, ये बातें केवल किताबों तक रहनी नहीं चाहिए। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनानी होगी। पर्यावरण के संतुलन कायम रखने से जीव और मानव का विकास संभव है। सोलर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाना होगा, ऊर्जा का आवश्यक खर्च न करने की आदत डालनी होगी, जल संसाधन की बचत करनी होगी। हमें याद रखना है कि प्रकृति ने इंसान को पैदा किया है और अपने अस्तित्व के लिए इंसान को ही इसकी जरूरत है। प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, अभी आपने सुना वरुण श्रीवास्तव को, जिन्होंने हमें ये बताया कि पर्यावरण की सुरक्षा जो है ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारी।
2: इसलिए हम सभी को आगे बढ़ना होगा और हम सभी आगे बढ़ के पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे। क्योंकि अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो आने वाले भविष्य में हम सभी को बहुत अधिक परेशानी होने वाली है। प्रीति,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और अब आइए दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में।
2: और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार द्वारा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है।
1: इसके तहत 18 विभिन्न ट्रेंडों जैसे कि बढ़ई, लोहार, सोनार, कुम्हार, नाई, दर्जी, मोची,
2: तो और असंगठित क्षेत्र से जुड़े जितने भी कारीगर हैं ना, उन्हें बिना किसी गारंटी के 5% की ब्याज दर पर 3,00,000 का लोन और 15,000 की टूलकिट सहायता और ₹500 प्रतिदिन स्टाइपेंड के साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रीति,
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए पात्र कारीगर अपने आधार से जुड़े दस्तावेजों के साथ नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। आवेदन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। परिवार का एक ही सदस्य इसका पात्र बन सकता है।
2: क्योंकि अगर परिवार में हम जैसे दो लोग हैं तो सोचेंगे इसका फायदा उठाएं, तो ऐसा नहीं है। परिवार का सिर्फ एक ही सदस्य इसका पात्र है। और इस योजना के तहत 5 और 7 दिन का बेसिक और 15 दिन का एडवांस प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रीति,
1: बिल्कुल जरूरी है कि बेसिक से शुरू किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं पता होता है। और साथ ही ट्रेनिंग के दौरान हर दिन ₹500 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि श्रमिक साथियों को ज्यादातर लगता है कि वो अगर ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, तो फिर कैसे चलेगा।
2: तो भाई, तो ट्रेनिंग के दौरान हर दिन आपको ₹500 की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। और साथ ही साथ आधुनिक औजार खरीदने के लिए 15,000 का ई वाउचर भी दिया जा रहा है। प्रीति,
1: बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि औजार नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे लोग। साथ ही पहले चरण में 1,00,000 और दूसरे चरण में 2,00,000 का लोन मात्र 5% ब्याज दर पर।
2: तो साथियों, यह योजना कौशल, पूंजी और बाजार की पहुंच बढ़ाकर कामगारों, जो कामगार हैं ना हमारे, उनके आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। और प्रीति, एक चीज और हम बोलना चाहेंगे कि हमारे जितने भी श्रमिक साथी होते हैं या अभी जो भी हमारे साथी हैं ना, हम सब जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना भी चाहते हैं, पर जब भी करने का वक्त आता है ना, तो सिर्फ एक ही शिकायत हर लोगों की होती है कि समय ही नहीं मिलता। चाहे शरीर दुरुस्त रखने के लिए रोज व्यायाम करना हो, या पढ़ाई पूरी करना, या फिर नियमित दिनचर्या में बदलाव लाना, जैसा कि हमने शुरू में भी बातचीत की इस बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, समय नहीं मिलता तो समय जाता कहाँ है। समय घर के कामों में ही लग जाता है, लेकिन हाँ, अगर उसी को आप व्यवस्थित ढंग से करते हैं, संतुलित करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप समय अपने लिए बचा पाएंगे। और साथियों, वक्त का बहाना हमेशा अड़ा आता है, जबकि ऐसा नहीं है कि समय नहीं है। दिन भर में सिर्फ कुछ मिनट ही काफी होते हैं किसी काम को कैसे या जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए।
2: और समय सबके पास है, जैसा कि

0: बिल्कुल
1: देंगे।
0: सही कहा। और ये जो समय समय की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में सफल है उसके पास भी 24 घंटे ही होते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा उसके
1: उनके
0: पास
1: पास भी
0: भी
1: चौबीस
0: 24 घंटे
1: घंटे
0: हैं।
1: हैं।
0: तो ये आप पर निर्भर करता है कि इन 24 घंटों का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं।
1: इसलिए आप सभी को अलग से वक्त निकालना होगा, अपनी सोच में बदलाव लाएं और हर काम को पूरा करने की इच्छा मन में जगाएं। जब आप तय कर लेंगे कि आपको काम पूरा करना ही है, तो समय खुद ब खुद निकलना सीख
0: बिल्कुल
1: जाएंगे।
0: सही कहा आपने कि इच्छा होनी बहुत जरूरी है। और कहते भी है ना कि उड़ान जो है वो पंखों से नहीं बल्कि हौसलों से होती है। तो अगर आपके अंदर हौसले बुलंद हैं तो बहुत ऊंचा उड़ेंगे आप और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। और अगर काम जो करना है, अगर हम कहें कि किस तरह से करें, तो इसके लिए पहले एक सूची बनाएं कि क्या करना चाहते हैं। व्यायाम करना है या फिर कोई नया कौशल सीखने के लिए वक्त देना है, कोई एक कोर्स करना है, कोई खेल सीखना है, अतिरिक्त समय निकालने के लिए एक सुव्यवस्थित दिनचर्या बहुत जरूरी है। काम के लिए सही समय चुने और सही समय चुनकर ही काम करें। इससे काम करने में मन भी लगता है और काम भी सही तरीके से
1: और
0: होता है।
1: अपने विकास और लक्ष्य को पाने की व्यस्त दिनचर्या में खुद के लिए समय निकालना बेहद जरूरी है। अपने विकास के लिए कोई नई स्किल सीखें, किताब पढ़ें या ऐसी गतिविधियों को करें जो आपको खुशी देती हैं। और जो भी आप काम करने के लिए सोच रहे हैं या ठान रहे हैं, बस उसके लिए वक्त निकाल लें। आपको ये नहीं देखना है कि कब हमें वक्त निकालना, निकालना वक्त आपको है। और फिलहाल हमारे पास भी अब वक्त बहुत कम है, तो हम अपने श्रमिक साथी को एक खूबसूरत सा पहले गीत सुना देते हैं।
0: चलिए।

0: सच में गीत खूबसूरत था, लेकिन और बातें हम नहीं कर सकते.
1: नहीं कर
0: अब आप
1: सकते
0: पूछिए
1: हैं
0: क्यों नहीं कर सकते भाई,
1: क्योंकि
0: ज्यादा मानसिक दबाव नहीं देना है. खुश खुश रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए और
1: और
0: मौसम को
1: बारिश
0: एंजॉय
1: का
0: कीजिए.
1: मौसम का मजा लीजिए, और अपनी दोस्त जया
0: और प्रीति को दीजिए इजाजत.
1: नमस्कार.
0: नमस्कार.

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारे शुरू की घड़ी में 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। राज्य सरकार ने झारखंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन के आखिरी दिन आज राज्य सरकार ने विजन 2050 और प्रस्तावित AI नीति 2026-31 का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1150 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य में AI आधारित डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में असफल रहने का आरोप लगाया है। श्री वर्मा ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्टार्टअप इंडिया में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी PM सूर्य घर योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर लोगों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ झारखंड और बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने फ्रेंचाइजी केंद्र का उद्घाटन किया। झारखंड उच्च न्यायालय में आज JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी। रांची में आयोजित 39वें राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन और गर्ल्स

शतरंज चैंपियनशिप के छठे राउंड के ओपन मुकाबले में आज अयांस ने सिद्धार्थ अनुज, जोहान ने जिनसन, रयान ने आरव रवि और श्रेयांस दास ने अर्जुन को पराजित किया। वहीं दिनेश और शफीक के बीच का मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ। दूसरी ओर गर्ल्स मुकाबलों में नंदी प्रीतिका ने अनवी, अर्षिता ने अदीना, अंशिता ने ईशी सिंह, पविष्णा ने अरावा और सयाद ने आस्था को शिकस्त दी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 6:03 हुए हैं। आइए सुनते

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब किसान भाई बहन मन के कृषि जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु कर जोहार।
0: ये कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो भाई आज का हमरे जानकारी करब कार्यक्रम में सके बताए दो थी। सबसे पहले हमरे मौसम कर जानकारी करब। आज की बात में लेमन ग्रास कर खेती और उकर मूल्य संवर्धन कर अवसर कर बारे में डॉक्टर अर्चना महापात्रा से जानकारी करब। कृषि विकास गीत सुनब देवदास विश्वकर्मा संगी मन कर गावल। और नई उम्र की नई फसल में एगो गाय और बकरी पालक किसान से रौन की भेंट भी करवा।
1: तो सबसे पहले और करी ले मौसम कर हाल खबर से। तो आज कर मौसम विभाग वट से भेटाल सूचना कर मुताबिक आज कर मौसम कर तापमान ई तरी रह कर अनुमान लगल गलक है, जेकर में झारखंड राज्य कर राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और रामगढ़ कर अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और लोहरदगा कर अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और गुमला कर अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और सिमडेगा कर अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और कोनो कोनो क्षेत्र में पानी मन भी आवे कर संभावना बनल है।
0: और देखो एखन खेती बाड़ी कर तो समय है ना। खेती बाड़ी कर समय में जैसे किसान भाई बहन मन अगर बीज के बढ़िया लगावे तो खेती भी बढ़िया होगी
1: एकदम।
0: काले कि कभी कभी देखब कि पौधा तो बहुत बढ़िया होवे ला लेकिन उकर में जब बीज आवे ला नहीं तो वो एकदम छोटे छोटे होवे ला चाहे होबे नहीं करे ला।
1: सेले हमरे के बीज कर जे चयन होवे ला उके बेस से चयन करे के चाहिए और ऐसन बीज के या तो बीज जो भंडार होवे ला उके बढ़िया से जांच करके जैसे ISI मार्क मने होवे ला उ सबके ध्यान दे के बीज के लाने के चाहिए।
0: और बीज कर उपचार कर भी मने व्यवस्था है तो बीज उपचार करके लगावे के चाहिए।
1: और देखो बीज अगर बेस रही तो बढ़िया फसल हुई और किसान मन के बेस लाभ भी भेटाई और जो खरपतवार मने हुए

0: बीज कर साथ साथ है, वो मन नी भेटाए तो पौधा मने भी बेस जन्म मिशन हुए।
1: तो बीज उपचार करके और बीज के लगाओ किसान भाई बहन मने, तब जैसे आगे खेती में फायदा हुई है नहीं।
0: एकदम
1: और अब देखो कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हैं हमारे आज की बात से, हमारे जाना बिकर में कि लेमन ग्रास ओकर खेती और मूल्य संवर्धन कर अवसर का तेरी भेटाई हमारे किसान भाई बहन मन के, इके बतात हैं डॉक्टर अर्चना महापात्रा और इनकर से भेंट कर रहे थे मनोज कुमार।
0: तो चलो सुनीला।
2: किसानवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज हम जानेंगे लेमन ग्रास की खेती और मूल्य संवर्धन के अवसर के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना महापात्रा, वैज्ञानिक ICAR निशा नामकुम रांची। महापात्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा जोहार।
2: जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं लेमन ग्रास के बारे में, तो ये लेमन ग्रास होता क्या है, क्या ये?
3: जी, लेमन ग्रास जिसे हिंदी में नींबू घास भी कहा जाता है, एक बहुवर्षीय सुगंधित घास। इसके पत्ते को हाथ में हल्का सा मसलने पर इसमें नींबू जैसी ताजगी भरी सुगंध आती है। इसका उत्पादन मुख्यतः इसे अब एसेंशियल ऑयल के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग कई सारे उद्योगों में जैसे कि सौंदर्य प्रसाधन, अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर इत्यादि में किया जाता है।
2: आजकल बहुत सारे किसान भाई इस ओर अग्रसित हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, क्या बात है?
3: देखिए, झारखंड सहित देश के कई प्रांतों में किसान आज मौसम की अनिश्चितता तथा सिंचाई की सीमित संसाधन जैसे समस्याओं से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में लेमन ग्रास एक बहुत अच्छा विकल्प बनकर उभर सकता है। सबसे पहली बात, लेमन ग्रास कम पानी में भी उगाया जा सकता है, तो जहां पर वर्षा आधारित कृषि होती है या तांड या जैसे पठारी जमीन है, वहां पर इसकी खेती बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इसका एक बार रोपण करने के बाद इसको हर साल रोपण करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार कर दिया तो 4 से 5 साल तक इससे उत्पाद लिया जा सकता है, यानी कि किसान एक बार किसानों के लिए नियमित तौर पे एक आय का संसाधन बन सकता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो झारखंड के किसानों के लिए बहुत ही खास है, वो यह है कि इसकी सुगंध के कारण, तेज सुगंध के कारण इसके आसपास जंगली जानवर, हाथी या अन्य पशु इसके पास भी नहीं आते, तो फसल नष्ट होने की चिंता भी कम हो जाती है।
2: लेमन ग्रास लगाने के लिए, खेती करने के लिए कैसा भूमि चाहिए और जलवायु क्या होनी चाहिए?
3: लेमन ग्रास के लिए मुख्यतः गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, इससे पर्याप्त धूप की जरूरत होती है। भूमि की बात करें तो इसे बहुत उर्वरक जमीन की जरूरत नहीं है, इसको कम जहां पे ऐसी जमीन जहां पर पानी बह जाता होगा, पानी भर के नहीं रहता, वैसा जमीन जैसे कि पठारी या पहाड़ी जमीन भी उपयुक्त होता है। इसलिए रांची, गुमला और लोहरदगा तथा खूंटी जिला और ऐसे अन्य पठारी क्षेत्र इसके लिए काफी उपयुक्त हो सकते हैं।
2: बहुत सारे किसान भाई इसके बारे में सुन रहे हैं, तो अगर वो खेती करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं?
3: देखिए, लेमन ग्रास की खेती बीज से नहीं होती बल्कि स्लीप यानी कि पौधों के गुच्छों से होती है, तो सबसे पहले तो अच्छी गुणवत्ता वाले रोपण सामग्री का चयन करना चाहिए। उसके बाद जमीन को अच्छे से 2-3 बार जुताई करने के बाद उसमें आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डाला जा सकता है। 2-2 फीट की दूरी पर इनकी रोपण करना चाहिए स्लिप्स की, और प्रारंभिक अवस्था में इसमें खरपतवार नियंत्रण तथा सिंचाई के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद एक बार ये पौधा एस्टेब्लिश हो जाता है तो उसमें 3 से 4 महीने बाद पहली कटाई लिया जा सकता है, और उसके बाद फिर प्रबंधन के अनुसार हर 2 या 3 महीने में इससे कटाई लिया जा सकता है, यानी कि साल में इसमें से कई बार उत्पाद लिया जा सकता है।
2: कितने किस्मों के होते हैं और किस्म का अगर चयन करना हो तो कैसे हम चयन करेंगे और पहचान कैसे करेंगे?
3: इसमें अगर हम किस्म की चयन करना चाहेंगे तो 2 तरीके ज्यादातर लेमन ग्रास देखने को मिलते हैं, एक सफेद तने वाले यानी सफेद डंठल वाले और एक लाल तने वाले। जो पूर्वी भारतीय के क्षेत्र हैं वहाँ पे लाल तने वाले कुछ किस्में जैसे कि कृष्णा, सीमेप सुप्रिया, प्रगति, इनको अच्छा माना जाता है। अच्छा किस्म वो होता है जिसमें एसेंशियल ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, और एसेंशियल ऑयल में सिट्रल नामक तत्व जो उसको उसकी नींबू जैसी खुशबू देती है उसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो जिस किस्म में इसकी मात्रा ज्यादा होती है तथा तेल की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि वो अच्छी गुणवत्ता वाले किस्म हैं।
2: अगर हम इसे घर में लगाना चाहें, गमले में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं?
3: जी बिल्कुल, इसको गमले में भी हम लगा सकते हैं, बस ध्यान एक बात का रखना है कि पानी वहाँ भर के रहना नहीं चाहिए।
2: अब हम बात करेंगे मूल्य संवर्धन के बारे में, तो ये मूल्य संवर्धन है क्या?
3: मूल्य संवर्धन का अर्थ है कि

0: किसी भी कृषि उत्पाद या कोई भी उत्पाद को प्रसंस्करण या मूल्य रूपांतरण करके उससे मूल्यवान बनाना। अगर किसान कच्ची घास को बेचते हैं, लेमन ग्रास को खाली ऐसे ही बेचते हैं, तो उनका आय सीमित रहेगा। लेकिन अगर वो उसको उसमें से हर्बल टी बनाते हैं, उसका एसेंशियल ऑयल निष्कर्षण करके बेचते हैं या अन्य उत्पाद करते हैं, तो उसका मूल्य कई अधिक गुना बढ़ जाता है। तो यही मूल्य संवर्धन है और यही किसानों के आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: हमने सुना है कि लेमन ग्रास का तेल भी निकलता है।
0: जी
1: सही बात है।
0: जी बिल्कुल, लेमन ग्रास का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद उसका एसेंशियल ऑयल यानी कि लेमन ग्रास ऑयल है। यही इसकी बाजारी मांग और आर्थिक महत्व का आधार है। अच्छे प्रबंधन के साथ अगर हम इसकी खेती करें तो एक एकड़ जमीन से लगभग 80 से 100 लीटर तक तेल प्रति वर्ष निकल सकता है। और गुणवत्ता के अनुसार इसकी कीमत सामान्यतः 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति लीटर या उससे अधिक भी हो सकता है।
1: तो इसका तेल कैसे निकाला जाता है?
0: इसका तेल एक बहुत ही साधारण सा प्रणाली है, भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन, उससे निकाला जाता है। इसमें पौधों के से होके भाप गुजरता है और जैसे वो जाता है वो उसका सुगंधित तेल को भी साथ में लेते हुए जाता है। बाद में ये फिर कंडेंसर यानी संघनक में तेल और पानी अलग अलग किया जाता है।
1: लेमन ग्रास के तेल की हम बात करें तो इनकी मांग कहाँ कहाँ, किस किस क्षेत्र में इसकी मांग है?
0: आजकल देखिए प्राकृतिक और हर्बल उत्पादों की मांग पूरी दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। ऐसे में लेमन ग्रास की कई उद्योगों में उपयोग है। सबसे पहले तो कॉस्मेटिक उद्योग में इसका उपयोग साबुन, शैम्पू और अन्य सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाने के लिए होती है। दूसरा उसका उपयोग परफ्यूमरी इंडस्ट्री में होती है, जहाँ पे रूम फ्रेशनर, मच्छर भगाने वाली स्प्रे इत्यादि बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। साथ ही एरोमाथेरेपी और वेलनेस सेक्टर में भी इसका काफी उपयोग है। देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी लेमन ग्रास ऑयल का मांग बढ़ती जा रही है।
1: लेमन ग्रास तेल के अलावा और क्या क्या इसका हम लोग उत्पाद निकाल सकते हैं, बना सकते हैं?
0: कई प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। इसके पत्तों को छाया में सुखा के छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फिर इसकी पैकेजिंग करके उसे हर्बल टी के तौर पे बेचा जा सकता है, जिसकी आजकल कई ज्यादा मांग है। इसके अलावा लेमन ग्रास तेल का प्राकृतिक रूम फ्रेशनर, फिनाइल, मच्छर भगाने वाले स्प्रे, सुगंधित अगरबत्ती और अन्य हर्बल उत्पाद के निर्माण में भी किया जा सकता है।
1: तो मैडम इसका तो हम लोग जैसे बहुत सारे महिलाएं चाहे स्वयं सहायता समूह इस पे कार्य कर सकते हैं, इसकी भूमिका हो सकती है इसमें?
0: जी बिल्कुल, जो हमारे स्वयं सहायता समूह के महिलाएं और सखी मंडली इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे समूह बनाकर इससे हर्बल टी, अगरबत्ती, मोमबत्ती इत्यादि विभिन्न उत्पाद बना के उसकी मार्केटिंग, पैकेजिंग इत्यादि समूह के साथ कर सकते हैं। साथ ही ये लोग सामूहिक रूप में तेल निष्कर्षण इकाई का भी स्थापना कर सकते हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है और नए नए अवसर उनके लिए उत्पन्न हो सकते हैं।
1: बहुत सारे किसान भाई हमारी बातों को सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम लेमन ग्रास की खेती करें तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, किसे संपर्क करें वो?
0: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही कृषि विभाग, उद्योग विभाग तथा उद्यानिकी विभाग और अन्य संबंधित विभागों में जाके इच्छुक किसान उपलब्ध योजना, अनुदान इत्यादि की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारा संस्थान राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान इच्छुक किसान, किसान समूह, FPO और SSG को इस दिशा में मार्गदर्शन, तकनीकी प्रशिक्षण तथा विशेषज्ञों के साथ जो लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं उनके साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता कर सकता है।
1: लेमन ग्रास की खेती और उत्पादन के संबंध में कुछ सुझाव दें।
0: जी मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बोलना चाहूंगी। पहली बात, हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले और प्रमाणित स्रोत से ही लेमन ग्रास का रोपण सामग्री का चयन करें। दूसरी बात, इसकी कटाई कभी भी बरसात वाले दिन में ना करें, अच्छी धूप वाले दिन में इसकी कटाई करें, इससे तेल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। तीसरी बात, इसकी कटाई के बाद घास को कुछ समय के लिए, करीब एक दिन के लिए, उसको मुरझाने के लिए छाया में छोड़ दिया जाना चाहिए। उससे तेल निष्कर्षण में आसानी होती है और ज्यादा मात्रा में तेल निष्कर्षण हो सकता है। साथ ही आसवन इकाई, टंकी, पाइप इत्यादि की स्वच्छता के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केवल उत्पादन तक किसानों को सीमित नहीं रहना चाहिए, मूल्य संवर्धन और बाजार से जुड़ने पर भी ध्यान देना चाहिए।
1: अंत में हमारे किसान भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा संदेश यही है कि खेती को केवल उत्पादन तक सीमित ना रखें, इसे एक उद्यम के तौर पर देखें। झारखंड की टांड भूमि और कम उपयोग में आने वाली जमीन पर लेमन ग्रास जैसी फसलें आय बढ़ाने का अच्छा अवसर।

0: अवसर प्रदान कर सकती हैं। खेती के साथ साथ प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन से भी ध्यान दें, क्योंकि इसी से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। और यदि किसी किसान या समूह को तकनीकी जानकारी, प्रशिक्षण या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हमारा संस्थान हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर है।
1: तो किसान भाई, आज आपने जाना कि लेमन ग्रास क्या है, इसकी खेती हम कैसे कर सकते हैं और इस लेमन ग्रास से हम किस किस तरह का उत्पाद बना के अपना पैसा कमा सकते हैं, अपने आय को बढ़ा सकते हैं। तो इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अर्चना महापात्रा। महापात्रा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार
0: जी। जोहार, धन्यवाद।
1: तो किसान भाई, आज के लिए बस इतना ही, दूसरे दिन फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।
2: तो एखन हमारे मन सुनत रही आज कर बात में लेमन ग्रास कर खेती और मूल्य संवर्धन कर अवसर, और इके बतात रहे विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना महापात्रा और इनकर से गोठियाए रहे मनोज कुमार।
3: तो आओ अब आगे गीत सुनत ही, देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावल गीत।
2: तो चलो सुनी ला।

0: एखन हमरे मन देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावली गीत के सुन ली।
1: तो अब हमरे मन नवा उम्र कर नवा फसल में गाय और बकरी पालक किसान कमला उरांव से करल भेंट के सुनी ला, और इनकर से हमरे कर संगी गोठियाए हैं कृष्णीवन पौराणिक।
0: किसान भाई बहन मने आज हमर स्टूडियो में एगो महिला किसान है कमला उरांव, ये गाय पालन भी करे ना बकरी पालन भी करे ना, तो आओ आज इनकर से जानकारी कर थी कि ये कैसे कैसे गाय और बकरी के पालन करे ना से कर बारे में। तो कमला बहन रौर के जोहार कर थी।
2: जोहार।
0: तो रौर रह वाला कहाँ कर की?
2: हम है कि चितरकोटा बड़का टोली के रह की।
0: तो कमला बहन रौर का करी ले खन?
2: हम गाय बकरी यह सब के पाली ला और हमारे छुआ पुता कर जीविका चलाई ला।
0: अच्छा अच्छा, तो रौरे गाय पोसा थी बकरी पोसा थी, तो रौर के ये सब काम करे कर प्रेरणा कहाँ से मिला?
2: हम तो ऐसे भी रही लेकिन अब आदमी कर देखा इस गाने हम देखा थी कि सब देखा थी कि अब खेती बाड़ी में भी करी ला तो भी अकेला ने परेशान हो गया, बकरी पाला थी तो बकरी ने भी हमके बुझा थे कि चल भाई खेत बाड़ी में भी करब और बकरी में भी करब, तो खेत बाड़ी तो नहीं होगी तो बकरी के काटो के बेच ली तो छुआ पुता ले फीस फास देवे हो जाए, कोई के हम बकरियो रख ली और अब उसने छुआ पुता के पढ़ा ली लिखा ली।
0: तो रौरे एखन पढ़ल लिखल कतना ही?
2: बगरा तो नहीं पढ़ी, आठे क्लास पढ़ी।
0: तो एखन रौठना कतना गाय है?
2: गाय तो हमारे जगह एखन 13 गो है।
0: 13 गो है, और छगरी मने?
2: छगरी भी एखन हमारे जगह 25 गो है।
0: अच्छा, तो सबसे पहले बताओ कि रौरे गाय जब पोसी कैसे कैसे उकर रख रखाव करत थी?
2: हम गाय के तो रखा थी, अब एखन जैसे उकर शेड बना ली, शेड बनाए कि उकर शेड में हम बढ़िया सुके प्लस्तर जो करम से लखे ढलवाए दिली है और उकर में अब बढ़िया से रखा थी, और एखन आधा दुधारू है आधा गभिन है तो जैसे है वैसने वैसन रखी लगर बाद दुधारू के अलग रखी ला और गभिन के अलग रखी ला और बछरा बछरू के भी उके अलग रखी ला, सब को अलग अलग रख के फिर हम दूध माने दूही ला तब फिर गुहार से निकला के धूप दाने तानी कनु कर ले रखेल बना ही ओहे जगन रखी ला।
0: गाय के रौरे शुरू शुरू पोसली तो शुरू में रौरे कई गो गाय के रख ली?
2: रखे तो कमे रख रही पहले, जब हम के ऊपर से लाभ हुए लाग लग तब हम कहली कि अब इकरे हमारे है नौकरी हके, अब हम इकहे बढ़ाब और इकरे से हमार जीविका के चलाब, कह के हम ऊपर ने लाइक गेली।
0: अच्छा, दूध बढ़ावे खातिर और का करे ले गाय का?
2: कैल्शियम खियाई ला, दर्रा देवी ला, चोकर देवी ला और जो है घास देवी ला, कुटी देवी ला।
0: तो ये सब कर व्यवस्था कहाँ से हो?
2: कुटी तो अपन घरे न हो और ये सब कैल्शियम मन के मन के तो कीनी ला, किन एक चीज के तो कीन लेवी ला, दर्रा चोकर माने पोरा पतुर तो हमारे जगह है पोरा माने से के कुटी काट के दे देवी ला कटुआई ला मशीन से उकर खाए के लिए सब करे उकर ले डाड़का जैसन बनाल गए है, वह डाड़का ने बोथ देवी ला पानी मशीन से पानी के ले गई और साइन देवी ला उकरे में सब चीज के चोकर भेलक दर्रा भेलक ये सब के।
0: और कौन कौन सा बीमारी हो गाय में?
2: बहुत बीमारी हो उकर में, खुरहा होवेला, फोड़ा फुंसी भी होवेला, कभी चपका भी हो जाएला।
0: और ये सब कर उपचार का तरी करी ला?
2: अब हमीन तो देखी ला आँख में तब कैसे अभी ऐसा होला कह के हमें अनुभव लगाए ले और हमें डॉक्टर के बुलाए ले ला।
0: डॉक्टर के कहाँ से बुलावी ला?
2: आवाए ना डॉक्टर मन फोन नंबर दे रखा है ना।
0: ब्लॉक बटे से कोई सुविधा है कि नहीं?
2: ब्लॉक बटे से भी आवाए ना।
0: ये सब जब बीमारी हो ला तो रौरे जैसे बता ले खुरहा हो ला चपका हो ला, और हम सुन ही कि थाने में दूध फाट जाए ला,
2: थनाइल हो जाए ला,
0: थनाइल उखे कहे ना नहीं?
2: हाँ, थनाइल।
0: उकर और उपचार कैसे करे ले? और मान लो कि जैसे डॉक्टर मन अगर नहीं आना है तो घरेलू उपचार जैसे देहाती उपचार भी कुछ कुछ हो ला, तो उकर उपचार कैसे करे सके किसान भाई बहन मन के बताए?
2: थनाइल होल कर बाद ने हुआ हमके पता चल जाए दूही ला तो थोड़े हल्का खून में आवेला। अच्छा, थनाइल अच्छा। होल में खून आवेल तब कहब कि हम अरे ये तो थनाइल हो गया, कह के फिर हम हुआ

0: सोडा देवीला और जवाइन इके डबकाइले और हरदी इतना चीज के डबकाए के देवीला तीन सांस तक देली तो साफ हो जाएला।
1: अच्छा अच्छा, बिना डॉक्टरे करी घरेलू दवाई से?
0: हाँ घरेलू दवाई है।
1: अब कितना दिन पियावे के होलो?
0: तीन दिन में।
1: हाँ तीन दिन में खत्म?
0: तीन दिन में खत्म नहीं होलक, चार दिन पांच दिन पिया दे, कोई दिक्कत ना खे।
1: और जैसे खुरहा चपका जो होले सेकर का उपचार करी ले?
0: खुरहा चपका कर तो अब खुरहा कर तो अब उके तो कादो में लगा लो, ठीक नहीं हो भी होले का करब, वो धीरे धीरे अपने भी ठीक हो गए ला। कादो मन में लगाई ला खुरहा हो गए होले
1: तो देहाती दवाई हो गई।
0: हाँ देहाती दवाई है।
1: और छगरी एखन ठिनक कै गो है?
0: 25 गो है।
1: 25 गो तो 25 गो छगरी के राखे कर का व्यवस्था कर?
0: उकर घर बनाए दे ही एक ठो।
1: का तेरी घर बनाए?
0: घर ऐसे रहक लखे घर बनाए ही कर में, और चाइरो कोना माने की पटरा बनाए दे, पटरा ने बैठेला।
1: अच्छा पटरा में बैठे?
0: हाँ बांस का ठटसा पटरा बनाए दे ही, तो उकरे ने जाए जाए के बैठे ना, और नीचे रहल से मन के सबके बढ़ेर सोढ़ेर के गोबर के बिहान के निकला ले विला।
1: अच्छा बकरी कर जैसे बैठे कुठे कर व्यवस्था रहे ला? बकरी मने जैसे पेशाब कर दल पैखाना कर दल
0: वो तो नीचे गिर जाए।
1: वो नीचे गिर जाए तो सह खातिर और जाली जैसा उनके बांस कर पटरा बनाए है ना।
0: हाँ।
1: और एखन छगरी मने कतना मने दूध उध देवा है ना कि नहीं?
0: छगरी कर दूध तो तब बच्चा पी जाए ला। एखन सात गो है अथी ढाइड़।
1: हाँ हाँ।
0: और खांसी है।
1: अच्छा अच्छा।
0: 8-9 गो बढ़ल है खांसी एखनो हमार।
1: तो छगरी कर दूध तो बहुत पौष्टिकारक हो ला, तो
0: लेकिन नहीं दुहिला?
1: नहीं दुहिला
0: नहीं, उकर बच्चा मन पी जाना।
1: और छगरी में कौन कौन बीमारी हो ला?
0: उकरो ने बहुत बीमारी आवेला।
1: कौन कौन बीमारी?
0: एखन भी एखन हमार छगरी एक बड़का गो इतना गो खांसी है, उकर टोटा लाली एकदम गिल्ठी हो गया के, वो गिल्ठी के हम ठीक करे नहीं पा रहा थी। अब अब डॉक्टर के बुला ली तो वो नापलक तो बुखार है कहलक, तो बुखार है कहलक और सुई दे दे है, तो यो ठीक न होवत है और मुंह बटे से लार चुए लागल है एखनो ले।
1: अच्छा ये तो हो गए लग, लेकिन छगरी मन में देखी लेकिन बहुत ढीला मन भी हो जाए कभी कभी।
0: ढीला होवे ला
1: तो उकर उकर उपचार और का तरी करी ला?
0: उकर है उपचार करी ला, कोई बीज दुकान में भी बेचाए ना, वो पाउडर मन के लानबे और माखबे, वो भी ठीक करे ला। खैनी डटी है उके डबकाए के नहुआ देवे, वो भी ठीक करे। एखन जैसे कि उकर हो गेलक खुरहा और घाव घोस हो गेलक, उकर चपका भी हो गेलक, तो उकर में नीम कर पत्ते के डबकाए के पियाए देवीला, वो भी काम करेला।
1: तो चलो रे गाय भी पोसली है छगरी भी पोसली है, तो इस सब में रौर की आमदनी कितना हो जाएगा?
0: इकर में तो आमदनी हमके तब लाभ में अलग से हम नहीं छोड़ा थी। अब एक ठो गाय एखन देवी 6 किलो, शाम के देवी 5 किलो, तो अब एखन उकर में तो हमके जत भी पैसा हमके एखन आधा के डेयरी में देवा थी सेंटर बटे, और आधा के गांव घर में देवा थी। गांव घर कर पैसा तो दिसेला, अब हुने कर तो अकाउंट में जाएला सेंटर धन का सेल, गांव बटे तो 40-45 देवी ला, तो एखन महीना ना आवेला हमके तो एगो गाय में 7,000
1: महीना।
0: हाँ
1: अच्छा तो बहुत बढ़िया है। और छगरी मन से कैसे आमदनी करी लो रे?
0: छगरी तो तब जैसे खांसी बाढ़े ला तो बेची ला, तो वो भी आजकल तो कम रेट में नहीं मिले ला। 20,000
1: एगो छगरी?
0: एक छगरी कर तो एगो छगरी बेचब तो 20,000 तावी। अगर कोई जगह कोई किसीम कर अगर हमार के कमी हो गेलक पैसा कर जरूरत होलक, तो तुरंत आवे ना किनवैया से मन ले बेच देवी ला, तो हमके हो जाए ला।
1: और छगरी भी पोसली और गाय भी पोसली है, और इकर से बहुत बढ़िया रौरे आमदनी कर थी। अपन बट्टे से आखिरी में किसान भाई बहन मन के कुछ संदेश देवे चाहब?
0: देव?
1: हाँ
0: हमारे किसान भाई बहन मने सब कोई स्नेह काम के करबा, काहे कि नहीं करबा तो तू इनके आदमी कर करे जाबा तो धांगर बनबा, अपन काम करबा तो तुहन अपन शान में तुहन अपन किसाने बहन के रहबा, सेल अपन काम के जरूर करबा तोहिन, छगरी भी पालबा गाय भी पालबा, एक ठो रही तैयो किसान बनबा, दू ठो रही तैयो किसाने बनबा, सेली काम के तोहिन के जरूर करे खाए हमार बहिन मन के। ये बहिने मन कर गाय पालन और बकरी पालन हके, काहे कि बकरी से तोहिन छुआ पुता के फीस देवेल कमी हो गेलक, तो एक ठो बकरी के बेचला तो फीस देवेल हो जाए, जूता फाट गेलक तैयो किने ले होवी, बैग फाटलक तैयो किने ले होवी, सेले ये काम के जरूर हमार महिला बहिन मन करबाए। हम तो यह सबके कर के हमार छुआ पुता के सबके पढ़ाए दिली, तो हमार बटे से अब इतने है, हम तो बात के बताब।
1: कमला बहन रौरे हमार स्टूडियो में आली और बहुत बढ़िया गाय पोसे कर बारे में और बकरी पालन

0: कर बारे में, बकरी पोसे कर बारे में रावर बहुत बढ़िया जानकारी दिली। रावर के बहुत बहुत धन्यवाद है, जोहार।
1: धन्यवाद, जोहार।
2: तो एखन हमरा में सुनत रही गाय और बकरी पालक किसान कमला उराव से भेंट और इनकर से गोठिया रहे हमारे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: तो इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक। ये कार्यक्रम के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
2: और प्रस्तुति रहे प्रभु शरणकर।

0: हमारे दुनिया कार्यक्रम सुनो या सो भाई बहन मन के एक बार फिर से कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णुकर जोहार। और कहो का हाल समाचार है भाई?
0: हाल समाचार तो बढ़िया है, अपन सुनाओ।
1: हमारे बटे भी नगद है।
0: का नगद है सके बताओ?
1: हमारे बटे तो एखन का कहा आस पास पड़ोस मने सब कोई एक दूसरे कर मदद करत हैं और खेती बाड़ी भी लागत है। कने कोनो जान गढ़ा दोइन मन में भी रोपा मन भी रोपात है।
0: तो भाई एक दूसरे कर आसपास में मदद करल से बहुत बढ़िया रहे ला। काले कि जे अच्छा पड़ोसी होए न वह सच्चा मित्र भी होए,
1: है ना? देखो और सब्जी मन भी तोड़े खोए जैसे मरचाई मने खन निकला थे तो पड़ोसी मने दिन साथ देवाए ना।
0: हाँ।
1: उन्होंने जाए ना खेत बाड़ी में तो वह मने तोड़ तोड़ा ना कहे कि कुछ भी काम होए ला जैसे दुख में भी और सुख में भी हमेशा हर घड़ी उमने आसे पास कर बेस से काम करें ना और साथे साथ है सब चीज मदद भी करें ना से ले बहुत बेस लागेला।
0: तो भाई अब उतरे गोठिया थे और कार्यक्रम के आगे बढ़ा थे नागपुरी लोकगीत से
1: एकदम
0: एक गाय हैं सरिता देवी और संगीमन,
1: तो चलो सुनीला।

0: तो एखन हमारे मन सुनत रही नागपुरी लोकगीत सरिता देवी और संगी मनकर गावल। और आज हिंदी वार्ता कर बात है तो आज सशक्तिकरण नारी सबल समाज और इके बतावे वार्ताकार सुष्मिता पौराणिक। तो चलो इनके सुनी ला।
1: हमारे देश के विकास में महिलाओं को सहभागी बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार ने देश में महिलाओं की स्थिति सुधारने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2001 में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति जारी की। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति को केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2001 को मंजूरी प्रदान की थी। इसके महत्वपूर्ण बिंदु महिलाओं को देश में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में बराबर की भागीदारी बनाना, मानव अधिकारों का उपयोग करना और पुरुषों के साथ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और नागरिक आदि क्षेत्रों में आधारभूत स्वतंत्रता की समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित करना, महिलाओं के प्रति किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करने के लिए कानूनी प्रणाली एवं सामुदायिक प्रक्रिया विकसित करना, महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण तैयार करना कि वे यह महसूस कर सके कि वे आर्थिक एवं सामाजिक नीतियां बनाने में शामिल हों। समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने के लिए महिलाओं और पुरुषों का समाज में बराबर भागीदारी निभाने को बढ़ावा देना, महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करना, महिला और बालिका अपराध के किसी भी रूप में व्यापक असमानता को दूर करना। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। पतंजलि और कात्यायनी जैसे प्राचीन भारतीय व्याकरणविदों का कहना है कि प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद और उपनिषद जैसे ग्रंथ कई महिला साध्वियों और संतों के बारे में बताते हैं, जिनमें गार्गी और मैत्रेय के नाम उल्लेखनीय हैं। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आई, जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक सामाजिक जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं का विकास हमारी आयोजना का केंद्र विषय रहा है, परंतु पिछले 20 वर्षों से कई नीतिगत बदलाव आए हैं। 1970 के दशक में जहां कल्याण की अवधारणा अपनाई गई, वहीं 1980 के दशक में विकास पर जोर दिया गया। 1990 के दशक में महिला अधिकारिता यानी सशक्तिकरण पर जोर देने के साथ ही यह प्रयास किया गया कि महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो और नीति निर्माण के स्तर पर भी उनकी सहभागिता रहे। भारतीय संविधान द्वारा कानूनों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सामान्य जीवन में उनकी समान भागीदारी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला साक्षरता दर भी 2011 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 65% बढ़ी है और वे देश में शीर्ष पदों पर कार्य कर रही हैं। राष्ट्र के समग्र विकास तथा उसके निर्माण में महिलाओं का लेखा जोखा और उनके योगदान का दायरा असीमित है, तथापि देश में चहुमुखी विकास तथा समाज में अपनी भागीदारी को उसने सशक्त ढंग से पूरा किया है। अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता कायम रखते हुए वे पुरुषों से भी 4 कदम आगे निकल गई हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे आज कई महिलाएं ऊर्जावान नेतृत्व से अपने स्थानीय परिवेश में परिवर्तन ला रही हैं। जहां एक ओर भारतीय महिलाएं विधि, अकादमिक, साहित्य, संगीत, नृत्य, खेल, मीडिया, उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं, प्रक्षेपास्त्र अग्नि 5 के सफल परीक्षण के बाद महिला वैज्ञानिक टेसी थॉमस की मुख्य भूमिका उभरकर सामने आई है। मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम के प्रमुख शिष्य रही डॉक्टर थॉमस को भी इस परीक्षण के बाद मिसाइल वुमेन अथवा अग्निपुत्री नामों से संबोधित किया जाने लगा है। मिसाइल कार्यक्रम का संपूर्ण नेतृत्व संभालने वाले वे देश की पहली महिला वैज्ञानिक बन गई है। राजनीतिक और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विजयलक्ष्मी पंडित ने 1946, 1947, 1950, और 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1953 से 1954 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्य भी रही। 1962 से 1964 में महाराष्ट्र की राज्यपाल और 1964 से 1966 तक लोकसभा के सदस्य रहे। कुलसुम जे सायानी ने 1957 में यूनेस्को के तत्वावधान में हुए प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें 1959 में समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा 1969 में नेहरू साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैनब बेगम 1972 में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई तथा कई वर्षों तक वे जिला कांग्रेस कमेटी श्रीनगर की अध्यक्ष रही। उन्होंने पिछड़ी हुई जातियों के लिए 27 वर्ष तक निरंतर कार्य किया। वर्तमान में भी महिलाएं दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में महापौर, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और सांसदों के पद पर आसीन हो देश की प्रगति के लिए कार्यशील है। देश के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों से भी महिलाएं विभिन्न पदों पर आसीन हैं। महिलाओं की स्थिति में लगातार परिवर्तन को देश में महिलाओं द्वारा हासिल उपलब्धियों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है, जैसे प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट टीम कप्तान शांता रंगा स्वामी रही हैं, भारत की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू रही हैं। नारीवादी आंदोलनों और सरकारी प्रयासों में महिलाओं के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आजादी की पैरवी की जाती है। यह संपूर्ण सशक्तिकरण की अवधारणा के लिए सर्वथा उचित भी है। आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता जैसे विभिन्न बुनियादों पहलुओं पर जनमानस को बदलने का काम किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिंग समानता का सिद्धांत अंतर्निहित है। महिलाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण कुछ मनोवैज्ञानिक भ्रम का शिकार है। पुरुषत्व की श्रेष्ठता का भान होना भी उसी का एक रूप है, लेकिन अगर पिछले 3 से 4 पीढ़ियों का लेखा जोखा देखें तो इस सोच में बदलाव भी आए हैं। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाते हुए महिलाओं के असल मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जो हमारे अवचेतन में भी शामिल कर दिए गए हैं। ये सभी मुद्दे सांस्कृतिक और सामाजिक हैं, जिन पर नए सिरे से मंथन किया जाना चाहिए। आज की स्थितियों से यह स्पष्ट है कि इस तरह समस्या कानूनी कम और सामाजिक ज्यादा है। इस सामाजिक मानसिकता को बदलने का जिम्मा देश के वर्तमान युवा पीढ़ी को ही उठाना होगा, जो कथित रूप से साक्षर तो है पर इन सब बातों से जिसके शिक्षित होने पर प्रश्न चिन्ह लगा है।
2: तो एखन हमरे मने जानकारी कर ली सशक्त नारी सबल समाज के बारे में, इके जानकारी देवत रहे सुष्मिता पौराणिक। अब आओ एगो कुरमाली में लोकगीत सुनत ही राजेंद्र प्रसाद महतो संगी मनकर गावल।
0: तो चलो सुनीला।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा

0: ठानि के और दुख के झेले के लिए हमरे के सकारात्मक सोच होके चाही, ताकि हमारे मन उ दुख कर समय में धीर धैर के और आगे बढ़ सकीला।
1: हाँ, और सकारात्मक सोच रखब नहीं तो सब काम जे से सकारात्मक हुई। बहुत कोई ऐसा पहले काम करे से पहले सोचे लग में ये काम हुई कि नहीं हुई, ऐसा हुई उसन हुई, नकारात्मक सोचे लगे ना ओकर से सारा काम बिगड़ जाए, है ना। तो इसलिए सकारात्मक सोच रखे के चाहिए।
0: और अपन साथे ऐसन संग दोस्ती मन के भी रखे के चाहिए जे कि रौरे का चाहे हमरे कर हर मुसीबत में मदद करी, और रौरे अगर नकारात्मक हुआ थी ऊ बेरा भी ऊ सकारात्मक सोच से हमरे के भर देवी, ऐसन संग साथी जीवन में होवे के चाहिए।
1: बहुत बढ़िया। तो चलो अब बेरा हुआ थे तो सुनो या भाई बहन मने, अब कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: विष्णु भाई के और
1: देव विदा जोहार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब

17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टैक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया रोडमैप। 1150 करोड़ का निवेश रोडमैप तैयार। राज्य में SIR की प्रक्रिया जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया, अब तक 82% से अधिक मतदाताओं का हुआ मैपिंग। रथ मेले की तैयारियां तेज। पुलिस महानिदेशक ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष से मिले RIMS-2 निर्माण से प्रभावित रैयत, समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। और सरायकेला खरसावा जिले में CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। कोल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने झारखंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन का आखिरी दिन आज राज्य सरकार ने विजन 2050 और प्रस्तावित AI नीति 2026-31 का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1,150 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य में AI आधारित डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में असफल रहने का आरोप लगाया है। श्री वर्मा ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्टार्टअप इंडिया में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया।
1: प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार या ये कहें कि मुख्यमंत्री जी झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर सबसे बड़ा धोखा कोई एक होता है तो वो होता है सपना दिखाना और फिर उस सपने को तोड़ देना।
0: राज्य में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत BLO द्वारा मतदाताओं से ई न्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है। राज्य के मुख्य

0: निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्तमान में 82% से अधिक मतदाताओं का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। इधर राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की है।
1: बीएलओ को जो कार्य करना चाहिए वो घर घर जाने में असमर्थ हैं, साथ ही साथ जिस बूथ के बीएलओ हैं वहीं पर आम मतदाता को बुला करके फॉर्म देने का काम कर रहे हैं। आयोग का ये कहना है अगर बीएलओ पर सख्ती नहीं किया गया जो एसआईआर का जो सपना है हमको नहीं लगता है कि वो पूरा होता हुआ दिख रहा है।
0: ऐतिहासिक जगन्नाथ पुर रथ मेले के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में आज रांची में मेले के सफल आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में डीजीपी ने अधिकारियों को मेला क्षेत्र तथा रथ यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ाने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
2: पारंपरिक व्यवस्था है, लग रही है सीसीटीवी रहेंगे, फोर्स रहेगा, लाइट बिजली पानी सबकी व्यवस्था रहेगी और उसमें कोई चीज इमरजेंसी होगा तो उसको भी देखने के लिए हम लोग हैं। मेडिकल कैंप्स रहेंगे, वुमेन सेफ्टी के लिए हम लोग महिला पुलिस तैनात करते हैं।
0: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर लोगों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ झारखंड और बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने फ्रेंचाइजी केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेकर लोग बिजली बिल देने से मुक्त हो सकते हैं और सोलर पैनल से उत्पादित बिजली बेचकर आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकते हैं।
3: पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से 10 किलोवाट तक का जो है सोलर पैनल इन्वर्टर के साथ आपके घर पे लगाने का प्रोविजन है, जिसमें केंद्र सरकार से आपको 78,000 रूपए का सब्सिडी मिल जाता है। 78,000 का आपको सब्सिडी मिलता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा और तो दूसरा फायदा है कि जो पावर कट का झंझट जो है उससे भी आप मुक्त कर पाएंगे।
0: झारखंड उच्च न्यायालय में आज जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए।
4: युद्ध पर सरकार अड़ी हुई है, जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है वही लोग आने वाला सरकार को लोग उजाड़ देगी। और यह खेती की जमीन आदिवासियों की है और आप हॉस्पिटल के नाम से जबरदस्ती आप उसको छीन रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ दीजिए।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह की लगभग 66 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। गौरतलब है कि ईडी ने जमीन कारोबारी द्वारा जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान यह पाया था कि वह कांके और नगड़ी अंचल में 66 एकड़ जमीन में से कुछ का फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया है। इससे पहले जांच के बाद कारोबारी सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और जाँच जारी है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने आज 78वां स्थापना दिवस

0: मनाया। इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची के मोराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता राजेश कृष्णन ने कहा कि एबीवीपी का इतिहास गौरवशाली रहा है और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
1: आज अगर देश हमारा जिस जगह पर खड़ा है, मुझे ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हक और योगदान एबीपी है। इसका सामाजिक सुधार, इसका नेशनल कंट्रीब्यूशन और सामाजिक संरचना में उसी जो दंगता रही, गहरे विचार से आज समाज का हर व्यक्ति हर फर्म विकास की ओर जा रहा है।
0: उधर हजारीबाग में एबीवीपी के स्थापना दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रांची महानगर कांग्रेस छात्रों की गूंज मुहिम के तहत 12 जुलाई को रांची में छात्र मैराथन का आयोजन करेगा। मोराबादी मैदान में आयोजित इस मैराथन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेंगे। मैराथन के संयोजक कुमार राजा ने अधिक से अधिक छात्रों को इसमें शामिल होने की अपील की है।
2: कैंपेन का मंशा ही यही है, उनको बताएं कि किस तरीके से उनके भविष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम चिंतित हैं और आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर लीक मुक्त परीक्षा मिले। दूसरा है भर्ती परीक्षा का भी कैलेंडर आए और छात्र को पता रहे कि किस समय पे कौन सी परीक्षा होने वाली है, जिससे उसको भी नौकरी में भर्ती मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान की परिकल्पना को जमीनी स्तर पर साकार करते हुए सरायकेला खरसावां जिले के जेवियर स्कूल परिसर में आज से CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। 2 दिवसीय इस खेल महाकुंभ में कुल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया रोडमैप। 1150 करोड़ का निवेश रोडमैप तैयार। राज्य में SIR की प्रक्रिया जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया अब तक 82% से अधिक मतदाताओं का हुआ मैपिंग। रथ मेले की तैयारियां तेज। पुलिस महानिदेशक ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष से मिले RIMS-2 निर्माण से प्रभावित रैयत, समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। और सरायकेला खरसावां जिले में CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। कोल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: बोकारो जिले में SIR के तहत मतदाता गणना प्रपत्र का वितरण युद्ध स्तर पर चल रहा है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, बोकारो स्टील सिटी शहरी क्षेत्र के मतदाता BLO को सहयोग नहीं कर रहे हैं। उपायुक्त ने सभी से सहयोग करने की अपील की है।
2: हमारा उद्देश्य है कि जो भी बोकारो के नागरिक हैं, कोई भी नागरिक इसमें छूटे नहीं। सभी नागरिकों से भी अपील है कि BLO को 1,000-1,200 लोगों को तक जाना है। अगर वो आपके पास जा रहे हैं, स्पेशली मैं देख रहा हूँ BS सिटी के क्षेत्र में दो दो घंटे वेट करा रहे हैं, कह रहे हैं 1 घंटे के बाद आइए, 2 घंटे बाद आइए, ऐसा मत करिए। आप उनको इंतजार मत कराइए, वो अपना सब काम छोड़कर आपके पास आए हैं आपका मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए, उसको SIR की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए।
1: बरसात के दिनों में हाथियों का झुंड भोजन की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाता है। वन पदाधिकारी संदीप सिंधे ने गोमिया प्रखंड के ग्रामीणों को खासकर रात में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है।

0: बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में 30 हाथियों के झुंड की होने की सूचना है। ये जो झुंड है अभी फिलहाल बड़की पुन्नू गोपो पालू कुसुमडी कानीडी एरिया में पाया गया है और इनके मूवमेंट की वजह से ये छितरा भी गया है और दो तीन अलग अलग झुंड में ये देखा जा रहा है। इस झुंड में बताते चले आपको कि 2 से 3 गर्भवती जो हथनिया है इस वजह से ये झुंड आक्रामक होने की संभावना है। खास तौर पर इसी वजह से एहतियात रखने की हम आपके माध्यम से ही सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि झुंड के पास ना जाए, सेल्फी लेने पास में ना जाए और जो रात के समय में भी अपने घर से बाहर ना निकले। आप कोई वन क्षेत्र में कोई गाड़ी या वाहन लेकर लाइट लेकर वहां ना जाए।
1: बोकारो स्टील सिटी के मोहन कुमार मंगलम में स्टेडियम में 18 से 27 अगस्त तक राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता होने जा रहा है। राष्ट्रीय तीरंदाज बोकारो जिला तीरंदाजी संघ की महासचिव एंजेला सिंह ने कहा, इस प्रतियोगिता से स्थानीय खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
2: बोकारो में नेशनल हो जाना भी हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। इतना दिन के बाद हम लोग ने इस बार सर का थ्रू से ट्राई, सर ने बोले कि हम बोकारो कर सकते हैं। उनपे अरुण मुंडा जी और हमारा सेक्रेटरी पूर्णिमा महतो जी ने साथ दिए, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग का झारखंड का गौरव दीपिका जी जो आ ही रही है और जितना बेस्ट प्लेयर सब है जो हम लोग अभी ओलंपिक में जितना अभी जो खेलने गए वर्ल्ड कप में जो मेडल जितना लोग लाए हैं सब आ रहे हैं।
1: नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान उपायुक्त अजय नाथ झा ने बच्चों को नशा से दूर रहने की नसीहत दी है।
3: ऐसी चीजों के प्रलोभन से दूर रहते हुए उस समय इमोशनली स्ट्रांग होते हुए और अपने लक्ष्य पर केंद्रित करते हुए कि आप देश के एक इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स है, उस दृष्टि से आप सोचते हुए कि हमको देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है, अपने परिवार समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना है, नशे के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये एक ऐसी चीज है कि एक बार आपने गलती से हाँ कर दिया तो निकलने का रास्ता बहुत कठिन है। इसलिए स्पष्ट रूप से हमारा मैसेज है कि नशा के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हों।
1: पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान खुश हैं। जिले के किसान कृषि कार्य में जुट गए हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
4: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे संथाली भाषा में।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखाड़ा संथाली भाषा में। प्रस्तुतकर्ता थे गौरव कुमार पांडे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स तथा FM 100.5 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:45 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर भारती संस्कृत वार्ता स्वरचित कविता पाठ। आज हम सुनेंगे, वार्ताकार हैं शैलेंद्र मिश्र।
1: आद्या कविता अस्ति पाद पद्माश्रयम् देहि मे शारदे वाणी वीणाधरे मंगल प्रेक्षणे कच्छपी राग झंकार सौख्य प्रदे वाणी वीणाधरे मंगल प्रेक्षणे कच्छपी राग झंकार सौख्य प्रदे शास्त्र संसार सिद्धि प्रदेशारदे पाद पद्माश्रयम् देहि मे शारदे ब्रह्म बोधाश्रये जाड्यमान्द्यापहे ज्योतिराधारभूते तमिश्रापहे

दे। चारु चैतन्य वाग्वल्लरी वर्धिनी शारदीन्दुद्युतिस्फाटिकस्रग्धरे चारु चैतन्य वाग्वल्लरी वर्धिनी शारदीन्दुद्युतिस्फाटिकस्रग्धरे ज्ञानमंदाकिनी।

दिव्यचञ्चद्विपञ्चीतरङ्गाश्रये वेदमन्त्रार्चिते रम्यगीताञ्चिते दिव्यचञ्चद्विपञ्चीतरङ्गाश्रये वेदमन्त्रार्चिते रम्यगीताञ्चिते वर्णशब्दध्वनिध्वन्यमाने शुभे पादपद्माश्रयं देहि मे शारदे वारि निर्लिप्त शुक्लारविन्दासने कृष्ण विज्ञान विद्या मनीषाश्रये वारि निर्लिप्त शुक्लारविन्दासने कृष्ण विज्ञान विद्या मनीषाश्रये तत्वपीयूष सार प्रदेशारदे पादपद्माश्रयं देहि मे शारदे।

प्रकाश प्रदे पाद पद्माश्रयं देहि मे शारदे चिन्मयी ज्ञानमूर्ते श्रुति प्रार्थिते भक्तचित्ते निवासं कृपावर्षिणि चिन्मयी ज्ञानमूर्ते श्रुति प्रार्थिते भक्तचित्ते निवासं कृपावर्षिणि ब्रह्मतत्त्वस्वरूपे विधेह्यम्बिके पादपद्माश्रयं देहि मे शारदे सत्पथाशक्तिधर्मानुरागां मतिं भक्तिभावाश्रयां देहि नित्यं मुदा सत्पथाशक्तिधर्मानुरागां मतिं भक्तिभावाश्रयां देहि नित्यं मुदा ज्ञानकल्पद्रुमे सर्वसिद्धिप्रदे पादपद्माश्रयं देहि मे शारदे।

आरदे। द्वितीया कविता अस्ति उपायनी कृतं त्वया। उपायनी कृतं त्वया मधुस्मितं सुवासितं। उपायनी कृतं त्वया मधुस्मितं सुवासितं विहीन सौरभं मनः ममाद्य चंपकी कृतं। विहीन सौरभं मनः ममाद्य चंपकी कृतं। उपायनी कृतं त्वया वचोनुराग रंजितं। उपायनी कृतं त्वया वचोनुराग रंजितं मनोमयूर नीरवं सखे सुषिञ्जिनी कृतं। मनोमयूर नीरवं सखे सुषिञ्जिनी कृतं। उपायनी कृता त्वया सुधा श्रुतास्य माधुरी रसं निपीय मे मनः चकोर मानसायते। उपायनी कृता त्वया सुधा श्रुतास्य माधुरी रसं निपीय मे मनः चकोर मानसायते। उपायनी कृतैस्त्वया मृदुस्मितामृतक्षणै। उपायनी कृतैस्त्वया मृदुस्मितामृतक्षणै कठोर कालखंडितं मनः पुनः समाहितं। हिमांशुहीन यामिनी यदा नरोच

मनोमम तमिश्रसागरे यदा निमज्जितं मनोमम उपायनीकृतस्त्वया नवप्रभातभास्करः उपायनीकृतस्त्वया नवप्रभातभास्करः मनस्तमोवलोक्य मे कलाधरावधीरणी मनस्तमोवलोक्य मे कलाधरावधीरणी उपायनीकृता छविः सुमित्रतानुरागिणी उपायनीकृता छविः सुमित्रतानुरागिणी प्रपंच वंचिताय मे विषर्णचेतसे सखे प्रपंच वंचिताय मे विषर्णचेतसे सखे उपायनीकृतं त्वया रसं मधुक्षितस्मितं उपायनीकृतं त्वया रसं मधुक्षितस्मितं जनाकुलं च निर्जनं मनोवलोक्य निर्धनं जनाकुलं च निर्जनं मनोवलोक्य निर्धनं उपायनीकृतं त्वया सुमित्रताधनं सखे उपायनीकृतं त्वया सुमित्रताधनं सखे उपायनीकृतं त्वया सुमित्रताधनं सखे। अंतिमा कविता अस्ति गंगे शरणागत वत्सले। गिरिसुतापति मौलि विहारिणी सकल संसति मोह विमोचिनी गिरिसुतापति मौलि विहारिणी सकल संसति मोह विमोचिनी धवल निर्मल नीर प्रवाहिणी भगवति प्रणतोस्मि पदाम्बुजे धवल निर्मल नीर प्रवाहिणी भगवति प्रणतोस्मि पदाम्बुजे विषम तारिणी दुर्गति हारिणी भव भयातप संघति नाशिनी विषम तारिणी दुर्गति हारिणी भव भयातप संघति नाशिनी निज कृपा शरणं शुचि देहि मे जननि हे शरणागत वत्सले निज कृपा शरणं शुचि देहि मे जननि हे शरणागत वत्सले अघविनाशिनी पुण्य प्रवाहिणी दुरित दुर्दम पाश विमोचिनी अघविनाशिनी पुण्य प्रवाहिणी दुरित दुर्दम पाश विमोचिनी भगवती हविमुक्ति प्रदायिनी सुरसरिन्मयि देहि कृपाकरं भगवती हविमुक्ति प्रदायिनी सुरसरिन्मयि देहि कृपाकरं असित कज्जल कर्म तरंगिते कलुष कर्म भयंकर सागरे असित कज्जल कर्म तरंगिते कलुष कर्म भयंकर सागरे जगति भीतिमये तमसावृते तुमसि मात इह प्रणताश्रयः जगति भीतिमये तमसावृते तुमसि मात इह प्रणताश्रयः कपट रीति प्रपंच भयाकुले विषमये ज्वलिते शरणं भवे कपट रीति प्रपंच भयाकुले विषमये ज्वलिते शरणं भवे शुचिसुधा समनीर सुशीतले शुचिसुधा समनीर सुशीतले तमसि हे शरणागत वत्सले तमसि हे शरणागत वत्सले हरकपर्दवनाधिनिवासिनी सगरसूनुकलंक विमोचिनी हरकपर्दवनाधिनिवासिनी सगरसूनुकलंक विमोचिनी रजत नीर तरंग सुहासिनी नहि जहीहि प्रदेहि कृपाश्रयम् रजत नीर तरंग सुहासिनी नहि जहीहि प्रदेहि कृपाश्रयम् धवल वीचिरसार्द्र कलेवरे भव भयातप तप्त जनार्चिते धवल वीचिरसार्द्र कलेवरे भव भयातप तप्त जनार्चिते सुरगणैरभिव्यंद्य पदाम्बुजे शिरसि देहि करं करुणाकरे सुरगणैरभिवंद्य पदाम्बुजे शिरसि देहि करं करुणाकरे निखिल भक्त

0: निखिल भक्त हृदम्बुजवासिनी त्रिपथगे त्रिगुणात्मक रूपिणी श्रुति गिरार्चित देव तरंगिणी ऐन तोस्मि कृपा रस वर्षिणी श्रुति गिरार्चित देव तरंगिणी ऐन तोस्मि कृपा रस वर्षिणी ऐन तोस्मि कृपा रस वर्षिणी ऐन तोस्मि कृपा रस वर्षिणी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर भारती, संस्कृत वार्ता स्वरचित कविता पाठ। वार्ताकार थे शैलेंद्र मिश्र।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। कार्यक्रम रजनीगंधा लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी पूजा, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं फिल्म रेडी के इस प्यारे से गीत के साथ। आवाजें तुलसी कुमार और KK की, संगीत सजाया है प्रीतम ने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे कार्यक्रम रजनीगंधा। तो कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म बजरंगी भाईजान से। आवाज़ के की, शब्द रचना कौसर मुनीर का, संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म साथिया से, आवाज सोनू निगम की, संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने, सब तृष्णा गुलजार की।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म राज से, आवाजें सोनू निगम, श्रेया घोषाल और नीरज श्रीधर की। संगीत से सजाया है राजू सिंह ने, सब रचना कुमार की।

अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म लव आजकल से। आवाजें राहत फतेह अली खान और प्रीतम की, संगीत से सजाया है प्रीतम ने सदृश नायशाद कमल का।

और इसी प्यारे से गीत के साथ आज का ये रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मुझे यानी अपनी दोस्त पूजा को दीजिए विदा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। हमारे इस टूरी की घड़ी में 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे पर हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने कल अपनी इंडोनेशिया की यात्रा खत्म करी और कल ही वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर अशोक सज्जनहार। अम्बेसडर सज्जनहार, आकाशवाणी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद
2: अम्बेसडर सज्जनहार। बाकी और पहलुओं पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं, उसके बीच जैसे ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने के बारे में बात की है, तो मौजूदा समय में यानी कि जब हम पश्चिम एशिया में फिर से तनाव देख रहे हैं, तो ये एनर्जी सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है?
3: जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा है, जैसे दीक्षा आपने बताया, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है पूरे विश्व में। बहुत ही उथल पुथल की स्थिति है, बहुत ही अनिश्चितता की स्थिति है। और हमने देखा है, अभी जब से ये फरवरी में युद्ध शुरू हुआ है, तो तब से वहां पर जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, वो वहां से खत्म हो गया है। और जो क्योंकि पूरे विश्व में करीब 20% जो तेल आता है, खुरदरा तेल आता है, क्रूड ऑयल आता है, चाहे वो फिर गैस आती हो LPG, LNG या फिर और भी उसके जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसे कहा जाए फर्टिलाइजर, उर्वरक है, जो कि बहुत ही आवश्यक है फूड सिक्योरिटी के लिए, अलग अलग देशों के लिए, भिन्न देशों के लिए, परंतु पूरे विश्व के लिए। उसके अलावा और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम कहते हैं सल्फर की जरूरत होती है, हीलियम की जरूरत होती है, तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव पदार्थ हैं जो कि जब तेल को रिफाइन किया जाता है तो वो निकलते हैं, तो वो सभी पदार्थ आना बाहर बंद हो गए, और जिससे कि पूरे विश्व को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा फरवरी से लेकर अभी तक, जब तक इसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और फिर हम कल से देख रहे हैं फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। तो इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है सभी देशों के लिए। ऐसे देशों के लिए यकीनन भारत जैसे देश हैं जो कि हम करीब 90% अपनी ऊर्जा बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है जो दोनों भारत ने और ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर एक समझौता किया है। अब जो

0: एनर्जी के बारे में अगर बातचीत की जाए आदान प्रदान में, तो हम ऑस्ट्रेलिया से बहुत मात्रा में कोयला खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, हालांकि हमारे यहाँ से काफी हद तक हम एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं और रिन्यूएबल्स की तरफ हम जा रहे हैं, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, जो 2030 तक हम कितना रिन्यूएबल्स में हम प्रोडक्शन करेंगे, उससे कहीं ज्यादा हमने ऑलरेडी कर दिया है, हमने अपना जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया। परंतु फिर भी ऑस्ट्रेलिया से चाहे कोयला हो चाहे एलपीजी हो, काफी मात्रा में हमारे यहाँ आता है और हमारे यहाँ पर ये सब रिफाइंड होकर जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया को हम फिर से भेजते हैं। हमारा सबसे ज्यादा मात्रा में जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है ऑस्ट्रेलिया को, वो इन्हीं का है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोनों देशों के बीच के सहयोग का।
1: तो आगे बढ़ने से पहले, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ ज्वाइंट प्रेस मीट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को आसान बनाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर करने के बारे में बातचीत की है। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग हमारी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी और क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए महत्वपूर्ण है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि हमने भी प्रधानमंत्री को सुना, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने ऑस्ट्रेलिया भारत परमाणु सहयोग समझौते 2015 के तहत विशेष रूप से शांतिपूर्ण उद्देश्यों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के सुरक्षा मानकों के दायरे में भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात को संभव बनाने के लिए जरूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया है। ये आपके नजरिए में, ये आपके समझ से कितना महत्वपूर्ण है?
0: मेरे विचार से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कदम है दोनों देशों ने उठाया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो ये फॉसिल फ्यूल से हम नहीं करेंगे, ये हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन में इस यूरेनियम का प्रयोग करेंगे और हमने जो मात्रा रखी है वो जो हम 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2047 तक हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अभी तक अगर हम देखें तो मेरे विचार से अभी तक हमारा 8-9 गीगावाट हम प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब हमारे पास और बहुत ज्यादा ऐसा संभव ये कर सकते हैं जो इसको मात्रा को हम और आगे बढ़ाएं। दूसरी बात, ये हमारा समझौता जो हुआ था वो हुआ था 2014-2015 में, जबकि टोनी एबट थे वहां के प्रधानमंत्री। अब 12 साल गुजर गए हैं परंतु अभी तक वहां से कोई हमारे पास यूरेनियम ओर नहीं आ पाया है। तीसरी बात, जो ऑस्ट्रेलिया विश्व में सबसे बड़ा जो रिजर्व्स हैं यूरेनियम के, वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया उनको माइन करे, उनको बाहर देशों को उसको एक्सप्लॉयट करे, बाहर देशों को और एक्सपोर्ट करे, निर्यात करे, तो ये दोनों के लिए फायदा होगा। और चौथी बात, इसमें ही देखें, ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए हम सिविलियन यूजर्स के लिए ऊर्जा को पैदा करने के लिए, ऊर्जा को जनरेट करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो ये इतने सालों बाद हो रहा है, तो मेरे विचार से ये भी एक विन विन प्रोपोजिशन है, क्योंकि इससे भारत को तो फायदा होगा ही, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में और आगे बढ़ पाएंगे, परंतु इससे ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसका अपना वो तो एक जो कमोडिटीज हैं उसको वो माइनिंग में, क्योंकि उसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा वहां पर मिनरल्स हैं और यूरेनियम उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है, तो उसका वो निर्यात कर पाएगा, तो उसको भी इसका फायदा मिलेगा। तो ये दोनों देशों के लिए बड़ी अच्छी बात है जो हमने ये ऑपरेशनलाइजेशन किया है उस अग्रीमेंट का, जो कि बहुत पहले 10 साल से ऊपर हो गए जो हमने इसके बारे में अपना निर्णय लिया था, दोनों देशों ने निर्णय लिया था।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, अभी तो हमने ऊर्जा क्षेत्र की बात करी, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बात करना चाहूंगी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम और इकोनॉमिक रोडमैप बिजनेस इवेंट को भी संबोधित किया था ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया

0: के निवेशकों को भारत में लंबे समय तक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। आपके विचार में, आपकी समझ से कौन से क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देश मिलकर आगे काम कर सकते हैं?
1: बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। देखिए, एक तो जो नई तकनीक है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, ये वाले क्षेत्र हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरे हैं जिनमें हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। देखिए, हमको ये ध्यान रखना है, जो अभी तक हालांकि दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध बड़े अच्छे हैं, परंतु अगर इकोनॉमी और ट्रेड को देखा जाए तो इतने ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। जैसे मैंने बताया, अभी तक हमारे यहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, ऐसी टेक्सटाइल्स, ऐसी चीजें हम निर्यात करते हैं और वहां से हम आयात करते हैं कोयला और LPG वगैरह, इस प्रकार के कमोडिटीज हम वहां से आयात करते हैं। परंतु अभी हमने कुछ साल पहले 2022 में हमने एक बायलैटरल अग्रीमेंट, इंटरिम जिसे मैं कहूंगा, ट्रेड अग्रीमेंट की थी। फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं थी, परंतु एक पहला कदम था उसकी तरफ, जिसको हम कहते हैं ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट, और उसका फायदा भी बहुत हुआ है। तो इसमें अगर देखा जाए, जो अगर भारत के जो निर्यात है पूरे विश्व में पिछले चार साल में, अगर मैं कहूं जो करीब 40% ज्यादा बढ़ा है, तो मेरे विचार से ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो निर्यात है वो करीब 200% बढ़ा है, और वो इसी की बनिस्बत जो ECTA से हमारा जो फायदा हुआ है, दोनों देशों को फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का भी जो निर्यात है भारत को काफी मात्रा में बढ़ा है, परंतु हमारे लिए ज्यादा फायदा हुआ है क्योंकि अब पहली जनवरी 2026 से 100% जो भारत की पदार्थ हैं जो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो सारे ड्यूटी फ्री हो गए हैं, तो हमारे लिए बहुत ही सहूलियत बनी है। और इसमें हम देख रहे हैं, अब हमने ECTA को रिप्लेस करके सीका की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, जिसमें कि केवल ट्रेड इन गुड्स नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, ट्रेड इन सर्विसेज रहेगा, और ये सब क्षेत्र जब मिलेंगे तो हमारे दोनों देशों के बीच का सहयोग है वो बहुत बढ़ेगा। और इसी में अगर देखा जाए तो वहां की जो ऑस्ट्रेलिया सुपर, जो उनकी इन्वेस्टमेंट आर्म है, पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट आर्म है, उन्होंने आज उसी CEO फोरम में अनाउंस किया, दीक्षा, जो ऑस्ट्रेलिया 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन US डॉलर, मतलब करीब 350 मिलियन US डॉलर, वो भारत में निवेश करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। इससे पहले अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में उन्होंने तो करीब 2.8 बिलियन ऑस्ट्रेलियन US डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, और उनको ये विश्वास है जो भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो आह्वान था प्रधानमंत्री मोदी का, जो भी ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस कम्युनिटी था, वो बड़ी पॉजिटिवली रिसीव हुआ है।
0: आगे बढ़ने से पहले अम्बेसडर सजना, आइए सुनते हैं कि आज साइन किए गए MOU के बारे में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जॉइंट प्रेस मीट में क्या कहा।
2: With new landmark agreements, we are expanding our relationship across defence and security, education, science and technology, and energy security and critical minerals. Prime Minister Modi and I have released a joint declaration on defence and security cooperation to deepen our practical partnership. Australia values India as a top-tier security partner, and the declaration reflects our shared commitment to a peaceful, stable and prosperous Indo-Pacific region.
0: चलते चलते अम्बेसडर सज्जनहार, आपसे बहुत ही संक्षेप में समझना चाहूंगी कि आज ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री, दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स होने के नाते एक कॉमन विजन फॉर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक की भी बात की, उस पे जोर दिया। तो जितने भी MOU, जितने भी आज समझौते हुए हैं, उसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप यानी कि MSCR को भी देखा गया है, तो आप इसको हमारे श्रोताओं के लिए और बेहतर तरीके से समझा सकते हैं।
1: अभी जो आपने प्रश्न किया है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो मित्रता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो सहयोग है, वो केवल द्विपक्षीय मामलों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु वो पूरे क्षेत्रीय, इस पूरे इंडो पैसिफिक में, जिसे हम

0: कहते हैं, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे विश्व में अगर हम कहें, जो ये स्थायी होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उन सब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की, यहां पर भी हम देख रहे हैं जो बहुत अनिश्चितता बनकर आ रही है। इस क्षेत्र की जो डेमोक्रेसीज हैं, तो ये सभी डेमोक्रेसीज को मिलकर ये निश्चित करना होगा जो ये क्षेत्र जो है ये फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी यहां पर बनी रहे, रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ के आधार पर यहां पर जो काम होता है वो सब होता रहे। और इसीलिए हमने देखा है, जो आपने कहा, जो मैरिटाइम सिक्योरिटी, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस हो, उसमें ब्लू इकोनॉमी का कैसे फायदा लिया जाए।
1: जी एम्बेसडर सज्जनार, आने वाले दिनों में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पे अपनी नजर बनाए रखेंगे और उस पर चर्चा करते रहेंगे। इस पूरे विषय पे अपने विचार हमारे साथ साझा करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे सुर्खियों में समाचार संध्या। आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शांतिपूर्ण और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अधिक विकास, अधिक उपलब्धि के मंत्र के साथ दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनना चाहता है। मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य पुर्जों पर मूल सीमा शुल्क में छूट दी। ईरान ने अमरीका पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। जवाब में बहरीन, कुवैत और कतर में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। और फीफा विश्व कप के पहले क्वार्टर फाइनल में आज रात फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के बीच आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया, वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग का प्रारूप जारी किया।
5: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
5: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूपटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे

0: ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी तथा आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को कार्यान्वित किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
0: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र। ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया।
1: इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस आयोजन की ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते सामान्य कूटनीति से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। ये मार्बल स्टेडियम में गूंजती तालियां और लोगों के उत्साह से बयां होता है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वाकांक्षी और विकसित भारत का दृष्टिकोण, जिसमें वैश्विक विनिर्माण में कामयाबी से लेकर ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत अहम मानवीय मदद तक शामिल है, साबित करता है कि भारत मानवता के हित में लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। इससे ये साफ होता है कि भारतीय समुदाय दोनों देशों की व्यवस्था और रणनीतिक रक्षा गलियारे को मजबूती दे रहा है, जिससे हमारा साझा भविष्य सुरक्षित और समृद्ध बना रहे और हम आपसी भरोसे से जुड़े रहें। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विदेश सचिव ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि शिखर सम्मेलन में भारत को ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करने को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का कल समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टेलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड में प्रवासी भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट आज ऑकलैंड में जारी की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
3: ऑकलैंड में वाइटाकरे इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय की आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: निर्जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी एआरटी क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति आईवीएफ क्लिनिक, एआरटी केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये ऐसे युवा शोधकर्ताओं को तैयार कर रहा है जो जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उभरती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित कानून में धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि समिति राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने से पहले प्रस्तावित कानून के कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक पहलुओं की जांच करेगी। सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप, पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉयल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाले सामान पर मूल सीमा शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। ईरान ने अमरीका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमरीकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमरीकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अमरीका ने आज सुबह ईरान पर फिर हवाई हमले किए। ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने कुवैत और कतर को निशाना बनाया। इन हमलों से पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने का अंतरिम समझौता खतरे में पड़ गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तराखंड में कल तेज वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में शुक्रवार को तेज वर्षा होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मैच आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से पीछे भारतीय टीम को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए हर हाल में आज का मैच जीतना होगा। विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुखोवा ने महिला सिंगल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कैरोलिना ने सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। दूसरे सेमीफाइनल में मार्टा कोच्यूक का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र

0: की पेशरफ्त को उजागर किया।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: बिरादरी को क्रेडिट देते हुए जनाब मोदी ने साफ लफ्जों में कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात आला तरीन बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं। मैन्युफैक्चर करते हुए जो चिप्स से शिप्स तक फैला हुआ है, उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अदवियात साजी के तमाम शोबों में एक आलमी ब्रांड है। कलीदी नौयत की सिक्योरिटी और इख्तिरात की घरेलू दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर आलमी भरोसेमंदी को उजागर किया। उन्होंने बिलखसूस ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंसदाद दहशतगर्दी के मुतायिन शुदा निशानों का जिक्र किया।
1: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा, धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
0: इस मौके पर खिताब करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को कसीर सकाफती पावर हाउस कहकर उसकी सताइश की, जो ऑस्ट्रेलिया की खुशहाली को आगे बढ़ाने में मुआविन है। उन्होंने भारतीय बिरादरी को एक कतई लिविंग ब्रिज कहकर उसकी तहसीन की। ये ऐसा पुल है जो कभी न रुकने। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मार्वल स्टेडियम के अंदरून तहसीन और सताइश के बुलंद बांग नारे एक बुनियादी हकीकत की बाजगश्त थे कि भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात उमूमी सफारतकारी से बहुत ज्यादा बुलंदी इख्तियार कर चुके हैं। वजीर आजम मोदी का ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत एक उमंगों भरे तरक्की याफ्ता भारत अहम नौयत की इंसानियत नवाजी पर मबनी इकदाम का तस्वूर है। यह साबित करता है कि एक मजबूत भारत पूर्व के वजीर आजम अल्बानीज ने जोश व खरोश से भरपूर इस बिरादरी को कतई तौर पर खलीज को पाटने वाला लिविंग ब्रिज कहकर एजाज से नवाजा, जिससे ये बिल्कुल वाजे है कि भारतीय बिरादरी दोनों मुल्कों के इकतसादी इंजनों और कलीदी दिफाई राहदारियों को सरगर्म। रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: मेलबर्न में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात हमजहत नौयत के और तेजी से पेशरफ्त कर रहे हैं। ब्रिक्स मुल्कों की ख्वातीन नशोनुमा की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ब्रिक्स ममालिक में ख्वातीन की नशोनुमा से मुतालिक कई मुश्तरक मसाइल पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये मुश्तरक मसाइल ब्रिक्स ख्वातीन वुदरा ट्रैक जैसे प्लेटफॉर्म की इंतहाई अहमियत को उजागर करते हैं, ताकि मेंबर मुल्कों के दरमियान मुजाकरात को आगे बढ़ाया जाए और तआवुन को मुस्तहकम किया जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स ख्वातीन उजरा की मीटिंग कोची में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें पहली मरतबा ख्वातीन उजरा के प्लेटफॉर्म की जानिब से एक मुश्तरका ऐलामिया मंजूर किया गया। ये ब्रिक्स रुकन ममालिक के दरमियान ख्वातीन की क्यादत में तरक्की के फरोग के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने की सिमत एक अहम संगे मील है। 6 जुलाई से शुरू हुई 4 रोजा मीटिंग में ब्रिक्स ख्वातीन वर्किंग ग्रुप का इजलास और ब्रिक्स ख्वातीन उजरा का इजलास शामिल था। मीटिंग में भारत की जानिब से पेश किए गए ब्रिक्स डिजिटल खजीना और ब्रिक्स डिजिटल सलाहियत साजी के रहनुमा उसूलों की तजावीज का खैर मकदम किया गया। इसके अलावा इस अज़्म का इआदा किया गया कि ख्वातीन की क़यादत में तरक्की जामे और पायदार मुआशी व समाजी तरक्की के लिए एक अहम मुहर्रिक है। कोची से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
0: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि साफ मुतबादिल ईंधन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की तरफ फौरन मुंतकिल होना सड़क ट्रांसपोर्ट शोबे में तब्दीली की एक अहम तरीन जरूरत है। गांधीनगर में 3 रोजा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट शो प्रवास का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए वजीर मौसूफ ने रिवायत

ट्वेंटी में से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक मैच रात 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम सीरीज में 0-2 से पीछे है। गेम में अपने आप जरूरी है। और आखिर में ब्रिटेन की खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल को यकीनी बनाने के सिलसिले में दिफा और सिक्योरिटी तआवुन के एक मुश्तरक ऐलानिये पर दस्तखत किए हैं। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई के लिए भी एक समझौता किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ज्यादा तरक्की करो ज्यादा हसूल याबी करो के नजबुल ऐन से मुतासर होकर दुनिया की तीन आला तरीन मीशतों में से एक बनने की से भी खिताब किया। खवातीन के कौमी कमीशन ने आला सतह के माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है जो IVF क्लिनिक के जवाबिस से मुतालिक फ्रेमवर्क और उनके सिलसिले में कवानीन का जायजा लेगी। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवाचार, उच्च कौशल, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
1: एक ओर भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रहा देश है, दूसरी ओर दुनिया के तमाम देशों को भारत तकनीक, प्रतिभा और आगे बढ़ने के लिए उन्नत अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है, जिससे हमारे श्रोता अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम परिचित हैं। यह है क्षेत्र भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र। ये वैश्विक क्षमता केंद्र वस्तुतः क्या है, किस रूप में भारत ही नहीं दुनिया में अपना योगदान दे रहे हैं और एक ओर प्रतिभा को उचित अवसर मिल रहा है, नए नए नवाचार हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों को आगे बढ़ने में योगदान दे रहा है। कुछ इन्हीं विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे अपने इस अंक में। इस विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ और सेक्रेटरी जनरल पीएचडी सीआईआई। स्वागत है आपका डॉक्टर मेहता।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित जीसीसी बिजनेस समिट को संबोधित किया।
3: Today, the greatest competitive advantage lies in generating knowledge, applying technology, and solving complex problems. That's what the GCCs are. It's not as if it's a slightly upgraded version of your backroom, back off, or office space, the BOPs. No, this is a completely different domain. It has a lot of technology, no doubt, but the new human intervention, human skills and the human knowledge which gets crystallized, what makes this century going to stand out in the name of GCC?
1: शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करना चाहेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हमारी जो वैश्विक क्षमता केंद्र है वो किस रूप में योगदान दे रहे हैं, और उससे भी पहले समझना चाहेंगे आम जुबान में आम लोगों के लिए ये वैश्विक क्षमता केंद्र क्या है और किस रूप में यहाँ प्रतिभा का, तकनीक का संगम हो रहा, बड़ी कंपनियों के लिए हम उत्पाद बना रहे।
2: पिछले अगर दशक में देखें तो भारत एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो गया है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए। और जो इससे पहले क्या होता था, भारत में सिर्फ बैक ऑफिस लोग रखते थे, उसमें कॉल सेंटर्स ये सब आते थे, लेकिन पिछले दशक में जिस तरीके से भारत में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नए नए जो भारत के कार्यक्रम जो कि जैसे मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, सारे नए नए जो कार्यक्रम आए उससे जो है एक भारत जो है एक इवॉल्व हो चुका है हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक सेंटर्स के तौर पे, जिसमें सिर्फ एक बैक ऑफिस ऑपरेशन तक ही ये सीमित नहीं है बल्कि जिसमें रिसर्च होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब तो एक नया आ गया आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस, फिनटेक, लीगल सर्विसेज, ऑल जो ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस हैं जिसमें जो भी चीजें यूज होती हैं, आज भारत उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण हब बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा ऐसे ग्लोबल कैपेबिलिटीज सेंटर्स हैं जिसमें कि 20 लाख से अधिक लोगों को, आज प्रोफेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर आप देखें इसमें, जो कि भारत डेफिनेटली एक टैलेंट कैपिटल भी है। आज अगर आप देखें, भारत जो है 65% जो भारत की जनता है वो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो भारत एक यंग कंट्री है, एक यंग कंट्री होने के नाते हमारे पास टैलेंट पूल है। बट टैलेंट पूल होने के साथ साथ हमने पिछले करीब दशक में देखा है कि भारत एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज जो भारत का, आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च हुआ था, तब भारत में सिर्फ करीब 300-400 रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, लेकिन आज जब हम ये बात कर रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है भारत के अंदर हैं, और भारत जो है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, क्योंकि टैलेंट कैपिटल तो है ही भारत विश्व का, लेकिन एक इनोवेशन कैपिटल बनाने की दिशा में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं, इसमें जो है आगे चल के, मैं समझता हूं आगे चल के सिर्फ एक कॉस्ट आर्बिट्रेज, क्या कॉस्ट के बेसिस पे कि भारत में लेबर सस्ती है, इस बेसिस पे ही आप अपना एक कॉम्पिटिटिव जो एडवांटेज है उसको आप नहीं ले सकते। आगे चलने के लिए हमें एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट की जरूरत है, और उसमें कितना हम इनोवेशन करते हैं, कितना हम उसको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को इसमें इंटीग्रेट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। और जब हम एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं उसके जो तीन मुख्य पिलर होंगे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के। पहला पिलर मैं समझता हूं एक स्किल, कि क्या हमारे पास स्किल सेट्स हैं आज भारत में। आप टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जेनरेटिव एआई आ चुका है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, रोबोटिक्स है, सेमीकंडक्टर है, इस साइड डेटा एनालिटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी भी ऐसी एक नया एक स्टेप आ चुका है जिससे जो है हर इंडस्ट्री अपना ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक चर्निंग हो रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी 2070 तक नेट जीरो होने का अपना एक कमिटमेंट कर चुके हैं। अगर आप लंबी दिशा में अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसमें ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है जो हम करते आ रहे हैं वही सफिशियंट नहीं होगा, बल्कि इस दिशा में हमें अपने एजुकेशन को भी ले जाना है, तो जिससे कि भारत ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी भारत की आ चुकी है, भारत के अंदर इकोसिस्टम तैयार करना है जिसमें कि कॉन्टिन्यूअस लर्निंग हो, जहां पे कि इंडस्ट्री, अकेडमिया, गवर्नमेंट सब साथ मिलके जो है, जो हमारी वर्कफोर्स है उसको जो है हमें फ्यूचर रेडी बनाना है।
1: श्रोताओं, देश की राजधानी दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केंद्र कई सारी बातों पर चर्चा हुई, बहुत सारे विचार रखे गए, और सबसे बेहतर हमारे विशेषज्ञ ने जो कहा कि एक ओर शिक्षा, प्रतिभा, कौशल, दूसरी ओर उद्योग, और तीसरी ओर देश की नीतियां इस दिशा में हो कि हम वास्तुतः दुनिया को दिशा दिखा सकें और तीनों का एकीकरण कर सकें। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा,
2: What is it that AI can do to enhance productivity, enhance efficiency and effectiveness across a range of sectors? How is it that India can adapt AI and what is it that India can contribute in this space? Which is what application and AI-based solution capital of the world and the way in which we can actually roll out using our talent. What is the way in which we roll out AI for the rest of the world? Today, one of the things that many people, many experts do comment is that while there's a lot of investment taking place in building out data centers, in, you know, the chips that need to be done for this, the high bandwidth memory that needs to work in the data centers, on the infrastructure side, there's a lot of effort which is going on into building the models. But ultimately, all these are just the infrastructure piece of the play. What happens with what actually gets deployed at the enterprise level and at various levels? And the deployment of AI in enterprises is still lagging across the world, not just in India, but across the world. And that is truly where I think GCC

0: is in India will come in and play that critical role.
1: डॉक्टर मेहता, यहाँ से दिशाएं स्पष्ट होनी शुरू हो रही हैं कि हमारा भविष्य क्या है और किस रूप में इसे कार्यान्वित करना है। यहाँ पर हमारा सवाल ये होगा कि जो लक्ष्य हम सामने रख रहे हैं कि उच्च कौशल और तकनीक का जो वास्तविक उत्पाद है एआई के ऐप के रूप में,
2: अभी सेक्रेटरी ने भी कहा कि कैसे हम स्किल सेट्स को यहाँ पे सिर्फ बीपीओ जॉब्स, हमें बीपीओ जॉब के लिए ही नहीं काम करना है बल्कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बन रहे हैं उसमें हमें हायर लेवल जॉब्स के लिए जो है अपने आप को तैयार करना है। तो उसमें जो पहला पिलर मैंने बताया स्किल है और जो सेकेंड पिलर है वो होगा इनोवेशन, क्योंकि आप जो नेक्स्ट लेवल के जीसीसी आएंगे वो सिर्फ यहाँ पे भारत में सिर्फ ग्लोबल मैंडेट को सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होंगे बल्कि हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, इनोवेशन का हब बनाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी पड़ेंगी और उसके लिए हमें एक प्रोडक्ट हब बनाना पड़ेगा जिसमें विश्व के लिए इसमें प्रोडक्ट को बना सकें, जैसे कि मेक इन इंडिया हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, उसमें कई सारी प्रोग्रेस हुई है। और क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है इंडिया के पास एक बहुत ही यूनिक टैलेंट है, आप अगर देखें तो साइंटिफिक टैलेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है, आप देखिए जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी है, जो प्रोवेस है, आपने देखा कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भारत के एंटरप्राइजेज ने पूरी दुनिया में कैसे काम किया, भारत जो है एक फार्मा हब बन गया था कोविड के टाइम में, कैसे नई वैक्सीन हमने जनरेट की। तो एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारा एक स्ट्रेंथ है। और तीसरा जो हमारा स्ट्रेंथ है इनोवेशन के लिए वो है हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज हमारे देश में नए नए जो बच्चे हैं 18 साल 20 साल 30 साल से कम उम्र के जो युवा हैं वो भी आपने देखा यूनिकॉर्न का स्टेटस ले चुके हैं, ऐसी ऐसी कंपनी देश में अभी हैं जिसमें कि 1.5 साल 2 साल के अंदर वो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन करीब, आज के अगर टर्म में देखें तो करीब 10,000 करोड़ से ऊपर जिसका वैल्यूएशन है वो एक यूनिकॉर्न मानी जाती है कंपनी। तो ये हमारे देश में एक इनोवेशन का जो एक कल्चर बन चुका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फर्दर इसको स्ट्रांग करना है, इंडस्ट्री एकेडमिया और गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ एक्सीलरेट करना है इनोवेशन को, तभी हम जो यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी उसको कैसे हम कॉमर्शियली उसको वायबल बनाएं, इस पे हमें काम करना है जिससे कि जो विश्व की समस्याएं हैं तो उसको हम भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको हम कैसे सॉल्यूशन निकालें। जो थर्ड पिलर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है वो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी, सबसे पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो कि बहुत कुछ हो रहा है। आज अगर आप रोड की बात करें, भारत जो है विश्व का लार्जेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज बन चुका है, तो इसमें ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं भारत की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्टेबल हैं और हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है बहुत उसमें स्टेबिलिटी है और हमारे पास आज एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हो चुका है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इतने सारे काम हो रहे हैं और जो भारत का एक रिफॉर्म का जो मुहिम चली है वो बिल्कुल आगे चलती जा रही है। और डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें जिसमें कि 1.4 बिलियन 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ जो लोग है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों से होता है। और इंडिया ने कई ऐसे रिमार्केबल इनिशिएटिव लिए हैं जैसे कि डिजिटल इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें समय से पहले ही इन सब चीजों का ऐलान किया था और आज उसमें कई सारी प्रोग्रेस हो चुकी है, जैसे डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो सारे रिफॉर्म्स हैं इससे जो है हमारे जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आर्बिट्रेशन के फील्ड में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के फील्ड में हमने काम किए हैं, इंडिया जो है अपने आप को एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इनोवेशन इकोसिस्टम बनने की तरफ इसमें काम कर रहा है।
1: डॉक्टर मेहता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत में नवाचार, उच्च कौशल रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे

0: पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महासचिव डॉक्टर रंजीत मेहता कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: कंट्री वाइड।

रहे हैं सुनहरी यादें। अगला गीत लीजिए, सुनिए फिल्म आंधी से। संगीत से सजाया है RD वर्मन ने, सब रचना गुलजार का और आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

का ये प्यारा सा गीत, आवाजें थी किशोर कुमार की, संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने, सब रचना विजय आनंद का।

0: कभी तो हंसाए।
1: अगला और आखिरी गीत लीजिए, सुनिए फिल्म इज्जत से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर।

और इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम सुनहरी यादें अब यहीं संपन्न होता है। मुझे दे विदा, नमस्कार।

ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10:31 हुए हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। आज हम पंडित विश्व मोहन भट्ट से गिटार पर राग बागेश्री में आलाप और गत मध्य लय झपताल में वह दुर्त लय तीन ताल में निबद्ध है। गिटार पर राग मिश्र गारा में धुन सुनेंगे।

पंडित विश्व मोहन भट्ट से गिटार पर राग बागेश्री में आलाप और गद, मध्य लय झप ताल में व धुर्त लय तीन ताल में निबद्ध और गिटार पर राग मिश्र गारा में धुन। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे हमारे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड एमसीजी का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि ये कार्रवाई उस पर हमले समाप्त करने की अमेरिकी सेना की घोषणा के कुछ घंटों बाद हुई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में आज नोस्कोवा ने मार्ता कोस्तियो को 6-4, 6-4 से हराया। महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला 11 जुलाई को लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में कल आर्थर फेरी का मुकाबला अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर का सामना नोवाक जोकोविच से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला ब्रिस्टल में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 94 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-0 से आगे है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। पहले मुकाबले में आज रात 1:30 बजे बोस्टन में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल देर रात स्पेन और बेल्जियम आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। शुभ रात्रि। जय हिंद।